0: of 16 opens up for Belgium.
1: Kicking off now is the match between the USA and Bosnia and Herzegovina in San Francisco. Football updates brought to you by Hisense.
2: Sports news
3: brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
4: वेदर के हालचाल जान लेते हैं. आज 16 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 5 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला. आज भी बारिश नहीं है, लगातार तीसरा दिन है. टच वुड ऐसा ही रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा. आज का सनसेट होगा 5:17 पे.

वालेकुम, बुला आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। आप मुझे सुन रहे हैं हम 104.2 एफएम के जरिए। बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने यहाँ पे हम चलाते हैं। रोआ ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। मेरा नाम केतन है और अभी से लेके 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ। बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे गपशप होंगे, बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स भी देने वाला हूँ जहाँ पे आप हिस्सा लेके जीत सकते हैं ढेरों इनाम। क्या कुछ होगा ये आगे मैं बताऊंगा, लेकिन यस, होम सिक रेमेडीज के लिए आप रेडी रहिए और मुझे भेज दिए 5599 पे, जहां पे इंतजार रहेगा आपके मैसेज क्या, जिससे ऑफकोर्स यहां पे मैं पढ़ूंगा भी। और लेट्स फाइंड आउट कि होम सिक रेमेडीज के लिए आप क्या मैसेज भेजते हैं। बताइए कुछ ऐसी चीज जो आप मिस कर रहे हैं फ्रॉम योर डिफरेंट सिटी और फ्रॉम योर होम टाउन, मे बी आउट ऑफ कंट्री एज वेल, तो बताइए मुझे। लेट्स टॉक अबाउट दैट।

0: वैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ये फिल्म बहुत पसंद आई है? मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई थी, लाइक आई लव्ड इट। आज अगर देखूंगा शायद मेरे को थोड़ा अजीब लगे, बट जो इनिशियल जो फिल्म थी ना, जब वो पुनर्जन्म नहीं होता है, वो वाला पार्ट मेरे को लगा कि आई एक्चुअली एंजॉयड इट। उसके बाद थोड़ा ऑफ कोर्स स्लो होता। अभी भी मैं आपको बोला कि अगर आज मैं देखना चाहूँ तो मैं देख लूँगा, तो मेरे जहन में पता क्या है, ये आया कि आई वुड लव टू सी द फर्स्ट पार्ट विदाउट एनी इंटरप्शन, बट सेकेंड पार्ट आते आते आई विल बी लाइक देखूँ कि नहीं देखूँ ऐसा। बट यस, एनीवेज, शो को आगे बढ़ाते हैं और होम सिक रेमेडीज के लिए ये रहे कुछ मैसेजेस जो मुझे मिले हैं अभी। एश मनुरेवा फीजी से हैं ये, बोले आई मिस हियरिंग फीजी हिंदी एवरी डे, इट इंस्टेंटली फील्स लाइक होम। रियली? ऐसा मतलब आई डोंट नो, आप नए हैं तो मे बी आई कैन रिलेट कि हाँ आप नए हो, आप अचानक से यू नो द सर्कल व्हाट यू आर गेटिंग, बट इन ऑकलैंड में मुझे नहीं लगता आपको ये लैंग्वेज को लेके, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, बट यहाँ पे अगर कोई है जो मुझे बताना चाहे कि बट आई डोंट थिंक सो द नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम फीजी ओवर हियर आर इज गुड नंबर यार, इज गुड नंबर, और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग हैं, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी वे आप इसे मिस करेंगे, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। इनका जस्ट मैसेज आया कि यस आई जस्ट केम वन मंथ बिफोर। ओह नाइस, दैट्स द पॉइंट, यस। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि अगर हो सकता है आप नए हो तो इनिशियल स्टेज पे तो डेफिनेटली यू गोना मिस इट, सेम एज फॉर अस एज वेल, जो ऑकलैंड आते हैं वो इनिशियल स्टेज पे मिस तो करते ही हैं, बट मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑकलैंड में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सचमुच आपको मिस नहीं कराएगी, जैसे कि हमारा शो, हमारा खाना, यहाँ पे हर एक चीज़ यू नो अवेलेबल है, एंड हमको आप अगर सुनोगे तो ऑब्वियसली यहाँ के इसके थ्रू आपको और भी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी। पूजा कहती है पाकुरंगा से, मैं पाकुरंगा और पापाकुरा में बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, पाकुरंगा साउथ में नहीं पड़ता ना, पापाकुरा साउथ में पड़ता है, हाँ पाकुरंगा किस तरह पड़ता है। आई मिस माई मम वेकिंग मी अप फॉर वर्क, अलार्म क्लॉक जस्ट आर नॉट द सेम। सही है, वैसे आजकल पता है क्या है कि आदत आपकी ऐसी हो जाती है, बॉडी इतनी यूज्ड टू हो जाती है दैट बिफोर इवन अलार्म हिट्स योर माइंड आप वैसे ही उठ जाते हो, और आप अलार्म को बोल देखते हो ऐसे, हाँ भाई बजने वाला है तू, बज बज बज। इमरान कहते हैं माउंट रॉस्किल से, माय होम सिक रेमेडी इज कुकिंग विद माय वाइफ, द किचन फील लाइक होम। भाई ये तो रोज ही होता होगा ना। कुछ और भी आ रहा था दिमाग में, बढ़ नहीं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। किसी का मैसेज है ईस्टर्न, ये क्या है, ईस्टर्न का क्या मतलब होता है? अच्छा ईस्टर्न उस तरफ है, ओके नाउ आई गॉट इट, यप मेक सेंस, मैं खुद ही सवाल करके खुद ही भूल गया भाई, क्या यार क्या बनेगा रे तू। दिव्या कहती है फ्लैटबुर्स से, आई मिस फैमिली गेम नाइट्स, एवरीवन लाफ्ड चीटेड एंड स्टिल हैड फन। That is so true. But ऐसा कभी हुआ आपके ग्रुप में, ऐसा कोई बंदा है जिसको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है? मेरे ग्रुप में है, मतलब अभी obviously मैं यहाँ ऑकलैंड मूव हो गया तो obviously, but इन्वकागल में मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं, वो मतलब उनका जो जब हम मोनोपोली खेलते थे, कुछ भी खेलते थे, मोस्टली मोनोपोली खेलते थे, द वे हाउ ही यूज टू एक्ट, इट वाज लाइक सो हिलेरियस, उसकी वाइफ और मैं इतना हंसते थे, और जान बूझ के हम दोनों टीम अप करके बिजनेस पार्टनर को हराने की सोचते क्या यार, मतलब अलग ही मजा है यार, अलग ही मजा है। बट आपके ग्रुप में भी अगर कोई है ऐसा जो सचमुच हारना बिल्कुल पसंद नहीं और रोंदू जैसी शक्ल बना देता है तो बताइए मुझे, 5555। मेरे ग्रुप में डेफिनेटली है, मेरे पास एक यहाँ ऑकलैंड में भी था लास्ट टाइम, बट वो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड छोड़ चुका है अभी। बढ़िया, डू लेट मी नो 5555 पे, और ऑफिस शाउट आउट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए 5555 पे।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: मुझे पसंद है लड़का,
1: हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।
3: माजे दिए माजे दिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आंख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दिल मंगिए तेरे।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
7: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Happy Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
8: Dad, I feel sick.
9: Yep, we've all been there. And so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
10: At Bunnings, you can make cleaning up your home easy with Sally's 750ml Rapid Mold Killer, only $9.90. Or an all-set 50-litre clear storage container, just $8.99. Bunnings makes cleaning easy. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
11: Karan Ojra brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Ojra live.
12: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
13: Lunchbox with Ketan.
14: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
13: Office shout out.
15: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, office shout out ke liye to kuch message aaye nahi hai aaj. Unfortunately, surprisingly. But yes, kisi ne message bheja hai homesick remedies ka. Ek ne likha hai playing tambola with my cousin. Mega ne ye message likha hai. Well, thank you so much, Mega, आपके messages का. तंबोला क्या होता है? मैं भूल गया, एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है. वो ऐसा कुछ होता है क्या? वो numbering को वो करना ऐसा. I think hopefully क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं है. तो yes, I know आप सब shocked हो रहे हैं. भाई केतन ने तंबोला नहीं खेला है? क्या यार. I know, but होता है ऐसे कुछ कुछ games होते हैं जो शायद आपने भी नहीं खेले होंगे जो मैंने खेले होंगे या फिर हो सकता है कुछ और नाम से आप पुकारते हो और मैं किसी और नाम से पुकारता हूँ but yes, I mean, you can explain me कि कैसे खेलते हैं but एक सवाल मेरे जहन में आया है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ है जो मुझे obviously rent line में करना चाहिए था but I can't actually wait मेरा सवाल पता है यहाँ पे क्या है और मैं चाहूँगा कि if someone could call me and explain or maybe just give a their review would love to hear that aap 0800-004-866 pe call kariye aur mujhe bataiye the thing is what I have recently noticed is not recently actually kafi time se tha but I think aaj main tha ki main aapke sath share hi karun that someone maan lo hum yahan hai New Zealand mein hai and someone is talking trying to talk in Hindi or ya fir aapki language when they couldn't speak properly but they try right so We people find it very funny. And very funny as in like in a positive, like cute. Not funny, but cute. But वहीं पे अगर हमारे ही लोग नहीं बोल पाते हैं, for example, कोई महाराष्ट्रन लैंग्वेज बोलनी है किसी और स्टेट को, वो नहीं बोल पा रहा है, या फिर कोई बंगाली लैंग्वेज बोलनी है वो नहीं बोल पा रहा है कोई बाहर का है तो, या फिर साउथ इंडियन वो बाहर का नहीं बोल पा रहा है, या फिर पंजाब की लैंग्वेज वो बाहर वाला नहीं बोल पा रहा है. सो वी जज देम. व्हाई इज दैट? लाइक ऐसी मतलब पता नहीं दोगलापन इज राइट वर्ड ओवर हियर और नॉट, बट या कोई है यहाँ पे जो मुझे कॉल करना चाहे 0800-004-866 पे और बताइए मुझे दैट आपका इस पे क्या रिव्यू होना चाहिए. लाइक इज इट गुड और इज इट नॉट? मेरे जहन में तो ऑफकोर्स बिल्कुल भी सही नहीं है. लाइक यू नो ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज लैंग्वेज इज द थिंग विच शुड बी जस्ट कीप इट एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग या फिर जजिंग समवन दैट उनका जो यू नो बोलने का या फिर एजुकेशन का है वो काफ़ी हमारे इसमें होता है. पता नहीं क्यों बट या दिस इज व्हाट इट इज. बट यस अगर है यहाँ पे कोई जो मुझे मैसेज भी भेजना चाहे 5599 पे आप मुझे भेज सकते हैं. एक और मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है बट आई थिंक इन्होंने लिखा है, आई थिंक आई एम बिट लेट फॉर होम सिक रेमेडीज, नॉट एट ऑल ब्रो, बट आई मिस दोज डेज इन इंडिया व्हेन माय डैड यूज्ड टू ब्रिंग समथिंग टू ईट व्हेन ही कम्स फ्रॉम द मार्केट एंड आई ऑलवेज वेट फॉर हिम एंड ग्रैब हिज बैग टू चेक बट हियर आई मिस दैट. दैट इज द सेम थिंग आई ऑल्सो मिस. ये आपने मैसेज भेज के मुझे भी अपना बचपन याद दिला दिया. एवरी डे जब पापा आते थे मैं हमेशा जब थैली होती थी और मैं इतना एक्साइटेड होता था. या देखो उस टाइम पे तो क्या होता था, उस टाइम से गेम्स तो ये तो होते थे, हमें पता है कि हमें गेम्स सिर्फ त्योहारों पे ही मिलेंगे तो हमें ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी. मैं वहाँ पे एक्साइटेड पता किसके लिए होता कि सब्जी क्या लेके आए पापा. पापा थैली में सब्जियां भर के लेके आया था, कभी मटर हो गए, कभी टमाटर, कभी गोभी, कभी पालक, यू नो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो हर एक दिन जब भी पापा लेके आते थे मैं हमेशा खोलता था और जब मटर आते थे लिटरली मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था जैसे कि घर में केक आया हो. लिटरली मैं मटर लेके बैठ ही जाता था और छिलने और वहीं खाने लग जाता था, इतना एक्साइटेड होता था, इतना ज़्यादा पसंद है. आज भी मुझे बहुत पसंद है, बस ये कि यहाँ पे छिलने का मौका मतलब छिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे ऑलरेडी वैसे ही मिलते हैं. बट या सही में यार वो खाना, वो पल अपने घर वालों के साथ बिताना, इट इज़ लाइक ऑन अनदर लेवल यार, ऑनेस्टली.
12: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
3: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like 25% off Crayola, 20% off Elmer's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
4: We've got your ticket to an epic New Zealand getaway. Flights are on sale now with Air New Zealand. Explore our beautiful country. Hurry, NZ sale ends midnight 2 July. Travel periods, fruit exclusions and conditions apply. Book now at Air New Zealand.
5: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
6: Lunchbox with Keithan.
7: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी. हम
8: चटनी शॉट्स. वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंचबॉक्स और यहाँ पे हम बात करेंगे चटनी शॉट्स की, यानी कि यहाँ पे जो न्यूज़ आती है वो हम पढ़ेंगे. अभी तो खैर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है जो ऑफकोर्स यू डोंट वांट टू हियर और यू वांट टू हियर, बट ऑफकोर्स हमारे काम ये है कि आप तक जो भी न्यूज़ आई है बाहर उसे पढ़ना यहाँ पे, ताकि आप तक खबर पहुँच सके बाय लिसनिंग टू अस. वैसे यस, मैं याद दिला देता हूँ, आप रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ पे भी हम बहुत सारे आर्टिकल्स ये डालना शुरू कर चुके हैं, अलग अलग दिनों के अलग अलग आर्टिकल्स, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं वेन एवर यू गेट टाइम. और उसके बाद जो सारे वीडियोस होते हैं आप वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. पर यस, अभी की जो न्यूज़ है वो ये है कि न्यूजीलैंड के हंटली टाउन के एक ही लोटो स्टोर से एक ही ड्रॉ में 4 फर्स्ट डिवीजन विनिंग टिकट्स, बाइक और हर टिकट ने 250,000 जीत लिए हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे लाइकली सिनेरियो जो है वो ये है कि एक ही प्लेयर ने सेम लोटो नंबर्स को 4 अलग पावर बॉल नंबर्स के साथ खेला, जिस वजह से उसके पास 4 विनिंग टिकट्स आ गए. स्टोर ओनर्स इस रेयर अचीवमेंट से बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से जाता है तो उनकी बिक्री भी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी तक विनर ने अपना प्राइस क्लेम नहीं किया है. भाई किधर है रे, अगर तू सुन रहा है तो जा भाई, बहुत ही किस्मत वाले. वैसे ना एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं, पता नहीं कितना, ऑब्वियसली लोगों का अलग अलग होता है. अब जैसे यहाँ पे किस्मत की बात हुई है कि बहुत लकी था, पता नहीं क्यों किसने उस पॉडकास्ट पे एक बंदे ने बोला और मुझे काफ़ी ये वो बात है ना हिट की इन अ गुड वे, एज एन सोचने पे मजबूर किया. उस बंदे ने ये बोला कि जब आप बोलते हो कि मैं लकी था इस वजह से ये हुआ है, वेल एक्चुअली ये लक नहीं, ये आपके गुड डीड्स हैं जो आपने अच्छे कर्म किए हैं. सेकेंड थिंग इज जो फरिश्ते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपके वेल विशर्स होते हैं जिनकी दुआएँ होती है, वो वहाँ पर काम कर रही होती है. तो ये उसने वो बात बोली, मैंने कहा यार हो सकता है यार, मतलब उसके बाद जो मेरा सिनेरियो था कि मैं ही क्यों लकी हूं आउट ऑफ ऑल दीज, इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस. वेल यस, वेरी काफी अच्छी बात बोली उन्होंने. आपको क्या लगता है, आपका क्या सजेशन है इस पे? 5599 पे आप मुझे जवाब दीजिए.
9: दिल से

0: ढूंढेगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिज़्वी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: एवरीडे बर्न हैज़र्ड्स आर हॉटर देन दे लुक। एक्ट फास्ट, कूल बर्न्स अंडर रनिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स एंड फॉर सीरियस और लार्ज बर्न्स ऑलवेज कॉल 111। Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
5: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
6: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
7: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
8: Please use your imagination for the following ad.
9: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
8: Imagine winning $20 million this Saturday. Play in store or online.
10: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक।
2: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
11: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 1. A new study suggests airborne asbestos may have been released from recalled Playsand products. Auckland University of Technology found that fibres were expelled during simulated play with samples. Lead researcher Terri-Ann Berry says teams grew less optimistic the further they went into testing.
12: And I think there was a bit of a feeling that this might not be going in a good direction.
11: The government is expanding an oral language program aimed at improving early childhood skills. More than 500 early childhood centres will take part in the nationwide rollout, targeting youngsters aged 18 months to 5 years. America is being touted as an example as it moves away from leaded fuel. The country has identified aviation gasoline as a major emitter of the neurotoxin mix. In a

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 5 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 0% चांस है आज बारिश के, एज यू कैन सी आउटसाइड, हमने एक स्टोरी भी डाली है, बट आज का सनसेट होगा 5:17 पे, 1 मिनट और बढ़ गया है कल से।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: क्या नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो जिसका नाम है लंच बॉक्स शो। हम 104.2 एफएम के जरिए आप मुझे सुनते हैं, आप डेफिनेटली कनेक्टेड रहिए, यहाँ पे रोवा के जरिए भी आप मुझे सुन सकते हैं। वैसे यस, जस्ट टू लेट यू नो, फीफा का तीसरा मैच आज का शुरू हो चुका है, बिटवीन यूएसए वर्सेस बॉस्निया। जी हाँ, उनका मैच हो चुका है। यूएसए ने ऑलरेडी इतने कम टाइम पे बढ़त ले ली है, 1 गोल दाग दिया है उन्होंने, यानी कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आपकी टीम फेवरेट है यूएसए तो खुश हो जाइए। उससे पहले इंग्लैंड वर्सेस कॉन्गो डीआर के बीच में मैच हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने 2-1 से बाजी मारी है, और बेल्जियम और वर्सेस सेनेगल, उसके बीच में भी कुछ मैच हुए, कुछ क्या ऑब्वियसली फीफा का मैच हुआ था, राउंड ऑफ 32, उसमें बेल्जियम ने बाजी मारी है। मैंने लेकिन एक चीज देखी है मैंने, ये मैप के हिसाब से जो इन्होंने लिस्ट बनाया, उसमें से लेफ्ट टीम जो है वो जीत रही है। आपके जहन में कभी आया है ये कि मैच देख रहे हो, सॉरी मैच नहीं, मैच से पहले जो प्री फोटोग्राफी होती है उसमें ना ये इंडिया का जो है ना ये काफ़ी चलता है। अब पता नहीं बाहर दूसरे कंट्री वाले इसको फॉलो करते नहीं करते हैं, बट कौन सी साइड में खड़े हो वो बहुत मैटर करता है। फिर जैसे ऑब्वियसली 2023, उससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि 2023 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था तब रिस्क नहीं लेना था, वो फिर गलत साइड पे खड़ा हो गया था, क्या नाम है, रोहित शर्मा, और फिर कंपेयर किया जा रहा था, तो एक माइंड में आ रहा था, नहीं यार ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बट सडनली एक्चुअली देखे ना तो 2011 से लेके, सॉरी आई थिंक 2007 से लेके 2019 तक जो भी लेफ्ट या राइट साइड में था वो ही वर्ल्ड कप जीता है फाइनल, जबकि इंडिया वाला उल्टा था, तो लोग बोले भाई हम हारना नहीं चाहते और इंडिया सही में हार गई। अब पता नहीं कोइंसिडेंट था, पता नहीं क्या था, बट T20 वर्ल्ड कप में 2024 का जो था वो इंडिया इस बार इधर आई थी और रिस्क नहीं लेने का था, ऐसा भी कुछ आया था और इंडिया जीत गई। फिर जो लास्ट वर्ल्ड कप था 2026 का, सॉरी इस साल का जो वर्ल्ड कप था, इस साल ही था ना, हाँ T20 वर्ल्ड कप, तो वो भी जीती है, तो वो उसमें भी सही जगह थे वो, तो वो फिर से जीत गई। तो पता नहीं क्यों ये कितना सच है, कोइंसिडेंट है, या फिर ये सचमुच ऐसा होता है दैट कहाँ खड़े हो, किधर खड़े हो, कैसे खड़े हो, ये मैटर करता है इन सारे कॉम्पिटिशन्स में। एनीवेज, मेरा पॉइंट ये था कि आज जो मैं ये स्कोर देख रहा हूँ तो उसमें लेफ्ट साइड की टीम जीती है, और अभी यूएसए भी लेफ्ट में ही है, तो यस 1 गोल दाग चुकी। क्या लगता है यूएसए जीतेगी आज, आपके क्या ख्याल है? वैसे बने रहिए, बिकॉज अभी थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजेंगे, मैं आपको बताऊंगा कब कैसे
0: बचाओ क्या

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे हम
2: वेलकम बैक। जी हाँ, जल्दी से मुझे लंच टाइम फ्रंट लाइन के लिए आप मैसेजेस भेज दीजिए। व्हाट इज द वन थिंग यू हैव फेस्ड टुडे और यस्टरडे और बिफोर, जैसा भी हो आप जल्दी से मुझे 5599 पे भेज दीजिए। बट यस, जस्ट टू गिव यू अपडेट अबाउट हमारी पॉडकास्ट लिस्ट में एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है, हमने कल भी बताया था और काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी अच्छे रिव्यू भी दिए हैं। सो यस, सैंडी एंड रुजमे ने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है दर्शित पांडे के साथ, जो कि एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड एन AWS कम्युनिटी बिल्डर। जी हाँ, वैसे यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च की है और वही रिसर्च की जो नॉलेज उनके पास है वो हमारे बीच शेयर की है। तो आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, ये फ्री ऑफ दिस लिसनिंग टू अस फ्रॉम अवर लोकल, यानी कि ऑकलैंड में ही किसी बंदे ने आपके साथ शेयर की है। ऑब्वियसली पॉडकास्ट तो आपको बहुत मिल जाएंगे इंटरनेशनली नेशनली, बट दे माइट नॉट रिलेट टू ऑकलैंड का मार्केट। तो यस, सैंडी एंड रुजमे के साथ ये बात हुई है। आपको चाहे चैट जीपीटी से रिलेटेड सवाल हो या फिर एआई का जो जॉब सिक्योरिटी है उसको लेके हो गया, प्राइवेसी कंसर्न, अपॉर्चुनिटीज, या फिर क्या स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं, फ्यूचर क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली वहाँ से देख सकते हैं। सो यस, वेदर यू आर एक्साइटेड, क्यूरियस या फिर थोड़ा बहुत नर्वस हैं एआई को लेके कि फ्यूचर में क्या होगा, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। ड्राइव लिखिए, मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि ये ऑडियो पॉडकास्ट आप तक पहुंच जाए और आप उसे आराम से वाइल ड्राइविंग और वाइल वर्किंग और वाइल इवन इफ यू आर फ्री, दिस इज आई वुड से मस्ट वॉच इट। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूं कि आप एआई को लेके जहां पे भी मौका मिलता है, जितनी भी नॉलेज मिलती है, उसे कंज्यूम करिए।

0: को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
2: Indelible Homes, your building expert.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
5: Smart Pay
6: is now.
5: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce, local service.
6: Running a business keeps you busy enough. Managing your payments should be the easy part. Shift 4 is here to help with friendly 24/7 local support. Plus, their simple merchant dashboard lets you see your daily sales and more at a glance. So, make the shift today.
5: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce.
7: हाय बॉयज, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
8: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
9: But should we call her, sir?
10: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
7: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
11: YRF Spy Universe presents
12: Alpha,
11: releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films, rating TPC.
7: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
13: Lunch box with Ketan.
14: मुझे पसंद है लड़का।
13: हम। Lunch time rant line.
15: वेलकम बैक, आपका स्वागत करते हैं लंच टाइम के रेंट टाइम सॉरी लंच बॉक्स के लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट में। वेल यस, मैंने एक थोड़ी देर पहले सवाल भी किया था, आप मुझे अभी कॉल करके बता सकते हैं व्हाट यू थिंक इन दैट वे, अगर आपका कोई रिव्यू है तो, कि वी फील क्वाइट क्यूट, वी फील क्वाइट क्यूट व्हेन समवन लोकल स्पीक अवर लैंग्वेज, बट एज एन यहाँ का लोकल, नॉट अवर लोकल, बट न्यूजीलैंड का कोई बंदा अगर हमारी लैंग्वेज कर रहा है ना, ऑफकोर्स टूटी फूटी जैसे भी हो, वी ऑलवेज ट्रीट इट एज अ क्यूटनेस, बट वेन इट कम्स टू अवर ओन पीपल, वेन दे ट्राई टू स्पीक इवन दो इट इज़ नॉट देयर फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज, हम क्यों जज करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। यही चीज़ मैं रेंट लाइन पे भी करूँगा कि ये चीज़ हुई है रिसेंटली, मतलब मेरे पे नहीं, बट आई हैव कम अक्रॉस टू दिस टॉपिक, जो मेरे एक दोस्त था उसके साथ हुआ था ये, दैट जब घोरा बंदा, घोरे ही बोलते ना इसको, आई डोंट नो, यहाँ पे हो सकता है लोग अलग वे में ले, बट यस, जो लाइक लोकल था, व्हेन दे ट्राई टू स्पीक इट वॉज मोर लाइक अ क्यूट एंड ऑल, बट उसे प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आ रही थी, सो उसके अपने ही लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, यानी कि क्या इंग्लिश है तेरी ऐसी, ये वो। सो या बताइए, अगर यहाँ पे कोई है जो शेयर करना चाहता है अपने रिव्यू, अपने थॉट्स कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर यू नो इसको कैसे आप हैंडल भी करना चाहते हैं, एनी सजेशन यू वॉन्ट टू गिव टू माई फ्रेंड, तो लेट मी नो, आई वुड लव टू हियर। आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए। बीच में एक्चुअली कॉल आया था लेकिन एकदम कट गया। इफ यू आर लिसनिंग टू मी इवन नाउ, प्लीज कॉल मी और मुझे बताइए आपके क्या रिव्यूज हैं। बट यस लंच टाइम रेंट लाइन के लिए अभी कुछ मैसेजेस आए हैं, सो लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. एक तो है, सॉरी किधर गया, ये रहा. हाँ, केतन, टुडेज रेंट इज अबाउट पीपल हु डोंट रिप्लाई टू योर मैसेज ऑल डे बट द मोमेंट यू स्लीप दे सडनली टेक्स्ट आर यू अवेक. ये है भाई, ऐसे ऐसे बहुत जने हैं हमारी हमारी लिस्ट में, हमारे जो फोन बुक की लाइब्रेरी है, फोन बुक जो है उसमें काफी लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, बेपाक हरकतें, बेपाक. दूसरा मैसेज है, टुडेज रेंट केतन, व्हाई डू पीपल बुक अ मीटिंग फॉर 30 मिनट्स एंड देन स्पेंड द फर्स्ट 10 मिनट्स वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन. यार हो सकता है काफी कुछ इंपॉर्टेंट बात हो उनके पास जो उनको वो चाहते हो कि सभी को सुनाई दे. बिकॉज क्या होता है कभी कभी, ये मैं नोटिस किया दैट मीटिंग जब होती है जो एब्सेंट होते हैं वो देखते भी नहीं है, यू नो, गो थ्रू भी नहीं करते हैं. तो मे बी दैट कुड बी द रीजन. बट यस, थैंक यू यार, थैंक यू मैसेज के लिए. लगता है उस बात पे, उस चर्चा पे कोई है नहीं यहाँ पे जो हमसे बात करना चाहे या कुछ अपनी राय यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहे. सो नेवर माइंड, कोई बात नहीं, एंजॉय करिए, बहुत ही बढ़िया गाना, टॉप हिट ऑफ द आर का चिनरी चिनरी. कैसा लगा आपको गाना? मेरे को तो अच्छा लगा यार. आपको कैसा लगा ये रीमेक ऑफ चिनरी चिनरी?
13: लंच के मंच पे Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: स्वागत करते हैं लंच बॉक्स शो में फिर से. वेल यस, न्यूजीलैंड के छोटे से टाउन टेराउ की सबसे फेमस पहचान. ऑफ कोर्स आपको पता होगा, अगर आपको नाम से याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं. व्हेन यू गोइंग टुवर्ड्स आई थिंक हैमिल्टन या उस तरफ, तो रास्ते में एक आई सेंटर भी आता है, एक बहुत ही बड़े बड़े शीप्स बने हुए हैं, शीप्स रैम एंड डॉग बिल्डिंग बनी हुई है, तो आपने देखा ही होगा बहुत बड़े बड़े बना हुआ है. वेल कॉरिगेटेड आयरन से बने हैं शीप रैम और डॉग बिल्डिंग्स अब फिर से सेल के लिए मार्केट में आ चुकी है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड इफ यू वांट टू बाय दिस इज द थिंग, दिस इज द टाइम. ये आइकॉनिक बिल्डिंग सिर्फ शॉप्स नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है. शीप बिल्डिंग 1994 में बनी थी, बाद में रैम ऐड हो गया और डॉग बिल्डिंग में विजिटर्स इंफॉर्मेशन सेंटर ऑपरेट करती है. वैसे इन बिल्डिंग्स को 2016 में भी बेचा गया था और अब दोबारा 22 जुलाई को ऑक्शन होने वाली है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू जस्ट फाइंड आउट ऑनलाइन हाउ टू बी पार्ट ऑफ इट, वेदर यू कैन और नॉट, ये जस्ट पता कर लीजिए और यू नेवर नो, यू माइट बी द लकी ओनर. वेल आई नो काफ़ी होंगे जो ऑलरेडी जिनकी नज़रें होंगी इस चीज़ पर उस खरीदने के लिए, बट जस्ट सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि अगला जो ओनर होगा वो कौन बनेगा और क्या ये यूनिक लैंडमार्क अपनी पहचान इसी तरह बनाए रखेगी या नहीं. वैसे आप गए हैं, अगर आप गए हैं तो फील फ्री टू शेयर सम फोटोज ऑनलाइन हमारे यू नो फेसबुक पेज पे हम 104.2 FM.

0: What a song, Rang Jo Lagyo. Atif Aslam, Shreya Ghoshal ki awaaz mein. Waise, do you remember any particular song jo aapne suna ho, sabse pehla Atif Aslam ki? Maine suna tha, maine honestly, us time jab suna tha maine pehli baar, Kaliyug, mere ghar ke jahan, Udaipur mein jahan mera ghar tha, jo bhi yahan se hai Udaipur mein, they would know Swapn Lok ek karke theater hua kar jahan pe alag tarah ki film lagti thi jo sachmuch parivar ke sath nahi dikha ja sakta waisi film lagti thi wahan pe but kabhi kabhi achhi filmein bhi lagti thi wahan pe aur unfortunately mere ghar walon ka dikkat ye tha ki wo hamare ghar ki entrance ke just samne theater tha aur wahin bade bade poster lagte the so yeah agar koi Udaipur se tha they would know ki Swapn Lok ek sachmuch Swapn Lok hi tha. बट एनी वेज ये वहाँ पे मूवी लगी थी कलयुग और वहाँ पे मैंने पहली बार मूवी तो नहीं देखी थी तब मैंने तो टीवी पे देखी थी बट इट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग प्रोमो में देखा था और आतिफ असलम का ऑनेस्टली उसी दिन से मैं फैन बन गया एंड जो रेंज है उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला था पहले रुको यार मैं इतनी लंबी बात करूं भूल नहीं जाऊं मैं हाय सैंडी हाउ आर यू
1: आई एम गुड केतन नहीं इट्स ओके बोलो तू
0: नहीं मतलब आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू एज वेल कि आपने कब पहली बार सुना और
1: आतिफ असलम का
0: हां जी
1: आतिफ असलम का पहली बार तो मुझे एक्चुअली में याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट लाइक पहली नजर में वो जो उनका गाना था वाज माय द फर्स्ट फेवरेट आई थिंक नहीं उससे पहले उन्होंने एल्बम में भी कोई गाना गाया था
0: बहुत सारे गाए
1: या
0: बहुत बहुत बहुत गाए
1: एल्बम के लाइक उन्होंने गाने गाए थे पहले जो कि काफी अच्छे थे
0: हाँ बट ये कलयुग वाला इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी फैन ऑफ जल बैंड जो पाकिस्तान का बैंड था और उन्होंने भी वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने आदत वाला उनका हम ऑलरेडी गाते थे बट देन आई हियर दिस ये मैं कलयुग जो इसकी आई थी मनामुल के डायरेक्टर का आलिया भट्ट के पापा नहीं महेश भट्ट आई गेस
1: महेश भट्ट
0: नॉट मुकेश आई डोंट नो जो भी है महेश मुकेश जो भी है तो उनका मैंने सुना था तो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक यार ये कौन सा वर्जन है क्योंकि तब कवर का सीन नहीं था ना और हमारे जहन में ये था कि कोई भी ऐसा रीमेक आ रहा है या तो चोरी हुई या ऐसा हुआ
1: पहले कवर नहीं होता था पहले रिप्राइज वर्जन रिप्राइज वर्जन
0: बस हल्का फुल्का वो कर दिया बट हाँ एक्चुअली मेरा पॉइंट पता क्या था मैंने थोड़ी देर पहले रेंट में एक सवाल पूछा था यहाँ पे और अनफॉर्चुनेटली किसी का रिस्पांस नहीं आया तो सोचा शायद आप उसमें कुछ लाइमलाइट डाल सकें अपना थॉट प्रोसेस जो भी है हम न्यूजीलैंड में है डजंट मैटर इवन इफ इन इंडिया एज वेल कोई वहां पे फॉरेनर आता है एंड दे ट्राई टू स्पीक अवर लैंग्वेज तो वी ट्रीट इट एज क्यूट इंडिया में तो होता ही है बहुत ज्यादा बट यहाँ आने के बाद भी व्हेन वी ट्राई टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश और ऑब्वियसली नॉट एवरीवन हैज अ गुड कम्युनिकेशन राइट तो उनको बहुत डिफिकल्टी होती है एंड सामने वाला बंदा पकड़ लेता है सो गोरा फॉरेनर हम फॉरेनर अब तो खैर यहाँ पे तो वो बंदे जज नहीं करते बट हमारे अपने ही लोग क्यों जज करते हैं
1: वो तो यार हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है
0: फितरत है हमारी जज करना लोगों को
1: कोई अच्छे से हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज बोल रहा है तो उसके ऊपर तारीफ नहीं होती है लेकिन अच्छे से अगर इंग्लिश नहीं बोली है तो उसके ऊपर तो बहुत
0: ही ज्यादा
1: बहुत ज्यादा होता
0: मतलब
1: है
0: लोग काफी इसको जज करते जजमेंटल में डालते हैं
1: नॉट जस्ट इन दिस आई विल से नॉट जस्ट इन ओवरसीज ये बात सिर्फ ओवरसीज की नहीं है केतन ये साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर भी है
0: इंडिया हाँ मतलब अगर मतलब, अपन जैसा अपन ऑब्वियसली इंडिया से तो अपन इंडिया की बात करेंगे तो
1: एग्जैक्टली तो जो कंट्रीज है वहां पे भी होता है कि अगर कोई बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है या टूटी फूटी इंग्लिश है कैसे भी बोल रहा है तो उसको जज बहुत किया जाता है कि बाहर आके तो चलो मैं भी इसलिए कर रहे होंगे कि भाई तुम इस जगह पे हो तुम्हें आनी चाहिए वो कोई भी उनका रीजन हो सकता है लेकिन एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है वहाँ पे जज करना नहीं बनता है
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसलिए टॉपिक छेड़ा बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल आर लिविंग हियर सो वी कैन रिलेट राइट इंडिया का तो ऑब्वियसली वी नो दैट बचपन से ये सुने जाता है भाई तेरे को हिंदी आए नहीं आए ढंग की चलेगा बट इंग्लिश जरूर आनी चाहिए उनका होता जजमेंटल बिकॉज दे ऑलवेज ट्रीट इट एज मतलब आपकी इंग्लिश डिपेंड करती है, स्कोर बताती है आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन। इंडिया में ये चलता है, जितनी फाड़ू इंग्लिश बोल रहे हो, भले आपकी एजुकेशन नहीं है बट आप उससे जस्टिफाई कर रहे हो दैट यू आर वेरी लिटरेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यू कैन इजिली कम्युनिकेट विद लोकल हियर, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन, ऑब्वियसली हम इंडियंस हैं तो मैं उन्हीं की बात करूंगा, तो वहां पे लोग बहुत ही ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं।
1: बहुत भरे हुए हो तुम।
0: नहीं, मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसने कंप्लेन की है, मतलब मैंने खुद ने पर्सनली फेस किया है, बट इनिशियली अभी पता नहीं, आई डोंट नो how much people will rate me based on my communication.
1: But किसी की रेटिंग की क्या जरूरत है ना?
0: हाँ, obviously किसी के नहीं, as long as सामने वाला बंदा, क्योंकि हमें ना पता है कि अपन भटक जाते हैं, we don't treat this language as just a way of communication, we उससे ज़्यादा हम अलग expect करते हैं, ऐसा बहुत देखा है कि आप
1: तुम सबसे ज़्यादा comfortable किसी को अपने आप को explain करने में किस language में होते हो?
0: लेकिन
1: तुम्हारी फीलिंग्स जो है वो किस लैंग्वेज में अच्छे से जाहिर होती है?
0: वो तो हिंदी, डेफिनेटली माय फर्स्ट लैंग्वेज।
1: आई थिंक ये भी डिपेंड करता है कई
0: बार, और ये मूवीज में भी होता है, पता है? यार देखो, नो डाउट मैं यहाँ रह रहा हूँ न्यूजीलैंड में, और ऑब्वियसली यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है, राइट? यहाँ पे दो सेम कंट्री सेम शहर के बंदे मिलते, बट दे डोंट टॉक, मतलब स्पेशली जो मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी तरफ से। हम मूवी भी देखने जाते हैं, आज भी आई लव टू वॉच इंग्लिश मूवी इन डब्ड, नो मैटर व्हाट, मुझे बहुत मतलब मुझे आ जाती है समझ में, सब आता है, बट वो जो एक वो होता ना कि ह्यूमर, ह्यूमर मुझे हिंदी में ही क्लिक करता है,
1: क्या बात
0: जो जोक
1: मारने
0: की कोशिश करते हैं। तो अब जैसे स्पाइडरमैन आ रही है अभी इस महीने रिलीज होगी,
1: हिंदी में देखोगे?
0: वो होती नहीं है ना रिलीज यहाँ पे, बट मैं मतलब मैं भी अगर टीवी पे आती है कहीं तो वहाँ पे हिंदी में देखूंगा, जैसे नेटफ्लिक्स पे आ गई, वहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, तो उसको आई प्रेफर टू वॉच इन हिंदी, क्योंकि वो ह्यूमर में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो लेकिन अगेन पीपल विल जज, यार तू क्या है, तू इंग्लिश में क्या है, उसमें मजा है क्या हिंदी में, मतलब क्यों मजा नहीं है?
1: आई थिंक वो अपनी अपनी चॉइस है किस लैंग्वेज में देखना।
0: किसी का मैसेज आया, बिकॉज दे थिंक दे आर द बेस्ट और दे वॉन्ट टू शो लाइक यू आर नॉट एक्सपर्ट, दे ऑलवेज शोज ऑफ, बट गोरा लोग दे एटलीस्ट वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन देयर लैंग्वेज। सेंस है यार, मतलब काफी सेंस तो है, बट ये सेंसिबल बातें जिसने लिखी है उसने अपना नाम नहीं लिखा।
1: कोई चक्कर नहीं।
0: कोई बात नहीं।
1: लाभ भी केतन के साथ अगर क्या कहते हैं उसके इत्तफाक रखते हैं तो आप मैसेज कीजिए 555 पर।
0: कौन सी गजल सुन के आए आप?
1: उर्दू आती है, बीच में एक दो वर्ड ऐसा फेंक के, मैंने सुना है कहीं पे कि अगर उर्दू के एक दो वर्ड आपको आते हैं ना सेंटेंस के बीच में आप ऐसा रखते हैं, सेंटेंस बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल बन जाता है।
0: हाँ, तो अभी बस वो इत्तेफाक के बाद तो कभी कुछ बोले नहीं आपने उर्दू में कुछ?
1: हाँ, तो ऐसे ही आता है ना कभी कभी, ज़हन में नहीं आया अभी मेरे।
0: ज़हन में, ज़हन इज़ द उर्दू वर्ड।
1: एग्जैक्टली।
0: क्या बात है। चलिए अब हमारा जो शो है यहीं पे आगे बढ़ाते हैं और गाना चलाते हैं, क्योंकि उसके तलफ्फुज जो है काफी सुंदर है।
1: अरे वाह। लंच बॉक्स विद केतन। हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे। Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby. तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
1: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
1: अच्छा, आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: ब्रेकफास्ट विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

0: वेलकम बैक, क्योरा नमस्ते, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, आप बने रहिए, 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद सैंडी आएंगी इन द कॉफी ब्रेक, फिर ड्राइव शो में उनका साथ देंगे रुजबे। जल्दी से फटाफट से अभी आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट तो अभी चल रहा है, 90 से ज्यादा हो चुके हैं, यानी कि 96 मिनट हो चुके हैं। एज आई टोल्ड, एज आई सेड कि लेफ्ट साइड वाले आज जीतेंगे और यूएसए इज 2 गोल से आगे है बोस्निया के अगेंस्ट। सैन फ्रांसिस्को में ये मैच हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, और लग रहा है यूएसए जीत चुकी है ऑलमोस्ट, बिकॉज 90+6 हो चुके हैं और उनकी तरफ से एक भी गोल नहीं हुआ है। अभी 90+7 भी हो चुका है। सो यस, आप बने रहिए, ऐसे और भी खबरें आपको बताता रहूंगा। कुछ मौके आपको देने इस आर में, यानी कि करण औजला के लिए टिकट्स और ग्रेट कपिल नाइट के लिए भी आपको ड्रॉ के लिए ऑप्शंस देने वाला हूं, मौके देने वाला हूं, जहां पे आप पार्ट लेके जीत सकते हैं ढेरों इनाम। बने रहिए आज के इस लंच बॉक्स शो में।
1: बचाओ क्या,

0: वेलकम बैक। कोई कहे कहता रहे, शंकर महादेवन शान और केके की आवाज। यार केके का जब से मैंने गाना सुना है, पहली बार जो डिस्कवर हुआ था वो था जरा सी दिल में दे जगह तू। लेकिन देन आई रियलाइज, मैं कहा यार ये नया सिंगर तो बहुत बढ़िया यार, क्या गाता है यार। बट बाद में रियलाइज हुआ भैया नया नहीं है, मैं नया सुन रहा हूँ, हमारे तक आम जनता तक अब पहुंचा है। बट ये 1990s से गाना गा रहा है। इनफैक्ट अगर आऊंगा एक गाना अगर आपने सुना होगा, तड़प तड़प के इस दिल में आह निकलती रही, वो भी केके ने गाया। सच अ ग्रेट वॉइस राइट, ऑफकोर्स। तो उन्होंने ये गाने गाए हैं। अभी एक लेटेस्ट खबर बता देता हूँ, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है। गवर्नमेंट अपने जो एनरिच प्रोग्राम अब 65 से बढ़ाकर 525 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स तक एक्सपैंड कर रही है। एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड का कहना है कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से कई बच्चे स्कूल आते वक्त अपने एज के हिसाब से लैंग्वेज डेवलप नहीं कर पा रहे। कुछ 5 साल के बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स सिर्फ 2 साल के बच्चों जैसी देखी गई है। That's scary. Well, इस प्रोग्राम में टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल टूल्स दिए जाएंगे ताकि वो बच्चों के साथ साथ बातचीत भी करें और प्ले एक्टिविटीज के थ्रू उनकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को और भी बेहतर बनाए। मतलब मैं तो काफ़ी खुश हूँ यार ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेने वाली, बिकॉज हम हमेशा कंप्लेन करते हैं दैट हमारे बच्चे शुड नॉट गो इनटू नॉट कंप्लेन बट प्रे करते हैं कि हमारे बच्चे नो डाउट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें बट ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, नॉट कि फॉर योर फन फॉर योर एंटरटेनमेंट, उसके लिए नहीं। सो यस, ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव यार। क्या लगता है आपको जो गवर्नमेंट ये कदम उठाने वाली है, इज दिस वर्थ, लाइक इज इट गुड और नॉट?
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: Moisture और ventilation का problem लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
8: MediaWorks complaints. How can I help?
9: My kids won't shut up.
8: I'm not sure that's our problem.
9: They keep reciting lines from one of your radio ads.
8: Aww, cute.
9: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
10: What do you want, son?
11: I want me some of that real southern chicken.
9: 28 times.
8: So where are you now?
9: Eating chicken.
12: Advertise with MediaWorks.
13: New Zealand listens to us.
14: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927 88 600.

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई है।
1: इसके पीछे
2: Well, the results are out now. USA finally has won the match against Bosnia, जो कि San Francisco Bay Area Stadium में हो रहा था, और दो गोल उन्होंने दागे हैं और दोनों गोल्स 2-0 से ये मैच जीत गई है। यानी कि आज की इकलौती टीम बनी है बॉस्निया जिन्होंने एक भी गोल नहीं दागा है। वैसे कल भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्पेन सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगा वर्सेज ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल वर्सेज क्रोशिया भी 11 बजे शुरू हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड वर्सेज अल्गेरिया वो होगा 3 बजे। जी हाँ, कल का दिन भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ी बड़ी टीम खेल रही है आपस में मैच। कुछ क्रिकेट के बारे में भी हम आज इस आर में बात करेंगे। लेकिन यस, लेट मी रिमाइंड यू, गुज्जू बाइनी एक्सचेंज ऑफर ये शो लेके आए हैं सिद्धार्थ रंडेरिया, यानी कि कल के दिन आपके पास आखिरी दिन है आज कल का। आई एम नॉट श्योर अगर कल तक टिकट बचेगी या नहीं, बट यस, इनका शो होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में 3 तारीख को, यानी कि कल 7:30 बजे के बाद शाम के। एक बहुत ही ब्रांड न्यू कॉमेडी शो लेके आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सामने परफॉर्म करेंगे, और एक एक्सचेंज ऑफर को कैसे एक हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होता है वो आप देखेंगे। काफ़ी ट्विस्ट आपको दिखेंगे अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी यू नो बढ़िया एक्टिंग हुई है, बढ़िया डायलॉग लिखे गए हैं, और एक से बढ़कर एक स्क्रीन प्ले भी लिखा गया है। जी हाँ, वैसे यस, हर सिचुएशन में आपको हंसी तो आएगी ही आएगी, लाइक देयर इज नो पॉइंट कि आपको हंसना नहीं आएगा। और सबसे खास बात है, गुजराती ह्यूमर भी उसमें कूट कूट के भरा गया है। सो यस, premierTickets.co.nz पे जाइए और इसके टिकट्स ले लीजिए बिफोर इट गेट्स सोल्ड आउट, बिकॉज सिद्धार्थ रंडेरिया इज नोन फॉर लास्ट मिनट में भी इनके शोज जो है हाउसफुल जाते हैं, सो यू नेवर नो। बड़े खास अनाउंसमेंट, आप चाहे सनसेट का फील ले रहे हो या फिर यू नो स्ट्रीट फूड के लुफ्त उठा रहे हो, या फिर समुद्र की लहरों की आवाज, या फिर हंसी, या फिर लेट नाइट स्टोरीज, आपका इनमें से क्या फेवरेट टॉपिक है आप मुझे 5599 पे बता सकते हैं। बट यस, ये जो बात है ये आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हम इतने टाइम से मार्केट कर रहे हैं, जहाँ पे आई नो दैट यू मस्ट बी वेटिंग फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। बट यस, फाइनली आज के दिन शाम के 5 बजे ये आउट होने वाला है कि हम इतने टाइम से क्या ढिंडोरा करते आ रहे हैं। सो यस, ईस्टर कुड बी योर्स, 2027 का जो ईस्टर है वो आपका हो सकता है। ये सारी चीज़ों को लेकर क्या, कैसे, कब, ये उसके उसको सुनने के लिए आज शाम 5 बजे तक आप इंतज़ार करिए इन द ड्राइव शो।
3: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। चलिए एक बहुत ही बढ़िया बात आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। राहत फतेह अली खान,
1: ओरे पिया,
0: द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान इज कमिंग टू ऑकलैंड फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, जो कि जुलाई में होने वाला है, यानी कि इसी महीने 25 तारीख को द ट्रस्ट एरिना में उनका शो होने वाला है, जिसे प्रेजेंट किया जा रहा है जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन। इतने सारे प्रोडक्शन अगर मिलके शो करेंगे तो डेफिनेटली 100% बहुत ही लाजवाब आपको मिलने वाला है। सो यस, आप मेक श्योर करें कि टाइम से जाके टिकट ले लीजिए, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट हाउस फुल। टाइमलेस हिट्स स्टेरिंग खवाली के साथ आप ये एंजॉय कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स आप खुद को पता है, बताने की जरूरत नहीं कि इतने एक से बढ़कर एक गाने हैं उनके, एक से बढ़कर एक। वेल यस, ये होने जा रहा है 25 जुलाई को। dryticket.com पर जाकर आप इसके टिकट खरीद सकते हैं। द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में होने वाला है इनका शो। बट यस, एक और चीज, एक कॉम्पिटिशन मैं रन कर रहा हूँ। सवाल मेरा ये रहेगा थोड़ी देर में, ऑकलैंड आप सभी रेडी हो जाए एक बहुत ही बढ़िया लाफ अंटिल इट हर्ट्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिविजन इवेंट्स लेकर आ रहे हैं, द ग्रेट कॉमेडी नाइट, कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर। वेल यस, कमिंग टू ऑकलैंड न्यूजीलैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये होने जा रहा है 18 जुलाई को, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। आप इसके टिकट ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पे जाके। टिकट लेते वक्त अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप उन्हें कॉल भी कर दीजिए 021-043-2720 पे। आफ्टर पे ऑप्शंस भी उसमें अवेलेबल है। एंड यस, अपडेटेड जो नई न्यूज़ आई है वो ये कि VIP टिकट्स जो हैं वो सब बिक चुकी हैं। आपके पास जो अभी बाकी की जो सीट्स हैं उसे आप ग्रैब कर सकते हैं बिफोर दे ऑल्सो गेट हाउसफुल, बिकॉज वो पहली बार आ रहे हैं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही मज़ा आने वाला है। वेल यस, ये रहा मेरा सवाल, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जवाब भेजना है मुझे, और आप जल्दी से मुझे 5599 पे इसका जवाब लिख के भेज दे अपने नाम के साथ, ताकि आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाए, ताकि इस शो के लिए आप टिकट जीत सकते हैं, एक डबल पास जीत सकें। मेरा सवाल यह है कि राजीव ठाकुर लेटेस्ट एक फिल्म आई थी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, वो फिल्म का नाम क्या था? एक प्रॉपर फीचर फिल्म, पता नहीं वो सिल्वर स्क्रीन यानी बड़े पर्दे पर रिलीज हुई नहीं हुई, बट प्रॉपर फिल्म थी वो। जी हाँ, तो इसका जवाब मुझे जल्दी से भेज दिए। राजीव ठाकुर का एक नेगेटिव रोल था उस फिल्म में, तो हिंट के तौर पे ये कह सकता कि प्लेन में उन्होंने शूट किया है ये, मोस्टली फिल्म जो है वो प्लेन के अंदर की है। सो यस, ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने काम किया, एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया फिल्म थी, और एक इंडिया की रियलिटी बेस्ड पे है, ट्रू स्टोरी पे है। सो यस, इसका जवाब मुझे 5599 पे भेज दीजिए, एंड आपका नाम ड्रॉ में शामिल हो जाएगा, और फिर आप वेट करिए फॉर इट टू हैपन वेरी वेरी सून।

स्वागत करते हैं फिर से आपका लंच बॉक्स में। और लेकिन एक ये जो है ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मैं बात बोलने वाला हूँ, बिकॉज इस सेगमेंट में मैं आपको मौका देने वाला हूँ गाना गेस करने का। गाना कौन से मैं चलाने वाला हूँ, करण औजला का एक बहुत ही बेहतर गाना और जो मेरा भी फेवरेट है। लेट मी जस्ट फाइंड आउट, देयर यू गो, मेरे को मिल गया है। और इस गाने को आपको क्या करना है, गेस करना है और मुझे KA लिख के सही नाम के साथ 5599 में भेज देना, यानी कि सही गाने का जो टाइटल है वो भेज के अपने नाम के साथ मुझे 5599 पे भेज देना। जस्ट टू लेट यू नो बिफोर आई प्ले द सॉन्ग, एक चीज आपको बता देता हूँ दैट यस, इनका शो होने वाला है 25 अगस्त को स्पार्क एरिना में, तो यस आप सब वहीं पहुंच जाइए। 6 जुलाई को ब्रेकफास्ट शो में रिवील भी हो जाएगा कि कौन विजेता है इस डबल पास का। वेल यस, करण ओजला आ रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल सेंसेशन पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके ऑकलैंड में, एंड बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और इसके साथ इस बार सरप्राइज है, सरप्राइज तो क्या है, अब तो स्पेशल गेस्ट भी आ रहे हैं, हिट मेकर इक्की बोलते ना, हाँ इक्की या इक्के आई गेस इक्की, जो भी है बहुत ही बढ़िया सेलिब्रिटी है वो भी। और उनकी जो अनफॉर्गेटेबल नाइट है, म्यूजिक और एनर्जी को लेने के लिए आप एक्सपीरियंस करने डेफिनेटली पहुंच जाइए, बट उससे पहले टिकट खरीद लीजिए। आप टिकट के लिए मोर इन्फॉर्मेशन आपको hum.roa.nz या फिर livenation.co.nz पे मिल जाएगी। बट चलिए गाना चलाऊं, उससे पहले मैं ये म्यूजिक थोड़ा डिप डाउन कर देता हूं, एंड ये मैं चला रहा हूं। सो यू गाइस रेडी, जल्दी से फोन उठा लीजिए और मुझे बताना।

बस इससे ज्यादा नहीं चलाऊंगा मैं, क्योंकि इसके बाद तो जस्ट टाइटल का नाम ही है, गाने का नाम ही है, तो इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा। बट यस, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से मुझे 5599 पे इसका जवाब भेज दीजिए सही नाम के साथ। मेक श्योर आप के ए लिखना ना भूलिए और अपना नाम भी लिखना ना भूलिए, बिकॉज नाम अगर नहीं होगा तो हम कैसे डालेंगे भाई। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। 80s के रेट्रो गाने।

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: वेल यस फुटबॉल के अपडेट में बता देता हूँ फटाफट से. आज तीन मैच हुए थे बिटवीन इंग्लैंड एंड कॉन्गो डीआर, जिसके बीच में इंग्लैंड ने बहुत ही बढ़िया खेलते हुए 2-1 से मैच जीत लिया है. उसके बाद बेल्जियम और सेनेगल के बीच में भी मैच हुआ था, जिसे बेल्जियम ने 3-2 से जीत लिया है. और उसके बाद आखिरी जो मैच था वो हुआ बिटवीन यूएसए वर्सेस बोस्निया. यूएसए ने 2 दागे और 2-0 से ये मैच जीत लिया है. कल भी बहुत ही बढ़िया रहेगा मैच. तीन मैचेस है कल. स्पेन वर्सेस ऑस्ट्रिया, पोर्चुगल वर्सेस क्रोशिया, स्विट्जरलैंड वर्सेस अल्जीरिया. सो ये मैचेस कल होने वाले हैं. बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम. कल बात करेंगे बाकी के मैचेस की. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.

प्यार इतना ज्यादा दिया कि वो रोने लगी, मानसिक संतुलन अपना खोने लगी, पहले गंदा किया फिर खुद ही धोने लगी, एक रात में हिलाव उसे होने लगी। मैंने बोला एक छोटी सी फाइट है, सुबह ठीक 6 बजे मेरी चंडीगढ़ की फ्लाइट है, स्केड्यूल थोड़ा टाइट है, कहती आदित्य झूठ बोलने की भी एक हाइट है, कैसे बताऊं लाइफ झूठों से बनी, पिए से है रखे जो घूटों से बनी, मेरी ना किसी इंसान से बनी, बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी, मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी, मेरे गोयाट के बैग कानों में टिफनी, मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी, कोई टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी, तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू, मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर, कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर, जो भी चलता है उसकी फाड़ता फिरूं, हिट पे हिट मैं मारता फिरूं, 3 रात लगातार मैं जागता फिरूं, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

प्रोवाइड करते ही जा रहे हैं। पहले ये अपडेट्स भी आपके लिए यहाँ पे रहेगी, आपके आसपास क्या हो रहा है ये भी रहेगा। गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज पुश, वेल इसके बारे में भी बात करेंगे एंड कुछ और भी दुनिया भर की न्यूज़ है। और 5 बजे के बाद आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है गाइज, जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। ये जो स्पेशल अनाउंसमेंट है ये करने के लिए एक गेस्ट यहाँ पे आने वाले हैं हमारे साथ यहाँ पे ड्राइव शो में। एंड या दिस इज़ जो हम आपको बोले थे ना ईस्टर 2027, ये ईस्टर 2027 के बारे में आज खुलासा होने वाला है, आज ये रिवील होने वाला है सीक्रेट। सो दिस विल बी 5 बजे आज 5 PM के बाद ड्राइव शो में, तो सुनते रहिएगा।

3:11 हो चुके हैं फिलहाल, कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है अपना एनरिच प्रोग्राम, जो कि यंग चिल्ड्रन को हेल्प करेगा टू डेवलप लैंग्वेज स्किल्स बिफोर दे स्टार्ट द स्कूल। सो ये जो प्रोग्राम है ये ग्रो करेगा 65 अर्ली चाइल्डहुड सेंटर से नाउ 525 सेंटर्स नेशन वाइड। सो इट टारगेट्स चिल्ड्रन विच द एज बिटवीन 18 मंथ से लेके 5 ईयर्स के बीच में। सो इसका रीज़न क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टैनफोर्ड इसने बोला है कि टीचर्स जो है इन्होंने बताया है, जो नेशन वाइड एक्चुअली रिपोर्ट है इससे पता चला है कि बहुत सारे बच्चे जो कि स्कूल शुरू करते हैं उनको सिग्निफिकेंट लैंग्वेज डिले होता है। एंड इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं, इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, बट शी पॉइंटेड कि इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम एट होम वॉज अ वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। सो एक्सेसिव डिवाइस यूज़ कैन रिड्यूस द मीनिंगफुल पेरेंट एंड चाइल्ड कन्वर्सेशन, जो कि एक लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल होता है। सो यहाँ पे एनरिच प्रोग्राम क्या करेगा? ये जो एनरिच प्रोग्राम है इट ट्रेन्स टीचर्स टू बिल्ड चिल्ड्रंस लैंग्वेज थॉरो, जिसमें एवरीडे कन्वर्सेशंस होंगी, स्टोरी टेलिंग होगी, प्ले बेस्ड लर्निंग रहेगी, इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ पैसिव लर्निंग। वीडियो से क्या हो रहा है कि एक पैसिव लर्निंग हो रही है कि आप किसी करेक्टर्स को देख रहे हो कि वो कम्युनिकेट कर रहे हो, आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, बट देन इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ कि आपके साथ कोई इंटरेक्ट कर रहा है, आप वहाँ पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो। सो ये जो ट्रायल है इससे पता चलता है कि द चिल्ड्रन इन द प्रोग्राम शोड बेटर ओरल लैंग्वेज, इम्प्रूव्ड सेल्फ रेगुलेशन, स्ट्रॉन्गर अर्ली लिटरेसी एंड बेटर सोशल स्किल्स एज वेल। सो ये बताया गया है कि कि अगर इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम घर पे रहता है तो ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि बच्चे में स्पीच डिले, लैंग्वेज डिले हो सकता है। सो इसीलिए इस प्रोग्राम को अभी, जो कि पहले सिर्फ 65 अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स में था, अभी इसको एक्सपेंड कर रहे हैं टू 525 सेंटर्स नेशन वाइड। मुझे लगता है कि दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक्चुअली में किया है ये स्टेप। ये जो एक्सपेंशन है इज़ फंडेड विद $12.4 million फ्रॉम लास्ट ईयर्स बजट। मतलब कहीं ऐसी जगह पे, एक ऐसे प्रोग्राम पे ये बजट यूज़ हो रहा है जहाँ पे बच्चों की हेल्प हो रही है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके घर पे या फिर आपके नोन के घर पे बच्चे हैं जिनको स्पीच डिले है, लैंग्वेज डिले है, और लैंग्वेज डिले को लेके ना बहुत ज़्यादा मैंने रिसेंटली सुना है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात की है कि वो जानते हैं बच्चे को, मतलब उसमें लैंग्वेज डिले है, बहुत लेट बात करना शुरू किया है उसने, ये बहुत ज़्यादा हमने सुना है। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ अ फैक्टर? इज़ इट रियली द स्क्रीन टाइम वहाँ पे फैक्टर है, एंड या फिर स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए एक फैक्टर है, या फिर स्क्रीन टाइम पेरेंट्स का फैक्टर है, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है। पेरेंट्स को जब अपना स्क्रीन टाइम चाहिए होता है तो वो बच्चों को भी बिजी करने के लिए उनको भी स्क्रीन टाइम देते हैं। सो दे आर मैनी थिंग्स, इट्स नॉट ईजी बींग अ पेरेंट। मेरे घर पे नेफ्यू है तो मैं देखती हूँ, इट्स नॉट ईजी। सो एक पेरेंट के लिए जो लाइफ है, स्पेशली एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे यू बोथ आर वर्किंग, सो वहाँ पे आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी लगता है कि कोई चीज़ शायद इग्नोर हो रही है, ये सब हो रहा है। बट मेरे को लगता है कि वहीं पे ऐसे प्रोग्राम्स जो है ये आपके लिए गाइडेंस बनते हैं एंड बताते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अगर टीचर्स इसके लिए सही से ट्रेन हो रहे हैं तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। बट यू ग्रोइंग अप, आपको लैंग्वेज स्किल में आपको क्या हेल्प किया था? स्टोरी बुक्स, ग्रैंड पेरेंट्स से बातें करना, पेरेंट्स से बातें करना, या कार्टून्स? व्हाट वाज योर थिंग व्हाइल ग्रोइंग अप? आप सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते थे? स्टोरी बुक्स का कल्चर तो अभी भी बहुत ज़्यादा है वैसे, और बहुत ही डिफरेंट टाइप की स्टोरी बुक्स एक्चुअली में मार्केट में मिलती है, इंटरेक्ट करने के लिए भी, फील करने के लिए भी एक्चुअली में स्टोरी बुक्स बहुत सारी मिलती है। सो आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, या फिर आपके घर में अगर बच्चे हैं तो आप उनके साथ क्या चीज़ के ऊपर फोकस करते हो? डू यू डू द स्टोरी टेलिंग विद योर किड्स? डू यू डू द स्टोरी बुक्स, या फिर आप किसी और वे से इंटरेक्ट करते हैं? सो आप भी बताइए यहाँ पे 5599 पर मैसेज करके, एक्चुअली में आप शेयर कर सकते हैं।

0: 3:23 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे सवाल पूछा था एक्चुअली भी, हमने बातें की थी थोड़ी देर पहले अबाउट नया प्रोग्राम जो कि है गवर्नमेंट इसे एक्सपेंड करने वाली है. इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करने वाली है एनरिच प्रोग्राम, जहाँ पे बच्चों की लैंग्वेज डिले जिन्हें है वहाँ पे उनकी हेल्प हो सके. एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया इनका. इन्होंने बोला है कि आई डोंट बिलीव इट्स हार्ड टू रेज किड्स. आई एम सिंगल मम ऑफ टू किड्स एज 10 and 6. इन माई हाउस मंडे टू थर्सडे नो डिवाइसेज और टी वी इज़ अलाउड. After school, my kids come home, have a snack, change and do housework, do homework without device. School में कुछ जो devices use होते हैं homework करने के लिए, they only get 1 hour a week to do that as well. Other than that, उन्होंने उनकी swimming, school activities की booking की है, उनको bore होने देती है, खुद business में चला रही है, अपने दोनों बच्चों को भी पाल रही है. Well, great man, good on you. And हमारे साथ यहाँ पे phone line पर भी कोई शामिल है. Hi. आपकी फॉर सम रीज़न मुझे आवाज़ नहीं आ रही है जिन्होंने फ़ोन किया. ओके, कट ही गया फ़ोन, आवाज़ तो कैसी आएगी. हाय केतन, कैसे हो तुम? तुमने बहुत अच्छा पॉइंट इसके बारे में शेयर कर रहा था, बिकॉज ये टॉपिक के ऊपर हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, तो केतन ने बड़ा अच्छा पॉइंट इसके ऊपर शेयर किया था. वो तुम ऑन एयर अगर बताना चाहोगे तो.
1: क्या सवाल क्या था? माइक ऑन है, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही खुद की.
0: वो कोई बात नहीं,
1: अच्छा वो हेडफोन ही ऐसा है, निकला बजट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा. बट हाँ, क्या क्या क्या सवाल क्या था?
0: सवाल वही तुम बता रहे थे ना कि हर एक पेरेंट और हर एक बच्चा भी डिफरेंट होता है.
1: हाँ, मतलब मैं तो बेसिकली टॉपिक यही बोला था कि ऑफ कोर्स अभी मैं खुद भी उस कैटेगरी में आ चुका हूँ, सो आई कैन रिलेट एज़ वेल.
0: ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो.
1: हाँ कि नहीं, वो भी है, प्लस ये भी कि हम बचपन से देखे जाते कि मेरे पापा ने ऐसे किया, मेरे पापा ने, वो मेरे को तो डांट देते थे, लेकिन आजकल नहीं डांटते हैं. आजकल के पेरेंट्स, तो सबका ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने अगर डांटा था, दैट डजंट मीन कि उनकी पेरेंटिंग गलत थी. वो उनके हिसाब से तब सही थी. सो यू कैन नॉट जज एनी पेरेंट कि तुम्हारी पेरेंटिंग अच्छी है या बुरी है. ऑब्वियसली सब प्यार करते हैं, सब इक्वली प्यार करेंगे.
0: और कई बार हालात भी हर किसी के डिफरेंट, बच्चा भी हर कोई, एवरी किड इज डिफरेंट एज वेल.
1: हाँ,
0: ये भी हो जाता है.
1: जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दैट एक ही घर में अगर दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे कैन नॉट बी द सेम, राइट? बट पेरेंटिंग, प्यार तो बराबर ही मिल रहा है.
0: हमारे घर में लाइक हम 3 siblings, तीनों बहुत ही डिफरेंट है. एक यूनिवर्सिटी टॉपर है, एक एवरेज है, एक नालायक है. तो मतलब
1: तो इसमें नालायक कौन है?
0: मैं नहीं हूँ.
1: मतलब आप टॉपर हो?
0: नहीं नहीं, वो मेरी बहन है. या टॉपर भी मैं नहीं हूँ.
1: अच्छा, मतलब बीच में.
0: हाँ, मिडिल चाइल्ड हूँ तो मिडिल ही हूँ मैं.
1: अच्छा.
0: ऐसा है ये.
1: नहीं नहीं, सही.
0: एनीवे गाइस, इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन डेफिनेटली चेक द वेबसाइट जहाँ पे ये प्रोग्राम और वो लॉन्च करने वाले हैं. इनफैक्ट कुछ सेंटर्स में है ये प्रोग्राम, एनरिच प्रोग्राम इसका नाम है, फॉर द लैंग्वेज डिले. बट 65 से अभी 525 ECE सर्विसेज में ये जो प्रोग्राम है ये चला जाएगा. सो आप अपनी ECE सेंटर से एक्चुअली में चेक कर सकते हैं इसके और भी डिटेल्स के लिए.

0: शादी कर सकते हैं।
1: क्वीन विक्टोरिया की तरह?
0: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी, मलिका तिलफरेब।

0: Insights, brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: Non-stop Bollywood.
2: Hum.
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: 335 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. आज फीफा में यूएसए वर्सेस बोस्निया के बीच में यूएसए की जीत हुई 2-0 के साथ. इन्होंने लीड किया. बेल्जियम सेनेगल के बीच में बेल्जियम की 3-2 के साथ जीत हुई. और आज सुबह इंग्लैंड एंड कॉन्गो के बीच में जो मैच था, इंग्लैंड की 2-1 के साथ एक्चुअली में जीत हुई.

347 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, 2 जुलाई है। अगर आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे अभी जो आप गाना सुनने वाले हैं, कैसी आर्टिस्ट का गाना है जो कि बहुत ही डिस्टिंक्टिव एंड फियरलेस वॉइस के लिए जानी जाती है, सिमरन कौर इसका नाम है। लेटेस्ट सिंगल आया है एंड इसकी वीडियो भी बाद में जाके आप ज़रूर हमारे सोशल मीडियाज़ पे चेक कर सकते हैं। ये जो गाना है बहुत ही पावरफुल ब्रेकअप एंथम है बेसिकली, जो ट्रांसफॉर्म करता है हार्ट ब्रेक को स्ट्रेंथ एंड सेल्फ वर्थ में। सो अपने सिग्नेचर स्टाइल के साथ एंड कमांडिंग डिलीवरी के साथ इसने रिफ्लेक्ट किया है इस गाने में सिमरन ने, ऑन द जर्नी फ्रॉम हार्ट ब्रेक टू हीलिंग, सेलिब्रेटिंग टू चूज हरसेल्फ। सो या ये जो गाना है एंजॉय कीजिए और मैसेज करके बताइए 5599 पर आपको ये गाना कैसा लगा।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.9 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 5 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. सनी एंड ब्राइट गुड डे आज का. कल का भी ऐसा ही डे रहेगा अंटिल वीकेंड. संडे को हल्की सी बारिश होने के चांसेस हैं.
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 4:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. गुड आफ्टरनून रुज़बे, हाउ आर यू?
3: गुड आफ्टरनून सैंडी, मैं बहुत बढ़िया हूँ. सैंडी, आप कैसे हो?
1: एकदम फर्स्ट क्लास. तुम्हारा डे कैसा जा रहा है?
3: मेरा डे बहुत बिजी जा रहा है, जस्ट लाइक यूर्स, क्योंकि अभी आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक लाइव देखना है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट.
1: हाँ ना, मतलब दिलजीत दोसांझ ने क्या टाइम सेलेक्ट किया है लाइव होने का. मतलब सही टाइम है हमारे लिए, एकदम सही है.
3: क्यों सही है?
1: जाके देख सकते हैं ना, बिकॉज कई बार और टाइमिंग्स पे वो लाइव होता है. बाय द वे वो इंस्टाग्राम पे लाइव है एंड उसने अनाउंसमेंट की है कि कल एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है एंड दिस माइट बी रिगार्डिंग द मूवी पंजाब 95.
3: अच्छा.
1: या सो आई एम थिंकिंग कि शायद ये मूवी कहीं पे रिलीज होने वाली है.
3: देखो प्रायोरिटीज देखो इंसान के यार, मतलब आज हमारे यहाँ पे इतना बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है 5 बजे.
1: वो मैंने बात की
3: वो बाजू में रख के, यहाँ पे दिलजीत दोसांझ कोई दूसरे कोने में बैठ के कोई अनाउंस कर रहा है.
1: हाँ यार, मतलब बट इट्स इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एज वेल.
3: वेरी इम्पोर्टेंट,
1: वेरी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एज वेल. सो लेट्स
3: फॉर बॉलीवुड रेडियो स्टेशन.
1: ऑब्वियसली वी प्ले हिज सॉन्ग्स ना
3: 100%.
1: तो या ही टॉक्ड अबाउट माय वापस

0: रेडी है समथिंग लाइक दैट एक स्टेटमेंट बोली थी. ही सेड कि वो इंटरव्यू मत देखो, उसको डिसरिगार्ड कर दो. एट दैट मोमेंट उस मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टेज पे था व्हेन आई थॉट कि मैं अपने बॉडी से जाने को रेडी हूँ. बट आफ्टर डूइंग सम शोज आई वॉज लाइक यार थोड़ा और करना है, अभी रेडी नहीं हूँ, थोड़ा और काम अभी करके जाऊंगा. तो दैट्स व्हाट ही सेड.
1: नाइस. अच्छा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वापस आऊंगा.
0: 100%. एनीवे गाइस, आज थोड़ी देर में इन अबाउट 1 आवर आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं क्या होने वाला है 2027, ईस्टर 2027 में क्या होने वाला है. ऐसा क्या है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसका आप मेजर पार्ट बन सकते हैं, है ना रुजबे
1: जी? थोड़ी देर में आपको बताएंगे. और आज 2 जुलाई, आज थर्सडे है, तो आपके लिए आज हम कन्फेशंस लेकर आते हैं यहाँ पे,
0: ड्राइव थ्रू कन्फेशन. तो अभी अगर आपको कन्फेशन भेजना है, भेज सकते हैं 555 पर.

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Denny didn't think he needed a DVS system.
4: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
3: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
4: Nah, only one room. It was just too noisy.
3: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
6: Wo Indelible Homes wali kahani sunao na.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
8: And award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: HBO Max is the all-killer, no-filler.
11: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
10: Exactly.
11: Right, we'll see. What have they got?
10: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
11: Whoa, okay, I get it. Fair call.
10: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
12: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
13: Don't miss the final week of Shop and Scan to Win at Woolworths. Just buy three participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
16: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए एक से गाने यहाँ पे लेकर आते हैं हम और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी लेकर आते हैं. आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल दिन है हमारे लिए.
17: Yes, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम 5 बजे करने वाले हैं. So stay tuned guys. कब से जो हम आपको बताते आ रहे हैं कि कुछ अनाउंसमेंट होगी. ईस्टर 2027 आपका कैसा हो सकता है ये आपको पता चलेगा जल्दी ही. बट फिलहाल आपके पास मौका है पार्टिसिपेट करने के लिए. ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए एक एंटरटेनमेंट नाइट लेके आ रहे हैं जिसमें कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ये लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. द ग्रेट कॉमेडी नाइट 18 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट्स आप ले सकते हैं bookmyevent.co.nz पे जाके. लेकिन अगर आपको यहाँ पे टिकट जीतनी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ईजी है. आपको ड्राइव कीवर्ड के साथ जो एक सवाल आपसे हम पूछने वाले हैं इसका जवाब लेके भेजना है. आज का सवाल ये है रुजबे, कृष्णा अभिषेक जो है इनके रिलेटिव बॉलीवुड में है, उस रिलेटिव का नाम क्या है?
16: ओह क्या बात है.
17: कृष्णा अभिषेक एक रिलेटिव है जो कि बॉलीवुड के बहुत ही
16: दो रिलेटिव्स है वैसे तो उनके
17: मतलब एक हाँ लेकिन एक ऐसे रिलेटिव जो कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपरस्टार है, मतलब बहुत बड़े स्टार है.
16: बहुत बड़े स्टार, यस.
17: उस स्टार का नाम क्या है, कृष्णा अभिषेक के बॉलीवुड के रिलेटिव का नाम क्या है जो बहुत बड़े हैं, जिसके साथ उनका बहुत सारी न्यूज भी आती रही है.
16: कॉन्ट्रोवर्सीज
17: भी काफी आई है एक्चुअली में. सो वो लिख के भेजिए 5599 इज द नंबर एंड बाय द वे लॉकअप देख रही हूँ मैं एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग आई विल से. मुझे
16: मैं थोड़े बहुत रील्स देख रहा हूँ. आकांक्षा बहुत छा रही है ना हर जगह से.
17: आकांक्षा बहुत छा रही है. मेरे को सो फार ठीक लग रही है. वो
16: गौरव से तो बेटर ही कर रही है. जो गौरव ने बिग बॉस में किया उससे तो बहुत बेटर कर रही है शायद.
17: हाँ, मतलब काफी जो गौरव के फैंस हैं वो आकांक्षा को बहुत ट्रोल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हर व्यूज.
16: या
17: बट होता है ना, जब इतने ओपन व्यूज रखो तो काफी लोगों को पसंद नहीं आते हैं.
16: या
17: तो लेकिन मेरे को वो भी अच्छी लग रही है. सुनीता है उसका नाम. या सुनीता ना.
16: सुनीता कौन.
17: सुनीता है उसका नाम. क्या है, मैं नाम भूल गई हूँ.
16: जो आपने
17: जो मैंने सवाल पूछा है, जो स्टार उसकी वाइफ का नाम क्या है.
16: वो भी है क्या. वो भी है.
17: वो तो बहुत बड़ी करेक्टर है यार.
16: हाँ.
17: वो तो ऐसा लाइनर्स देती है ना बीच में, मजा आ जाता है. शी इज, आई एम लाइकिंग हर, शी इज रियली गुड.
16: ओके, मुझे आज कैचअप करना पड़ेगा यार. कृष्णा
17: की मतलब
16: सिस्टर इन लॉ नहीं, क्या बोलते हैं उसको.
17: नहीं चाची.
16: चाची चाची है.
17: चाची लगी ना. हाँ चाची है. तो कृष्णा अभिषेक का चाचा इज बॉलीवुड एक्टर एंड चाची जो
16: चाचा है की मामा है.
17: मामा है क्या.
16: मामा है.
17: अच्छा हाँ ओके चलो मामा.
16: तो
17: अरे हाँ मामा.
16: हाँ.
17: सो जो मामी है वो लॉकअप में है एंड मामी इज वेरी एंटरटेनिंग आई विल से.
16: ओके
17: आई एम लाइकिंग हर. दो मतलब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है बहुत जल्दी.
16: उसने कितनी बार कंट्रोवर्सी क्रिएट की है.
17: बट मैं ना, मुझे उसकी नेचर समझ में आ रही है. शी इज मोफट.
16: फरा खान है वो थोड़ी.
17: हाँ बट शी वो बैड इंटेंशन वाली नहीं है.
16: अच्छा.
17: वो ऐसा बोल देती है चीजों को लेकिन उसकी इंटेंशन बुरी नहीं होती है. इतना मुझे अभी तक कुछ एपिसोड्स में पता चला है. बाकी आगे डिफरेंट रूप उसका सामने आता है वो हमें पता नहीं.
16: या या
17: सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.
16: सो या लॉकअप इज द न्यू रियलिटी शो. मेरे को लग रहा है बहुत सारे रियलिटी शोज आ गए
17: है ना, तो काफी लोग देख रहे हैं.
16: एक नेटफ्लिक्स पे ये आया है, फिर एक अलायंस करके एक और एक आया कुणाल खेमू जिसको होस्ट कर रहा है. वो शायद प्राइम पे है. उसमें रवि किशन है, निखिल चिनप्पा है और वो सब है.
17: ओह वाओ.
16: यस, सो दैट वन आल्सो इज गोइंग क्वाइट क्रेजी. कुशल टंडन है उसमें.
17: कुशल टंडन भी आ गया उसमें. वो बिग बॉस में था पहले. अच्छा, गौहर खान के सीजन में.
16: ओह हाँ, राइट राइट राइट. तो वो आया यहां पे
17: कपल ना.
16: या एनीवे
17: या सो आप बस आंसर्स लिख के भेजते रहिए. जो मैंने सवाल पूछा ड्राइव कीवर्ड के साथ कि कृष्णा अभिषेक के मामा का नाम क्या है, जो गोविंद जो बहुत बड़े स्टार है. 5599 इज द नंबर.
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
18: मैं लाऊं अपना ए गेम.
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsoras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
0: Accurate traffic.
5: Book your Ski G trip today.
6: Partly cloudy with a low of 5. Now, State Highway 18 crews are still out clearing the spillage just before Albany Highway, so do take care and expect delays there. Otherwise, around the rest of the city, somehow the traffic has gotten heavier again. Travelling the southwestern at the moment, there are heavy patches southbound from Onehunga and citybound between Puhinui Road and Onehunga.
5: To book your next Ski G trip to Vancouver or Japan, go to fijiairways.com.
7: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: सुपर से ऊपर ये शो आपके लिए हम 5 बजे तक लेकर आते हैं और 5 बजे के बाद आज पावर ड्राइव एट 5 आपके लिए लेकर आएंगे. एंड वैसे आज वी हैव सम स्पेशल न्यूज फॉर यू एंड ऑल्सो सम कन्फेशंस होपफुली.
2: या कन्फेस अगर आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे अभी मैसेज कर सकते हैं 5599 पर. एंड स्पेशल अनाउंसमेंट भी आपके लिए रहेगी. 5 बजे के बाद हमारे साथ एक गेस्ट शामिल हो जाएंगे जो इतने समय से हम आपको बोल रहे हैं कि ईस्टर 2027 आपकी कहानी हो सकती है, आपकी जर्नी हो सकती है. And you can be actually part of the story as well. So, सुनते रहेगा थोड़ी देर में. About half an hour more है, then you will get to know about this. क्या होने वाला है?
1: जी, लेकिन उससे पहले एक for all the online shoppers out there. मैं जानता हूँ काफी लोग हैं जो बहुत enjoy करते हैं. उनके लिए therapy होता है, therapeutic होता है online shopping.
2: Online shopping करना या?
1: How much are you into online shopping, Sandy?
2: मैं cards में बहुत सारी चीजें डालती हूँ, but हमेशा उसको वो नहीं करती.
1: Checkout नहीं करती हूँ.
2: हाँ.
1: अच्छा, बट कार्ट्स में आपको मतलब विंडो, ऑनलाइन विंडो शॉपिंग?
2: विंडो शॉपिंग या
1: ये भाई ये तो बट या एक कारण से आर्टिकल आया है कि रिसर्च ने ये पता किया है कि ऑफ लेट आपको शायद ज्यादा चार्ज हो रहा है डिलीवरी फीस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग और रिटर्न्स भी आपके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है रिफंड करना.
2: ओके,
1: मतलब जो रिटर्न फीस होती है वो भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है. सो ये एक रिसर्च हुआ था जहाँ पे काफी मतलब जैसे वुलवर्थ्स है, इन्होंने भी अपना जो मिनिमम ऑर्डर है इसको बढ़ा दिया है.
2: ओके,
1: मतलब जो मिनिमम ऑर्डर होता है ना प्लेस करना पड़ता है टू ऑर्डर, वो इंक्रीज कर दिया है. तो इट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव टू ऑर्डर ऑनलाइन.
2: लोकल मार्केट, लोकल के बारे में अगर तुम बात कर रहे हो,
1: लोकल भी और मतलब अभी आजकल अभी जो इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत होता है उसमें भी जो बकेट वैल्यू है उसको बढ़ा दिया है.
2: ओके, ताकि डिलीवरी फीस आपकी ना लगे.
1: हाँ, मतलब लाइक वो यू नो पहले होता था ना कि $20 का $35 टाइप पे करो, $35 का ऑर्डर रहेगा तो फ्री डिलीवरी, तो वैसा भी $50 कर दिया काफी जगहों पे.
2: लाइक
1: वैसे करके कार्ट ऑर्डर बढ़ा दिया है.
2: लेकिन लोकल डिलीवरी का होता है बिकॉज न्यूजीलैंड ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है.
1: लोकल डिलीवरी का तो बहुत हाई होता है, मैंने देखा है काफी जगहों पे 59-69 ऐसे कुछ हाई वैल्यू होता है.
2: अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रोसरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टफ. अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना हो जो आपको चाहिए, कई बार ये भी होता है कि डिलीवरी फीस इज मोर देन द प्रोडक्ट फीस.
1: वो दैट इज स्पेशली इन न्यूजीलैंड.
2: या
1: दैट हैपेंस,
2: ये भी यहाँ पे होता है. सो एनीवे, कल मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि लेटर्स जो है ये महंगी हो चुकी है. पोस्ट करना जो है, जो टिकट्स लेटर्स के ऊपर लगाते हैं ना, पोस्ट स्टैम्प्स जो लगाते हैं,
1: स्टैम्प्स
2: जो लगाते हैं, वो महंगी हो चुकी है. लेटर्स अभी भेजना महंगा है बिकॉज कम लेटर्स लोग भेज रहे हैं लेकिन सर्विस उतनी ही कर रहे हैं. सो काम उतना ही लग रहा है लेकिन कम क्वांटिटी है, तो जिसके कारण अभी वो महंगा हो चुका है.
1: या बिकॉज वो स्प्लिट होता है ना.
2: या
1: उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ज्यादा लेटर्स भेजो
2: ताकि सस्ती हो जाए.
1: या बिल्कुल मत भेजो.
2: मैंने पूछा था कल एक्चुअली मैं कॉफी ब्रेक में, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपको लेटर मिली या फिर आपने लेटर
1: अभी भेजी? तो आजकल तो सब ईमेल आ गया है ना, सब ईमेल पे हो गया है.
2: हाँ, लेकिन मैंने पूछा था कि लास्ट टाइम आपने कब देखा था आपके घर लेटर आई या लेटर आपने भेजी किसी को. मुझे पोस्ट कार्ड ही याद था.
1: मेरे घर पे बहुत लेटर्स आते हैं सैंडी.
2: हाँ,
1: वो रियल एस्टेट एजेंट्स के एकदम पर्सनलाइज्ड,
2: हैंड रिटन, पर्सनलाइज्ड ना. मैंने आई थिंक तुम्हारा ही देखा था.
1: हाँ, तो मैंने एक दिन देखा एकदम हैंड रिटन ये वो कि मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर है, आना है तेरे को. फिर मैंने वो वेबसाइट पे गया, मैं तो वेबसाइट पे उसका फोटो भी नहीं था यार.
2: Oh, no.
1: तो मैं बोला यार ये तो मतलब
2: रियल एस्टेट में अगर फोटो नहीं है तो मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते है ना तुम.
1: ऑनलाइन अगर तुम्हारा
2: प्रोफाइल, घर खरीदना बेचना एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: सो या डू योर ग्राउंड वर्क बिफोर यू डू कोल्ड कॉलिंग.

0: Dio Nation ka ye gaana aap sun rahe the, O Carol, only on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits 447. और अभी थ्रोबैक में आपको एक गाना सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी बातें भी करना चाहेंगे हम, काफी सारी
1: बातें करना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट के बारे में। 5 बजे हमारे गेस्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे, उनके साथ हमारे ईस्टर 2027 में क्या हो रहा है ये बातें भी करेंगे। बट बिफोर दैट रुजबे, पॉडकास्ट जो हमने इस बार रिकॉर्ड किया था, AI स्पेशलिस्ट है दर्शित पांडेय, जो कि सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर भी है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में क्या है इसको ब्रेक डाउन किया इन अ वेरी नाइस एंड सिंपल वे, जैसे एक 10 साल के बच्चे को समझाते हैं। ChatGPT हो गया, Gemini हो गया, और भी ढेर सारी चीज़ें हो गई, ये सब कुछ जो क्लाउड है, काफ़ी लोग आजकल वो यूज़ कर रहे हैं। एक वो है ना Perplexity, या एक वो भी है। मैंने एक्चुअली ये ऐप भी डाउनलोड की है, मुझे इंटरेस्टिंग लगी काफ़ी आफ्टर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, आफ्टर डूइंग दिस पॉडकास्ट। सो इन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंसर्न्स। अगर आज आपको शुरू करना है AI सीखना, तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है? अगर आप कहीं जॉब चेंज करने वाले हैं, तो आपको AI कैसे यूज़ करना है अपने आप को हेल्प करने के लिए, ऐसी चीज़ें भी इन्होंने बताई है इस एपिसोड में।
0: जी, काफ़ी सारी बातें हुई है, और अगर आपको ये एपिसोड चेकआउट करना है तो आप जाइएगा हमारे रोवा ऐप पे, या
1: अभी तो ड्राइव लिख के अगर आप भेजते हैं 5599 पर, यू विल गेट द फुल ऑडियो लिंक यहाँ पे। अदरवाइज रोवा पे जाइएगा, रोवा पे आपको जस्ट सर्च अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुज़बे, स्पॉटिफाई पे यू कैन सर्च, Amazon पे यू कैन सर्च, Apple Music पे यू कैन सर्च अनफिल्टर विद सैंडी
0: एंड रुज़बे, जहाँ पे भी आप पॉडकास्ट सुनते हो वहाँ पे
1: एक्जैक्टली,
0: एक्सेप्ट YouTube, एक्चुअली अभी YouTube पे अब तक आया नहीं है।
1: हाँ, YouTube पे नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह पे है।
0: लेकिन हमने थोड़ी देर पहले, सैंडी, आपने सवाल पूछा था यार फॉर कृष्ण अभिषेक एंड राजीव ठाकुर जो आ रहे हैं यहाँ पे अपने सुपर सिटी में, कि कृष्ण अभिषेक के रिलेटिव कौन है बॉलीवुड में, एंड काफी लोगों ने यहाँ पे आंसर भेजा है, थैंक यू सो मच।
1: द राइट आंसर इज गोविंदा,
0: गोविंदा इज द राइट आंसर। बॉबी सिंह आपका आंसर है, शिवानी, शीतल, थैंक यू। वेस्ट गल्फ हार्बर फंगापोरवा से भी हमें कोई सुन रहा है, उन्होंने भी आंसर भेजा है। प्रशांत, थैंक यू। सुनंदो, विकास, नीलेश, संध्या, भाव्य, हेमंत, अमित, थैंक यू सो मच। गौरव आपका भी यहाँ पे आंसर है। शिखा, सैंडी सबके नाम लो ना यार, मैं ही ले रहा हूँ यार। निवृत्ति जो नॉर्थ शोर में रहते हैं उनसे, उनका भी आया यहाँ पे जवाब।
1: नाइस, नहीं नहीं, अच्छे से ले रहे हो तुम नाम, वेरी गुड।
0: हाँ, तो आपने भी नाइस, मतलब उषा, थैंक यू,
1: पढ़ो ना सब।
0: पार्थ, जेन, सचिन, रोनील, मोनिशा, थैंक यू सो मच यार। प्रशांत,
1: जो अपने नाम नहीं लिख पाए उनको भी थैंक यू।
0: थैंक यू सैंडी यार, कुछ तो आपने बोला, मजा ही आ गया।
1: यू आर वेलकम।
0: सो या नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू गेट यू अ थ्रोबैक सॉन्ग। अगर कोई कन्फेशंस है, जो कन्फेशन अगर आप यहाँ पे शेयर करना चाहो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो 5599 पे, या फिर हमारे अनफिल्टर्ड क्रू जो फेसबुक पेज है उस पे जाके भी आप शेयर कर सकते हो।
1: अभी की अभी वहाँ पे जाके आप शेयर कर सकते हैं। ग्रुप्स का ये फायदा होता है कि वहाँ पे आप एज एनोनिमस पोस्ट भी कर सकते हो।
0: आज ट्रेंड मेकर्स में क्या हो रहा है सैंडी?
1: ट्रेंड मेकर्स में आज 2 जुलाई है, आज एक्चुअली में हम कुछ ऐसी मूवीज के गाने सुनने वाले हैं। These movies define breaking stereotypes.
0: Oh.
1: So ऐसी movies Bollywood की, और बहुत अच्छी movies है Bollywood की, जो कि stereotype thinking को break करती है, मतलब उसे बाहर निकल के एक ऐसे subject को वो movies बनी जो कि इतने normal नहीं थे to discuss in a society.
0: Nice.
1: तो ऐसी movies के गाने आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। अगर आपको पता है कौन कौन सी movies हो सकती है, तो list अपनी भेजो 5599
0: पर। मेरे list में एक है Vicky Donor.
1: तो आप भी लेके भेजिए 5599 पर, ऐसी कौन सी मूवीज हो सकती है जो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप के टैग को फिट करती है।

0: 5:02 हुए हैं. यू आर लिस्निंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. पावर ड्राइव एट 5 में आपका स्वागत है. आज 2 जुलाई, हमने इसके बारे में बहुत समय से काफी बातें की है.
1: काफी समय से हमारे लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं
0: टीजर पे टीजर.
1: ईस्टर 2027, मतलब कि काफी बार तो मैसेजेस आए कि आर यू श्योर ईस्टर के बारे में बात कर रहे हो, माता रखी के बारे में बात नहीं कर रहे हो.
0: नहीं, माता रखी के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम लोग ईस्टर 2027 के बारे में बात कर रहे थे.
1: या एंड ईस्टर 2027 में क्या होने वाला है, इससे पहले हम अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं. रुजबे
0: जी, लेट्स इनवाइट. We've got Anil ji over here from Anil ji, welcome.
2: Hello to everyone, the Hum FM listeners. And this is Anil from Sun Tours. तो बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ कुछ धमाल होने वाला है. जहाँ पे Sun Tours का नाम आया तो you guys know that something is exciting following up.
0: Yeah. मैंने इसलिए Anil from और मैं रुक गया वहाँ पे, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनेंगे तो पहचान जाएंगे हमारे listeners के कहाँ से है और

0: Asti and Dhamal, which can be none other than Bali and Bangkok.
1: Wow. So Bali and Bangkok, guys, are you ready for this? And not just a trip, I will say, ye trip hi nahi hone wali hai, ye ek journey rehne wali hai aapki.
2: Ji, absolutely. Kyunki dekho Santosh ki khas baat maine ye dekhi hai ki, aur aapne bhi hume kafi baar ye bola hai, that new friendships are born.
1: Yeah.
2: Aapne abhi tak kitne tours kiye hain?
0: Abhi to recent wala hi bata deta hu. From we left on 25th Feb and we came back on 25th May. So that was 90 days, 22 countries, 28 flights and 48 cities with 130 people.
2: वो भी अभी क्या
0: बात है? ये अभी करके आए हैं.
2: अभी जहाँ पे अभी सब ये बवाल चल रहा था. ये
0: मिडिल ईस्ट के दौरान चल रहा था. And we did it successfully and we did one of the most popular tours also. So yes, we keep adding some new destinations and like Sandy was saying, you know, it's just not a trip. Of course, when you both are there, तो ये शांति वाला trip तो expect करेगा. तो मैं actually बहुत सारे giveaways तैयार कर रहा हूँ, because हम जो भी सबसे शांत रहेगा उसको सबसे poor gift देंगे, और जो धमाल करेगा इस tour में उसके लिए there's lots going to be lined up for them.
1: Yeah. So ये जो trip है guys, आपने सही सुना है, from Sun Tours. ये हम करने वाले, ये आप कर सकते हैं मेरे और रुजबे के साथ. सो रुजबे एंड आई विल बी जॉइनिंग यू फॉर बाली एंड बैंकॉक. मेरे पे तो ट्रस्ट करते हैं. रुजबे तुम अपना देख लो.
2: नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि इमेजिन लाइक फॉर हम हमारे लिसनर्स, वो ट्रिप पे जब जाते तो हमेशा हमें ना यहाँ पे मैसेज करते कि यार मैं ट्रिप पे जाके आया, मैंने बहुत मिस किया तुम लोगों को, ये वो. नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हैव अ ट्रिप विद अस.
1: यस,
2: लाइक इमेजिन हैविंग द ड्राइव शो फन. यार वो जो वर्ड है ना, मैं उसको बोल नहीं
1: पाऊंगा. हर जगह पे यही मिलेगा आपको, ड्राइव शो ही मिलेगा.
0: और जैसे भी हम बाली में लैंड करेंगे, व्हाट आई हैव थॉट इज देयर इज गोइंग टू बी टीम सैंडी एंड टीम रुजबे.
2: अच्छा, ऐसा
0: कर लेंगे. और जगह जगह पे हम कॉम्पिटिशन्स कराने वाले हैं, क्योंकि डे टू में ही आई एम गोइंग टू टेक यू टू द एडवेंचर स्पॉट्स. यू नो, बाली इज ऑल अबाउट हैविंग फन, फन एंड फन. अच्छा, हमारे टूर्स की खास बात ये होती है कि यू नो, वहाँ पहुँच के मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बनाना बोट करने वाले हैं या फिश राइड करने वाले हैं, आपको इतने पैसे देने. दिस विल बी ऑल इंक्लूडेड, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पेइंग यू नो अगेन एंड अगेन. तो इस टाइप की हम कॉम्पिटिशन्स करने वाले हैं जो कि आपके ऑलरेडी पैकेज में इंक्लूड होंगे. उसके अलावा ऑन द स्पॉट विनर्स को देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ अट्रैक्टिव गिव अवेज.
1: दिस इज एक्साइटिंग एक्चुअली.
2: यार मेरे को ऑनेस्टली अभी मेरे को ना नाम, हम लोग नाम सोच रहे थे ना कि क्या नाम रखना है, मेरे को नाम मिल गया है.
1: अरे नाम हमने वैसे एक सोचा भी था.
2: नहीं, मैं
0: अभी वाला क्या मिला है
2: मेरे को
0: ऑन द स्पॉट.
2: अभी मैं बोल रहा हूँ, ये इसका हम ट्रिप का नाम देंगे सस्ता रोडीज.
0: चलो,
1: सस्ता रोडीज.
2: हाँ, और फिर हम लोग टास्क करेंगे वहाँ पे.
1: सस्ता क्यों, हम महंगे वाले
0: स्टाइलिश रोडीज कर लेते हैं.
2: हाँ, या फिर
0: स्टाइलिश रोडीज.
1: हाँ,
2: देखो, आई लाइक
1: टू द कीवी रोडीज.
2: आई लाइक टू अंडर प्ले ऑलवेज, गाइस. दैट्स माय थिंग. सो आई लाइक टू डाउन प्ले थिंग्स. नहीं, बट
1: हम लिस्टर से भी पूछते हैं.
2: ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यू नो यू आर डिवाइडिंग अस इन टीम्स. और मैंने ना आपका, मतलब जो आपने आइटनरी बनाई मैंने देखा हो, एंड आई सॉ बनाना बोट, आई सॉ जेट स्की ओवर देयर ऑलरेडी, एंड आई वाज ऑलरेडी एक्साइटेड. मैं बोला वाओ, दिस इज गोना बी फन.
1: अनिल जी ने हमारे साथ जो शेयर किया है कि जहां जहां पे हम जाएंगे वहां पे हम क्या क्या करने वाले हैं. सो गाइस, कैसे होता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझा देती हूँ कि दिस विल बी अ पैकेज डील. सो एक डेट्स हम आपको बताएंगे, इन डेट्स के बीच में आपको ट्रेवल करना है, एंड दिस इंक्लूड्स ईस्टर वीकेंड, इसलिए हम ईस्टर 2027 कह रहे थे. और उस पैकेज के अंदर आपको बस एक ही बार वो जो प्राइस है वो पे करनी है. दैट इंक्लूड्स मेनी थिंग्स. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है अनिल जी?
0: बेसिकली योर ऑल इंटरनेशनल ट्रैवल दैट इज गोइंग फ्रॉम ऑकलैंड टू बाली एंड बाली टू बैंकॉक फ्लाइट्स एंड अगेन बैंकॉक बैक टू ऑकलैंड. सो ऑल इंटरनेशनल इंटरनल फ्लाइट्स, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ. योर अकोमोडेशन इज नॉट चीप, 3-star hotels or B&Bs or whatever it is. We are taking you to high class 5-star hotels only. I don't
1: so
0: compromise.
1: So 5-star accommodation is sorted in that package. Okay.
0: Breakfast, lunch, dinners, Everything included. जब हम पहले बात कर रहे थे, I was thinking of doing breakfast and dinners. Then I thought, नहीं यार, lunch में जब इतना ज़्यादा हम लोग activities करेंगे, सबको भूख लगी होगी, तो उस समय कहाँ ढूँढने जाएं?

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. तेरा ध्यान किधर है भाई? हमने अनाउंसमेंट कर दी है.
1: या अनाउंसमेंट हो चुकी है गाइस. सो जिसके बारे में हम कब से आपको टीजर दे रहे थे कि ईस्टर 2027 आपका कुछ कहानी हो सकती है, आपकी जिंदगी की कहानी जो है ये एक मूवी की कहानी हो सकती है.
0: अभी तो हमें पता चला है कि ये मूवी की कहानी नहीं, ये कॉम्पिटिशन भी हो सकता है.
1: ये कॉम्पिटिशन भी हो सकता है बिकॉज यू विल बी ट्रेवलिंग विद सैंडी एंड रूजबे टू बाली एंड बैंकॉक. ये आपका एक फुल एडवेंचरस ट्रिप हो सकता है.
0: जी अनिल जी फ्रॉम संतोष हमारे साथ अभी भी यहाँ पे शामिल है और वो हमने उन्होंने ये पूरा क्राफ्ट किया, डिजाइन किया. ही इज गॉट टन्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन अरेंजिंग टूर्स. उन्होंने अभी रिसेंटली इसी साल,
1: एक साल में कितने टूर्स करते हैं आप?
2: एक साल में अबाउट 8 हो जाते हैं.
1: 8 टूर्स होते हैं.
2: 8 टूर्स आर देयर बिकॉज़ वी हैव गॉट यूरोप लाइंड अप, वी हैव गॉट अदर प्लेसेस व्हिच वी एक्सप्लोर्ड ओवर द यू नो मंथ्स एज दे गो एंड डिपेंडिंग ऑन द सीजन एंड ऑल दैट. सो यस देयर विल बी लॉट ऑफ चॉइसेस, बट उसके बारे में आप फिक्र ना करें क्योंकि वन ऑफ द टूर्स का ड्रॉ भी हम निकालेंगे उन लोगों के लिए जो इस टूर पे ऑलरेडी होंगे हमारे साथ. वो क्या होगा रोज हम बिल्डअप करेंगे इसको.
0: अच्छा,
1: क्या
0: okay.
1: बात है. सो काफी सरप्राइजेस है वैसे. सो गाइस अगर आप इंटरेस्टेड है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप भेजना चाहते हैं जहाँ पे आपको पूरी आइटिनरी मिल जाए, आपको प्राइसेस चीजों के और ये जो पैकेज है कितने का होगा, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, ड्राइव लिख के अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में आपको एक लिंक मिल जाएगा. ये जो लिंक है उसमें अपना नाम फिल कीजिए, अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए, अपना फ़ोन नंबर फिल कीजिए. सो ये पूरा का पूरा डिसाइड करके, क्योंकि अब देखो अनिल जी के साथ मैं और रुजबे बैठ के प्लानिंग करने वाले हैं कि हर एक चीज में क्या क्या इंक्लूड होगा वहाँ पे,
0: उसमें हमारे जो पसंद है नापसंद है ये सारी हम इंक्लूड करेंगे इस चीज में.
1: और आपको पता है कि हमारी पसंद आपकी पसंद के साथ बहुत मैच करती है.
0: आपको मजा आएगा.
1: फुल मजा आएगा, फुल एडवेंचरस हम एक्चुअली में प्लान करने वाले हैं.
0: इट इज गोइंग टू बी वेरी फैमिली फ्रेंडली, आई एम टेलिंग यू. मतलब इट विल बी फैमिली फ्रेंडली, मतलब बच्चों को नहीं समझाएंगे हमारे जोक्स वैसे भी ना, तो इट विल बी फैमिली फ्रेंडली.
2: जोक्स भी खूब चलेंगे.
0: जोक्स तो चलते ही है ना, जोक्स के बिना क्या ही मजा है.
1: एक्चुअली सब कुछ चलेगा ना.
0: So yeah, I am super excited. Anil ji, thank you so much for choosing us as well for this.
2: Pleasure is I would say pleasure is sun to us, and I would be looking forward for you both joining the tour and of course your listeners who have made your program number one in New Zealand.
1: Yeah.
2: So this is the time to go and explore more fun with you guys.
0: It's time to celebrate.
1: It's time to celebrate actually guys.
2: And like I said, the celebration will start here in Auckland itself when you will be cruising on the Meet and Mingle at the Auckland Harbours for a 3 hours lunch cruise. So uski date bhi hum bata denge aapko, and that will be absolutely complimentary for you guys.
1: Amazing. So ye jo tour hai iske dates, every information you need to know hum aapko pahuncha denge. सो आपको करना क्या है, ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर. आपको फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को फिल कीजिए एंड हमारे डाटाबेस में ताकि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए.
0: एंड देन वी कैन सेंड यू एन ईमेल वंस वी हैव ऑल द डिटेल्स विद अस.
1: या फिलहाल हमारे पास डेट्स है, डेट्स हमने फाइनल कर दी है. 23rd मार्च को ट्रैवलिंग डेट्स है, 23rd मार्च व्हिच इज ट्यूसडे टू 3rd अप्रैल व्हिच इज सैटरडे.
0: एंड दिस इज 2027.
1: सो बीच में ईस्टर की वो चार छुट्टियां भी आती है, सो यू आर सॉर्टेड फॉर दैट एज वेल. सो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम भेज देंगे. ड्राइव लिख के भेजिए, फॉर्म फिल कीजिए एंड वी हैव योर ईमेल आईडीज, यू विल गेट एवरीथिंग.
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बे ब्रॉट टू यू बाय बेड्स आर अस, स्लीप इजी फॉर लेस एट बेड्स आर अस मनुगो एंड पुकेकोई. स्लीपी हेड स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली $7.99 ऑन सेल नाउ. हम एक्यूरेट ट्रैफिक.
4: स्विच टू AMI कार इंश्योरेंस.
5: Partly cloudy with a low of 5, and what a surprise, it's still a shambles everywhere. On the northern, there's heavy patches to Dairy Flat. It's just under 40 minutes out of town to Constellation Drive. And on the southern, it's just under an hour out of town to Manukau at the moment, with heavy patches to Drury on the southern. And on the southwestern, there's heavy patches southbound from Onehunga and citybound between Puhunui Road and Mount Roskill.
4: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
6: Ma, it's already your dinner? Huh?
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
6: हाँ, एक चपाती मुझे भी.
8: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियां पकाएं, खुशियां खिलाएं.
9: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
10: Indelible Homes, your building expert.
11: Got your ticket to an epic New Zealand getaway. Flights are on sale now with Air New Zealand. Explore our beautiful country. Hurry, NZ sale ends midnight 2 July. Travel periods, fruit exclusions and conditions apply. Book now at Air New Zealand.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
13: Woolworths has savings in every aisle, like Huggies Bulk Pack Ultra Dry Nappies 30 to 54 pack, any two for $32, and 350ml Dove Shampoo or Conditioner just $4.79 each. Woolworths Weekly Specials. Now that feels good. T's and C's apply.
14: Are you ready to go home?
3: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
15: Power Drive at 5.
16: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.

0: आज आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे। हम
1: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Sayoni आपको सुनाएंगे हम बस थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी और बातें भी कर ले।
2: या बातें भी आपके साथ यहाँ पे करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिन्होंने रिज्वे मिस भी किया है, तो इन्फॉर्मेशन एक बार आपको फिर से हम प्रोवाइड कर देते हैं। सो आज हमने अनाउंस किया सन टूअर्स के साथ जो कोलेबोरेशन एक्चुअली में हमने अनाउंस की है, आप थाईलैंड एंड बाली हमारे साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। सो टुक टुक ड्राइव्स टू बीच क्लब वाइब्स, ऐसा कुछ जो सीन है ये आपको मिल सकता है बाली एंड बैंकॉक गेटअवे एक्चुअली में विद सैंडी एंड रिज्वे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मार्च 2027 एंड द स्पेसिफिक डेट जो आज हमने अनाउंस की है वो है 23rd मार्च से लेकर 3rd अप्रैल। 23rd मार्च इज ट्यूजडे, 3rd अप्रैल इज सैटरडे और बीच में ईस्टर की छुट्टियाँ आती है 26th से लेकर 29th मार्च। सो ये पैकेज डील है जो कि बनाई है सन टूर्स ने मेरी और रुजबे के साथ, कि अगर आपको ट्रैवल करना है, एडवेंचर करना है, तो इस पैकेज डील में देर इज़ अ फ्लाइट टिकट्स बाली बैंकॉक की जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो इंक्लूडेड है, 5-star होटल्स की 5-star अकोमोडेशन जो है ये इंक्लूडेड है, 3 टाइम का खाना इंक्लूडेड है एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन जगह पे वो भी इंक्लूडेड है।
1: एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो, क्योंकि हम जिनके साथ जा रहे हैं उनके पास इमेंस एक्सपीरियंस है ऑफ ट्रैवलिंग टू इवन बाली एंड बैंकॉक फॉर दैट मैटर, और ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से इन जगहों को एक्सप्लोर कराएंगे।
2: इन जगहों को एक्सप्लोर करवाएंगे एंड मोर ओवर क्या होता है कि जब आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं इट्स अनदर काइंड ऑफ फन। मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम गाइस आपने स्कूल ट्रिप किया था, कॉलेज ट्रिप किया था, जब आप ग्रुप में गए होंगे, इमेजिन दैट काइंड ऑफ फीलिंग।
1: या एक्चुअली मैन
2: वो रहने वाली है, यू नो हम ट्रेवल करते हैं, अभी ग्रुप ट्रेवल आपका कब होता है वो भी इंटरनेशनल।
1: बचपन में मेरा ना कभी, मैं कभी स्कूल ट्रिप पे नहीं गया हूँ।
2: मैं गई हूँ मतलब
1: लाइक एज इन ओवरसीज या फिर
2: नहीं ओवरसीज तो मैं भी नहीं गई,
1: ओवरसीज या फिर इवन लाइक हमारे यहाँ पे ना अलग सिटीज में अलग स्टेट में जाते हैं। मेरे को अभी भी याद है मेरे स्कूल की एक ट्रिप गई थी केरला,
2: वाओ,
1: और उस टाइम पे आई कुडंट गो टू द इन द स्कूल ट्रिप बट आई वेंट विद माय बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम, और हम लोग वहां पे वो स्कूल वाले ग्रुप को मिले थे एंड द एनर्जी एंड द वाइब दैट दे हैड ओवर देयर ना दैट
2: वाज डिफरेंट यार, टोटल डिफरेंट। तो ऐसी वाइब ही वहां पे रहने वाली है, सो मजा आएगा। बाली पहुंचेंगे हम, हम पहले कहाँ जा रहे हैं, बाली ना,
1: पहले बाली जा रहे हैं,
2: पहले बाली ना, हमें हमेशा कंफ्यूज हूँ, पहले बाली पहुंचने हैं, वहाँ पे फुल एंजॉय करना है,
1: रिलैक्स करना है,
2: एक्टिविटीज भी है वहाँ पे,
1: एक्टिविटीज करनी है,
2: टीम्स बनाई जाएंगी वहाँ पे एक्चुअली में, टीम सैंडी एंड टीम रुजबे वहाँ पे बनेगी। सो ऐसी चीजें भी हम करने वाले हैं एंड देन बैंकॉक जाएंगे एंड वहाँ पे अलग लेवल की मस्ती।
1: डोंट वरी, वोट आउट नहीं होगा वहाँ पे, वोट आउट नहीं होगा,
2: वोट आउट कोई नहीं होगा गाइस।
1: या बट
2: मुझे लगता है कि दिस इज वेरी रीजनेबल बिकॉज मैंने बहुत सारी डील्स देखी है रुजबे, मैंने बहुत सारे आज तक के पैकेजेस देखे हैं एंड जिस वे से अनिल जी ने अनाउंस किया है फ्रॉम सन टूअर्स की उसमें क्या क्या वो करवाने वाले हैं एंड बहुत सारे वो गिव अवेज भी देने वाले हैं, मे बी आने वाले टूअर्स के भी गिव अवे हो सकता है उसमें।
1: दैट इज अमेजिंग। सो आई विल टेल यू समथिंग, एकदम ही किसी को बताना मत अभी, ठीक है,
2: हमने चले गए यहाँ से,
1: हम चले गए अभी, लेकिन हमने बहुत हार्ड नेगोशिएट किया है आपके लिए और हमने बोला है कि भाई हमारे लिसनर्स को हमें चाहिए कि यू नो यू दे गेट द बेस्ट रिटर्न, सो वी आर ट्राइंग टू पुट इन एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। एक मैसेज आया यहाँ पे, कैन किड्स गो,
2: यस 100%
1: इट इज फैमिली फ्रेंड, अरे दैट इज द होल आइडिया ना,
2: ऐसी बातें करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं जा सकते,
1: किड्स लव मी, एक्सक्यूज मी, किड्स लव मी, ओके प्लीज, इफ सम किड आउट देयर लिसनिंग राइट नाउ प्लीज कॉल एंड जस्ट से यस यू लव मी 0800-4866।
2: इट इज अ फैमिली फ्रेंडली गाइस, इट इज अ फैमिली फ्रेंडली थिंग। सो आपको बताते हैं कि अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डेट्स आपको हमने बता दी है, और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में आपके पास एक फॉर्म आएगा, गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म में आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर फिल करना है ताकि आपको हम फुल डिटेल्स, हम पूरी चीज़ें रेडी कर रहे हैं बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मैं रुजबे ना पर्सनली चीजें सर्च कर रहे हैं वहाँ पे क्या क्या हाइलाइटेड चीजें ताकि हम वो सब चीजें करें।
1: आई हैव बीन टू बाली लास्ट ईयर, आई हैव बीन टू बैंकॉक क्वाइट अ फ्यू इयर्स बैक, सो आई हैव काइंड ऑफ एन आइडिया कि मतलब कौन सी चीजें क्या सही है, मतलब यू नो क्या मजेदार हो सकती है, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर एंड यू नो फाइनलाइज द डेट्स,
2: फाइनलाइज करेंगे चीजें एंड देन वो जो फॉर्म, जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो फॉर्म में जो हमारे पास ईमेल आईडीज आ जाएंगी हम सबको ईमेल करने वाले हैं. सो इफ यू आर प्लानिंग तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो फॉर्म जरूर फिल कीजिए क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट नहीं है. एंड अनिल जी ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले वैसे ये भी अनाउंस किया है कि जब हम फुल डिटेल्स देते हैं और जो जुलाई में ही रजिस्टर कर लेते हैं, रजिस्टर करने के लिए यू नीड $500 रजिस्टर कर लेते हैं, तो उनको और भी अच्छी पैकेज डील्स मिलने वाली है. देयर गोना बी अ डिस्काउंट फॉर देम.
1: दैट्स मोर थिंग्स बट नाउ लेट्स गो टू द इंपॉर्टेंट बिट. हाय
3: हाय टू स्पेस.
1: हाय
3: कैसे हो आप?
1: मैं बहुत ही बढ़िया.
2: कैसे हो? बढ़िया सपना, आप कैसे हो?
3: बस मैं ठीक हूं. रुजबे रोशनी मेक आई लव यू. बोथ ऑफ देम लव यू.
1: हां तो बोले उनको
3: मिले नहीं है बट दे आर सो इंप्रेस्ड.
1: बट उनको बोलने दो ना ये यार सपना प्लीज.
3: मैं वो है नहीं अभी साथ में. एक्चुअली वी आर ट्रैवलिंग टू साउथ आई थिंक टुमारो.
1: ओह वाओ.
3: मैं कुछ काम से बाहर निकली थी तो मैंने बोला कि नहीं I need to vouch for Rusbe now.
1: Thank you, yeah, thank you.
2: मैं सपना कॉल नहीं करती तो कोई ट्रस्ट ही नहीं करता.
1: सपना मैं honestly मैं इतना डरा था ना. मेरे को लगा सपना यहाँ पे कॉल कर रही है और वो मेरे को ट्रोल करेगी, बोलेगी कि सपना के रुजबे तुम नहीं, सैंडी हमारी फेवरेट है.
3: मैं ट्रोल करूंगी मेरा क्या करेंगे.
1: अरे क्या बात है यार. वेरी नाइस. आई एम सो हैप्पी
2: बट थैंक यू सपना फॉर कॉलिंग.
3: और एक और बात मुझे आपसे बोलनी थी.
2: हाँ जी.
3: एक्चुअली वो है ना वन द पासेस फॉर दैट राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट.
2: हाँ.
3: तो उसको कैसे क्लेम करने का है बिकॉज यू नो हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं. आई वोंट बी एबल टू लिसन टू द.
2: So, क्या है ना?
1: कोई बात नहीं सपना, मैं यूज कर लूंगा.
3: नहीं मैं कभी किसी कॉन्सर्ट में जाने के लिए इतना मरती नहीं हूँ जितना मुझे.
1: ठीक है.
2: मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे होते हैं ना वो कॉम्पिटिशन्स जब खत्म हो जाते हैं क्लोज टू द इवेंट लाइक वन वीक बिफोर द इवेंट उस समय पर हमारे पास जो प्रमोटर्स है उसी समय पर हमें पासेस देते हैं. तो हमारे पास नहीं होते हैं तो जो प्रमोटर्स है वो हमें उस समय पर पासेस देते हैं. देन हमारी जो प्रमोशन टीम है दे स्टार्ट सेंडिंग देम.
1: सो अराउंड 17th से लेकर जुलाई से लेके आपको शायद वो मिलना चालू हो जाएगा. 28th जुलाई
2: पकड़ लो. प्रमोटर्स ने हमें भेज दिए जैसे ही भेज दिए तो हमारी टीम जो है तभी सेंड करना शुरू कर देती है. आप टेंशन फ्री होकर जाइए.
1: आप जाइए.
2: आपकी ईमेल आईडी आ गई ना बस उसमें आ जाएगा.
3: फोन नंबर है.
2: हाँ बस आपको मिल जाएगा.
1: ठीक है. थैंक्स सपना. थैंक्स यार. बाय.
2: थैंक यू सपना. बाय बाय
1: बाय.
2: एफआस ने बोला यू बोथ आर माय फेवरेट.
1: थैंक यू यार एफआस. थैंक यू मींस अ लॉट. बिना फॉर बोली यस दिख रहा वी लव यू. बिना आंटी हम बच्चों की बात कर रहे थे किड्स बट ठीक है यू आल्सो क्वालिफाई इन दैट क्राइटेरिया.
2: एनीवे सो ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर. ऑटो रिप्लाई में यू विल गेट द फॉर्म जो फिल करके आपको इस ट्रिप की डिटेल्स मिल जाएगी.
1: सैंडी आप बातें बहुत करती हो यार. इतना अच्छा गाना था सही होनी वो अब मैं नहीं प्ले कर पाऊंगा. अभी मैं आपको थ्रोबैक सुनाता हूँ डायरेक्टली.

0: from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: ये सब कुछ हम ईस्टर में कहीं और जाके भी करने वाले हैं, सिर्फ ऑकलैंड तक सीमित नहीं रखने वाले हैं हमारी ये मस्ती.
5: यस, सो बहुत सारी मस्ती रहने वाली है. दिस कैन बी योर ईस्टर 2027. ये आपकी कहानी हो सकती है.
4: हाँ, आप भी ये बोल सकते हैं मस्ती करेंगे, क्या गर्दा, क्या जो भी है.
5: हाँ.
4: मौज मारेंगे, जो भी है.
5: Anyway. So, जो भी है, ये सब होने वाला है. इफ यू आर इंटरेस्टेड, ड्राइव लेके भेजिए 5599 पर. आपको फॉर्म मिल जाएगा जो आपको फिल करना है. नाउ मूविंग ऑन, इस आवर में एक और कॉम्पिटिशन हम करने वाले हैं. इफ यू वॉन्ट टू विन करण औजला के शो के लिए टिकट, तो वो भी आपके लिए रहेगा. एक विनर का नाम अनाउंस करने वाले हैं कॉमेडी नाइट्स में जो जीते हैं. एंड इस आवर में आज ट्रेंड मेकर्स में जो स्पेशल है आपके लिए, आज का स्पेशल है

0: It was
1: he was in Roadies 1.
0: Roadies 2.
1: Oh, pehle mein Ranvijay.
0: Nahin. Haan, pehle mein Ranvijay
1: tha. Yeah. Okay. So, yeah, Ayushman Khurana ke baare mein hum yahan pe baat kar rahe hain. And movie aapne guess kar li hogi. Vaise to Ayushman Khurana ki bahut saari movies hai. Dad and Mom, Mr. and Mrs. Subhash Chand, Brothers hai Vimlesh, Vishal, Vishant, Sister-in-Laws hai Sarita, Premika, Blessings hai from Sas, Indra from Fiji, Sali, Nalini, Saru, Elvin, and Love from Shreya, Shanvi, Vyom and Vayom. Okay.
0: यार मेरे को ना ये बहुत रिस्की हो जाता है
1: जब बहुत आपने सोच समझ के रखे हैं फैमिली में
0: और सीन क्या हो जाता है मालूम है अभी इन्होंने सबके नाम तो लिख लिए
1: हाँ
0: बट अगर इसमें से एक भी नाम मिस हो गया तो वो हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे कि अरे मैंने तो लिखा था नाम बट उन्होंने अनाउंस नहीं किया
1: कोई बात नहीं आप ये हमारे पे डाल देना
0: हमारे पे डाल दो
1: कौन से वो मिलने वाले मतलब
0: यार ठीक है
1: नॉट एनी टाइम सून
0: वेल यू डोंट नो ईस्टर 2027
1: साथ में ट्रैवल ना करें
0: एनीवे अभी आपको हम सुनाएंगे की एंड का ये गाना सैंडी ट्रिप पे जब हम जाएंगे तो हम बिहाइंड द सीन्स जैसे जो हमारे चीज़ें होती है सीक्रेट्स होते हैं कुछ होते हैं वो शेयर कर सकते हैं कि नहीं
1: हाँ कर सकते हैं मतलब शेयर क्या करना तो वो देखेंगे फुल बिहाइंड द सीन्स
0: अच्छा
1: ना?
0: वो देखेंगे
1: देखो ना सी लाइव दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वहीं पे
0: ऑन एयर तो ये ज़्यादा फन साउंड करते हैं यार

0: कैलाश खेर, नूर एंड सिस्टर्स, दम लगा के हैशा, कई गाना आप सुन रहे थे।
1: और ये भी एक ऐसी मूवी थी जो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप को डिफाइन करती है
0: जी, क्योंकि इसमें पहली बार एक जो फीमेल लीड है उनको प्लस साइज दिखाया गया था।
1: इनफैक्ट भूमि पेडनेकर ने अपना, उसकी डेब्यू मूवी थी, उसने एक्चुअली में वेट गेन किया टू डू दिस रोल।
0: या इट इज इनक्रेडिबल, या
1: इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल।
0: एंड शी यूज्ड टू बी अ कास्टिंग डायरेक्टर बिफोर दैट, राइट?
1: यस यस। एंड ऑल्सो इस मूवी में जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया कि एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ दिखाई गई जो कि नॉर्मल है सोसाइटी में, कि अगर वेट ज़्यादा है तो उसको थोड़ा अलग वे से काउंट करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे टॉन्ट होते हैं कई बार, बहुत सारी चीज़ें। एंड यू नो वो जो एक इमेज होती है कि एकदम ना ये फिगर होनी चाहिए, इतने पतले होना चाहिए, तो बेसिकली उस चीज को तोड़ने के लिए इस मूवी को बनाया गया था।
0: एंड इट वाज अ वेरी गुड मूवी,
1: या
0: एंड ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स फॉर श्योर,
1: या 100%।
0: आज मेरे और सैंडी के बीच में बहुत ये हुआ है, डिस्कशन हुआ है और नेगोशिएशन हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी हुआ है टू डिसाइड कि कौन सा गाना हम इंक्लूड करें, कौन सा नहीं इंक्लूड करें।
1: कौन सा नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना कि इसका भी एक और सीजन करना ही पड़ेगा, बिकॉज सारी ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप की मूवी के गाने आज हम प्ले नहीं कर पाएंगे,
0: आज नहीं प्ले कर पा रहे। और हमें इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पे मैसेजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ सजेशंस दैट we are even more confused now.
1: anyway,
0: we are doing our best.
1: We are doing our best. So, abhi next kaun sa gana hai Ruzbe?
0: Next gana hai from a movie jisne ek naye music
1: genre
0: ko bahut zyada ye kya jo underground hota tha kafi baar.
1: Yeah.
0: And we are talking about raps.
1: We're talking about Gully Boy.
0: Gully Boy, हाँ, Gully Boy and rap genre, मतलब basically जो काफी underground हुआ करता था India में at least, उसको एक अलग स्पेस मिली और उस मूवी के बाद
1: मेन स्ट्रीम में लेके आई ये मूवी
0: जी। और उसके बाद काफी लाइक ये हसल कंपटीशन शुरू हुआ था जो MTV पे होता था, जहाँ पे रैप वाले कंपटीशंस होते थे।
1: इनफैक्ट काफी लोगों को ये भी समझ में आया, पहले क्या था कि काफी लोगों के माइंड में रैप की इमेज होती थी कि उसमें सिर्फ गालियां ही होती
0: है, गैंगस्टर
1: गालियां ये सब होती है, लेकिन रैप एग्जैक्टली होता क्या है ये काफी लोगों को इस मूवी को देखने के बाद में ही समझ में आया था, इसीलिए ये मूवी बहुत सारी जगह पे नॉमिनेट भी हुई थी
0: जी। या बट रणवीर सिंह एंड सिद्धांत चतुर्वेदी वर अमेजिंग, आलिया भट्ट वाज अमेजिंग,
1: जोया अख्तर ने इस मूवी को बनाया था। सो डायरेक्टर जोया अख्तर, जो कि हमेशा अर्बन यूथ अंडरग्राउंड कल्चर इसके ऊपर वो कोशिश करती है मूवीज को लेके आए, कुछ मूवीज वो बनाना चाहती है जो नहीं बनी है, बट दिस वाज वन मूवी व्हिच वाज आउट देयर।
0: और ये एक ऐसी मूवी थी जोया अख्तर की जहाँ पे उन्होंने एकदम ही ऐसा फैंसी चीजें नहीं दिखाई थी, नहीं तो उनकी यूजुअली काफी बार फैंसी चीजें होती ना। एक्चुअली ये गौरव ने जो हमें भेजा है मैसेज अभी, दोस्ताना इज आल्सो ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स,
1: वहाँ पे मेल रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करना ऐसा दिखाया गया था उसमें, या
0: काइंड ऑफ
1: या। सो एनीवे, सो वो एक्चुअली में शुभ मंगल ज्यादा सावधान में ज्यादा अच्छे वे से दिखाया गया,
0: यू आर राइट, या
1: उसमें थोड़ा उन्होंने द राइट्स दिखाए गए कि ऐसा क्यों नहीं, फैमिली के एक्सेप्टेंस उसमें दिखाई गई
0: जी। एनीवे, अभी के लिए आप सुनेंगे गली बॉय का ये गाना, उसके बाद और भी बहुत ही धासु गाने बाकी है। अब तक सिर्फ 6:30 बजे है, 6:33 टू बी प्रिसाइज, 7 बजे तक आपके साथ रहेंगे, सुनते रहिए।

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now. Hum. Accurate traffic.
1: Love that chicken from Popeyes.
2: Partly cloudy with a low of 5. Now on the northern, there looks like there's a breakdown blocking the right northbound lane on the Harbour Bridge, so do expect delays there. Right now it's a 35-minute drive out of town, the Constellation Drive, and the rest of the city is ever so slightly settling down. On the northwestern at the moment, still congested between St. Luke's and Lincoln Road, but it's just under half an hour to Massey.
1: 3 crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeyes Chicken this week.
3: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
4: Danny didn't think he needed a DVS system.
5: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
4: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
5: Nah, only one room. It was just too noisy.
4: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
0: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले मल्टीटन मेगा बॉटनी में. फ्री किड्स एक्टिविटीज, क्लासिक सॉसेज सिजल, लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज, प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट स्टोर वाइड. टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई. दिस सैटरडे एट मल्टीटन मेगा बॉटनी.
6: फेस इट, you're good in groups, so why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood. Give plasma. Save lives.
7: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open है for Best of India September 2026 Tour. Delhi की shopping, Agra का Taj Mahal, Jaipur Amer Fort और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आमची Mumbai की Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights और 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 47 8686. Limited spaces.

0: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits, trend makers. में आज हम आपके लिए breaking.
1: देखा जाए तो प्रीति जिंटा वो आयुष्मान खुराना of that time.
0: हाँ.
1: उसने सारी ऐसी movies की सलाम नमस्ते उसकी movie थी. And जिसमें live in के ऊपर ज़्यादा था. Then क्या कहना उसकी movie थी. और भी कुछ movies.
0: और भी हमने last time बात की थी इसके बारे में.
1: सलमान और रानी के साथ उसकी movie आई थी pregnancy वाली.
0: हाँ वो Oh no.
1: Yeah. वही
0: IVF के पहले वाला टाइम
1: IVF का पहले वाला टाइम.
0: Oh my God, how can we forget the name of the movie? Yeah. Salman Khan, Rani Mukherjee.
1: And Preeti Zinta.
0: And you are forgetting the name.
1: I know,
0: Sandy.
1: Man.
0: Oh God, terrible.
1: Anyway, guys, you know ना किसके बारे में बात कर रहे हैं?
0: जी.
1: तो अभी जाते जाते क्या कहना का गाना सुनते हैं. देयर वाज अनदर मूवी, एपिक मूवी, ब्यूटीफुल मूवी है. इसके गाने भी बहुत अच्छे थे यार. सैफ अली खान था इस मूवी में, चंद्रचूड़ सिंह था इस मूवी में, एंड प्रीति जिंटा.
0: ये मूवी के कुछ सीन्स है ना वो अभी भी मेरे मतलब मन में है.
1: जैसे
0: कि वो एक सीन है जहाँ पे ना वो सैफ अली खान ना ऐसा
1: रेस

0: रेस करता है
1: कि मैं जंप करूंगा इस पहाड़ी से उस पहाड़ी, कुछ ऐसा गुस्से में होता है, प्रीति जिंटा उसको रोकती है,
0: बोलती है नो आई लव यू,
1: और फिर वो रुक जाता है।
0: कितना इनअप्रोप्रिएट है ना वो, मालूम है आपको, वो बिहेवियर इज सो इनअप्रोप्रिएट राइट नाउ,
1: इमोशनल ब्लैकमेलिंग,
0: इमोशनल ब्लैकमेल में आता है वो, इट कैन बी स्लाइटली रेड फ्लैग एंड एज अ बुली आल्सो,
1: yeah,
0: that you can't emotionally blackmail someone.
1: But then Saif Ali Khan ka character dikhaya hai ki he is not able to commit to a relation, to iske liye wo haani karta hai. Anyway, so on. So it's a very nice story though. Agar aapne kya kehra nahi dekhi hai movie, to I will say ki zarur dekhiyega.
0: Ji, aur isi ke saath time bhi chala hai hamara bye-bye bolne ka.
1: To bye-bye kehne ka waqt aa chuka hai. So take care of yourself. Bye-bye. Agar hamare saath aap Bali, Thailand ghoomna chahte hai, to remember, ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, सो दैट आप फॉर्म फिल कर सके इंटरेस्ट के लिए, जहाँ पे आपको बाद में फुल आइटेनरी एंड प्राइसेस जो डिटेल्स है एवरीथिंग आपको हम भेज देंगे।
0: सो नो ऑब्लिगेशन, आप यहाँ पे फिल अप कर सकते हो।
1: यस, इसकी कोई फीस नहीं है। दिस विल बी योर बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट।
0: या यू जस्ट वांट टू नो कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। द ओनली थिंग इज दिस ओनली 20 स्पॉट्स अवेलेबल, सो एंड we have already received
1: trip, actually
0: we've already received quite a few interest, so fadafad aap bhi aapka interest bhejiye yahan pe, because we don't want to like be ke are yaar sorry sold out full ho gaya, so yeah, get in your interest quickly and we'll see you tomorrow.
1: Isi note pe bye
0: bye.

0: Streaming on Rover.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūruki. All together, Auckland.
5: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ. अच्छा,
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहूहू. कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.nz.

0: जिलो थोड़ा थोड़ा मर लो
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो दुनिया में आई हो तो लव कर लो थोड़ा सा जिलो

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
2: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy... And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
3: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
4: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
5: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Consumer Affairs Minister Cameron Brewer says an outright ban could be on the table for children's play sand after findings that asbestos in contaminated products can be airborne. The Police Association is asking the higher-ups to pay close attention to a tongue-in-cheek recruitment video posted by Queensland Police. It encourages Kiwi cops to jump the ditch for a bigger piece of the PAV and pay. Ukraine's capital, Kyiv, has been hit by a series of powerful explosions as it comes under a large-scale Russian missile attack. Officials say at least 10 people have been killed. In sport, the number 10 jersey and Dave Rennie's first All Blacks playing squad has gone to Ruben Love. True to his word to pick on form, Rennie has gone with the Hurricanes' first five and given him teammates Cam Roygaard and Jordy Barrett either side of him. The NBL basketball in Napier this evening, the Bay Hawks hosting the Taranaki Airs, and halftime it's 53-43 to the Airs. And day four of the tennis at Wimbledon underway in a couple of hours. The weather still looks good. Kiwi doubles specialist Michael Venus in action overnight.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
6: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
4: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
7: It is Thursday night and welcome to the show everyone. Night Cafe में मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ. और Night Cafe जब Thursday night को हम लेकर आते हैं तो फिर आपके लिए होता है romantic गानों का सदाबहार संगम, सदाबहार सिलसिला जो चलता रहता है from 8 to midnight. तो ऐसा ही कुछ हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो हम जिसे जिस प्रोग्राम को कहते हैं Rhythm and Romance. तो Night Cafe में ये सेगमेंट पूरा एक्सटेंड होता है throughout the Night Cafe program, which is from 8 p.m. to midnight, जहाँ पर रिदम एंड रोमांस में बहुत सारे मेलोडियस सेंशुअस और रोमांटिक सॉन्ग्स हम आपके लिए पेश करते हैं और कुछ प्यार भरी बातें भी लेकर आते हैं. तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए नाइट कैफे रिदम एंड रोमांस.
4: जज्बात की नरमी, मोहब्बत की राज,
8: विस्पर्स ऑफ इश्क.
7: वेलकम एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स रिदम एंड रोमांस में आपका स्वागत है. बहुत सारे ऐसे गाने जिसमें रिदम हो, जिसमें रोमांस हो, मेलोडियस हो, मेलोडी हो, सेंसुअस हो, ये सभी कुछ हम लेकर आए हैं जो आपके लिए हम पेश करेंगे. कुछ शेर व शायरी की महफिल भी सजाएंगे. दिल की किताब का हर पन्ना तेरा नाम लिखता है, हर ख्वाब सिर्फ तेरा ही पैगाम लिखता है. दूर होकर भी तू इतनी करीब लगती है, दूर होकर भी तू इतनी करीब लगती है. मेरा हर एहसास बस तेरा सलाम लिखता है. स्वागत है आपका, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2 जुलाई आज है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे एवरीवन. टीम हम की ओर से, हम परिवार की ओर से आपको बहुत सारी बधाइयाँ. समथिंग स्पेशल हो रहा है लाइफ में, उसके लिए भी बहुत सारी बेस्ट विशेज हम आपको देना चाहेंगे. मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, आवर बेस्ट विशेज फ्रॉम आवर फैमिली टू योर्स. और जितने भी ऑनलाइन लिसनर्स हैं, रोबल लिसनर्स हैं, आपको भी याद करते हैं. और जो लोग न्यूजीलैंड से बाहर हैं, आप ओवरसीज में हैं, इंटरनेशनली आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगता है आपका साथ. अभी रिदम एंड रोमांस में और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे. आपको बस हमारे साथ चिपके रहना है, हमारा साथ देते रहना है. 12 बजे तक इतने सारे गाने मैं आपको सुनाऊंगा आज की, आप भी खुश हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ इट. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
7: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
2: The beat of Bollywood.
8: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हम. Night Cafe on Hum. जज्बात की नरमी, मोहब्बत के राज.
0: Whispers of इश्क.
9: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Imagine कीजिए sunrise views होंगे, new friendships, new दोस्त बनाने का मौका, road trip playlist होता है, great food आपको मिलता है, endless laughs होते हैं. It is not a movie, लेकिन ये आपकी कहानी हो सकती है. This can be your story. और it could be your Easter 2027. ज़रा गौर फरमाइएगा. It could be your Easter 2027. Sunrise views, new friendships, road trip playlist, great food, endless laughs. इसके लिए आप हमें सुनते रहो, क्योंकि बहुत कुछ होने जा रहा है, कुछ स्पेशल होने जा रहा है. Stay tuned to know more. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ग्लोबल सेंसेशन करण औजला अपना पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आ रहे हैं टू ओकलैंड एंड इट्स गोइंग टू बी मैसिव फ्रॉम चार्ट टॉपिंग हिट्स टू द एंथम्स जो हर किसी को पता है जो पसंद करते हैं इनके गाने एक्सपीरियंस कीजिए करण औजला लाइव ऑन स्टेज एट स्पार्क अरीना 25th अगस्त को ये परफॉर्म करेंगे एंड दैट्स नॉट ऑल इनको एक स्पेशल गेस्ट हिट मेकर IKKY Ikki join in karenge, making this an unforgettable night of music and energy. Aap apna chance miss nahi kar sakte to be part of the P-Pop Culture World Tour. Tickets or more information, aap hum.rover.nz visit kare ya phir livenation.co.nz visit kare. Karan Aujla 25th August Park Arena mein hone ja raha hai. Aapko bhi yahan par pahunchna hai. Aur humare saath hi aapke liye Karan Aujla ka gana daily pesh karenge. Aapko guess karna hoga title of the song. Correct entries ko draw mein shamil kiya जाएगा डबल पास जीतने का मौका होगा आपको टेक्स्ट करना होगा कि अपने नाम के साथ सही जवाब 5599 पर ड्रो 6 जुलाई को

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: We're planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे.
3: अच्छा, हुनुआ वेस्ट में.
4: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे जारी है एंड वेलकम एवरीवन. रिदम एंड रोमांस में मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हमारा साथ मिडनाइट तक रहेगा और बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं आपको सुना रहा हूँ. बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स एक के बाद एक करके आपके लिए पेश कर रहा हूँ. तो इस घंटे पर भी आपका इस्तकबाल है. मैं हाजिर खिदमत हूँ इस घंटे पर भी आपको बैक टू बैक सॉन्ग सुनाने के लिए. ऐसे गाने जो बहुत पसंद आएंगे आपको, आपके फेवरेट आर्टिस्ट की आवाज़ों में गाने होंगे और वो भी रोमांटिक सॉन्ग्स जो हमेशा बहुत अच्छा लगता है सुनना. रिपीटेडली जो मेलोडियस सॉन्ग्स है उनको सुनना अच्छा लगता है. स्पेशली अभी के दौर के जो गाने हैं बहुत मज़ेदार बनते हैं. वैसे गाने ही इस घंटे पर लेकर आए हैं आपके लिए. शेर व शायरी का भी महफिल आपके साथ हम सजा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं कुछ ऐसी बातें जो प्यार से रिलेटेड हो, दोस्ती से रिलेटेड हो और हमारे और आपसे रिलेटेड हो, वो भी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में. मुस्कुराहट तेरी मेरी पहचान बन गई, मुस्कुराहट तेरी मेरी पहचान बन गई, तेरी यादें मेरी जान बन गई. सोचा था भूल जाएंगे एक दिन आपको, सोचा था भूल जाएंगे एक दिन आपको, पर तू मेरी आदत से भी ज़्यादा ख़ास बन गई. स्वागत है आपका, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. रिदम एंड रोमांस जारी है ऑन अ थर्सडे नाइट 2nd जुलाई.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: उम्मीद करता हूँ कि बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको बहुत ही पसंद आया होगा क्योंकि गाने बहुत ही प्यारे थे एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगा होगा. एक एक करके आपको वो सारे गाने सुनाऊंगा. काफ़ी गुड न्यूज़ भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सर्ट्स भी होने को है, ऐसे आर्टिस्ट को भी आप देख पाएंगे, उसके बारे में जानकारी मैं लेकर आया हूँ. साथ ही में हम के ज़रिए कुछ एक अनाउंसमेंट भी होने को है ईस्टर वीकेंड के दौरान, और ये अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द आपको सुनने को मिलेगा. लेकिन थोड़ी बहुत झलक आपको हम सुना रहे हैं तो वो भी आप हमें हमारा साथ देते रहे सुनने के लिए. साथ ही में काफ़ी कॉन्सर्ट्स और कॉमेडी शोज़ भी होने जा रहे हैं, इस पर भी जानकारी. सामाजिक सूचनाएं, कुछ इवेंट्स भी होने को है जो फ्री इवेंट्स है, कम्युनिटी इवेंट्स, इस पर भी जानकारी आपके साथ होगी. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं, आपको भी बस हमें सुनते रहना है. हमारे फेवरेट गाने जो है, आपके फेवरेट गाने जो है, वो भी हम मिलकर आज सुनेंगे और आपके लिए मैं पेश करूँगा. चांद भी शर्मा जाए तेरा नूर देख कर, चांद भी शर्मा जाए तेरा नूर देख कर, फूल भी झुक जाए तेरा गुरूर देखकर. हम तो बस यूं ही दीवाने हो गए, हम तो बस यूं ही दीवाने हो गए, अपना ही दिल मजबूर देखकर. स्वागत है आपका एक बार फिर, जारी है आपके लिए रिदम एंड रोमांस.

0: अगर बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media works. Media that works.
1: G'day Kiwis. Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
2: Sorry about that.
1: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
3: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
4: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
5: But should we call her, sir?
4: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
3: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
6: YRF Spy Universe presents
4: Alpha.
6: Releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
3: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
7: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
8: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
7: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
8: हम
7: नाइट कैफे ऑन हम, जज्बात की नरमी, मोहब्बत के राज,
9: विस्पर्स ऑफ इश्क।
10: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले, क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या। ये एक सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट Zerko एंड एन AWS community builder, जो बहुत ही बारीकी से ब्रेक डाउन करते हैं द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन अ वे दैट एक्चुअली मेक सेंस, चाहे ChatGPT हो या AI एट वर्क हो, टू जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेसी कंसर्न्स, अपॉर्चुनिटीज या कोई भी स्किल्स दैट यू नीड फॉर द फ्यूचर। ये कन्वर्सेशन ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देता है और डिस्कस करता है इन मुद्दों को। चाहे आप एक्साइटेड हो, क्यूरियस हो या फिर लिटिल नर्वस अबाउट AI, ये एपिसोड आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है टू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं। तो AI इज एवरीवेयर, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले। 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो। इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप
7: यू बाय सोना संसार, पापा टॉय एंड माउंट रॉ स्किल।
9: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
8: बजे हिट गाने।
7: नाइट कैफे। जज्बात की नरमी, मोहब्बत के राज,
9: विस्पर्स ऑफ इश्क।
7: A moment, Krishka magic, only on Hum.
10: वेलकम बैक एवरी वन, यू आर लिसनिंग टू नंबर वन हम, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक एक करके आपको प्यारे गाने मैं सुना रहा हूँ। रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और लवली सॉन्ग्स तो है ही, लेकिन शेर व शायरी भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं आपके लिए। और कुछ ऐसे गाने लेकर हम आए हैं जो कम आपने सुना है लेकिन रोमांटिक बहुत है, तो हमने सोचा कि वो भी आपके लिए शामिल करो। आज 2nd July है, बहुत तेज़ी से वक्त भी आगे बढ़ता जा रहा है, वक्त के साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है और साथ ही में अपना ख्याल रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। बारिश की बूंदों सा सुकून हो तुम, बारिश की बूंदों सा सुकून हो तुम, सर्दी की धूप सा जुनून हो तुम। जितना भी लिखूं कम लगे, जितना भी लिखूं कम लगे, मेरी हर कहानी का सुरूर हो तुम। स्वागत है आपका, बैक टू बैक सॉन्ग्स आपको सुनाते हैं।

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one humbling Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Auckland, get ready. Ek evening of laughter entertainment hone ja raha hai with Gujju Bhai ni exchange offer jisme legendary Siddharth Randeria aa rahe hain. Ye brand new comedy hai jisme Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer jisse series of hilarious misunderstandings, unexpected twists aur laugh out loud situations aate hain. Witty dialogues hai, relatable family moments honge aur is show mein classic Gujarati humor bhi sunne ko milega, dekhne को मिलेगा. एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए. सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शन जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं. तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें. टिकट्स आज ही बुक कीजिए premierTickets.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 जुलाई को होने जा रहा है 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Dad, I feel sick.
1: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
2: Hi boys, ek kahani sunati hu. Ek rakshas tha, ghamand uska shastra tha. Wo dhoke se raj karta tha.
3: Main jo bana raha hu wo itihas hai.
4: But should we call her sir?
5: Iski maa ka naam Janki tha. Hum ise Sita bulayenge.
2: Itihas janta hai ye kahani kaise khatam hui.
6: YRF Spy Universe presents
3: Alpha.
6: Releasing in cinemas on 3rd July. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
2: Shuru karo Agni Pariksha.
7: The long weekend. Time to kick back, relax, reflect, and think of something good to do together. Something that'll really bond you. Something selfless that'll give life just a little more purpose. Something like getting a group of blood buddies together to give blood or plasma. This winter, with all the dreaded loogies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and your donations could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
8: The beat of Bollywood.
9: World's best, hamari koi branch nahi hai.
8: Night Cafe. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
10: Whispers of Ishq.
11: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits, Krish ka saath hai. New Zealand Art and Culture Charitable Trust ki or se ek bahut hi shandar announcement hai. Shri Ram Leela aapke liye ayojit kiya ja raha hai. Stall inquiries ke liye aap Master Ashok se baate kar sakte hain. 021-179-5459 par. Ram Leela ek divine theatrical experience hone ja raha hai. Save the date. Ye date aapko mark karke rakhna hai. 8th August ko hoga. और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8th August. क्रिश के साथ और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.
8: You're listening to Krish.
12: Let's go!
8: आपका moment, Krish का magic. Only on Hum.
11: रिदम एंड रोमेंस आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन. यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. क्रिश के साथ है. कुछ और प्यारे गाने आपके लिए हम शामिल कर रहे हैं. याद रहे अगले घंटे पर भी मिलते हैं विद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट. टॉप ऑफ द आवर पर होगा सबसे पहले जैसे ही घंटे की शुरुआत होती है और फिर तुरंत उसके बाद 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें अमित त्रिवेदी, अरिजीत सिंह, कुमार शानू, साधना सरगम, शान, श्रेया घोषाल, अमित त्रिवेदी जैसे सिंगर्स की आवाज़ों में बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं. अगले घंटे पर मिलते हैं रोवर लिसनर्स और साथ में एवरी वन लिसनिंग टू अस फ्रॉम आउट ऑफ ऑकलैंड, आउट ऑफ न्यूजीलैंड भी आपको याद करते हैं अगले गाने पर.
13: 80s के रेट्रो गाने

0: Cafe on Hum. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
1: Whispers of Ishq.
0: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: रिदम एंड रोमांस में आपका स्वागत है एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है, क्योंकि ये हमारा फाइनल आवर है। तो जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं या अभी आपने रेडियो ट्यून इन किया है, थोड़ा बिजी थे इससे पहले, कामकाज, प्रिपरेशंस, ये सभी कुछ जो निपटाना पड़ता है, और अभी फ़िलहाल आप आराम कर रहे हैं, या फिर वर्कर्स अगर आप ब्रेक पर हैं, या ड्राइवर्स अगर आप भी हमें सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, तो स्वागत है आपका। मैं क्रिश आपके साथ दूंगा ऑल द वे टिल मिडनाइट। फाइनल आवर है ये, और इस घंटे पर भी आपका स्वागत है। आपके लिए जो बैक टू बैक सॉन्ग्स मैं लेकर बिल्कुल तैयार हूँ, जो मैं आपको सुनाऊंगा इन अ बिट। खामोशी भी कभी अल्फाज बन जाती है, खामोशी भी कभी अल्फाज बन जाती है, तन्हाई भी कभी राज बन जाती है। जब दिल से किसी को चाह जाए, जब दिल से किसी को चाह जाए, हर धड़कन उसकी आवाज बन जाती है। स्वागत है आपका, सुनते रहो हम, आपके लिए जारी है रिदम एंड रोमांस।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: एक एक करके आपके सारे फेवरेट सॉन्ग्स मैं पेश करता रहूंगा. रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है और ये चलता रहेगा मिडनाइट तक. ये फाइनल आवा है आपके लिए. कॉकटेल 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शाहिद कृति और रश्मिका का जो ये फिल्म है 79 करोड़ कमा चुकी है इन 9 डेज के अंदर 79 करोड़. तो ये बहुत ही लाजवाब कलेक्शन रहा है और कहा गया है कि काफ़ी ऑडियंस इस फिल्म को लाइक कर रहे हैं. स्पेशली ओवरसीज़ मार्केट में इस फिल्म की काफ़ी चर्चा हो रही है और लाइकनेस भी बढ़ रही है. कहा गया है कि ये जो फिल्म है एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती है अबाउट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स और काफ़ी व्यूअर्स को लगता है कि ये जो फिल्म है एक अलग चाम लेकर आती है फिल्मी पर्दे पर. और ऑफ कोर्स शाहिद कपूर है, कृति सेनन है और रश्मिका मंदाना है. तीनों के तीनों धुरंधर स्टार्स जिनका इम्पैक्ट बहुत ही भारी पड़ता है स्क्रीन पर और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. बॉलीवुड न्यूज़ और भी लेकर आते रहेंगे आपके लिए.

0: Cafe on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
7: On Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
8: Whispers of Ishq.
9: कुछ ही देर तक और आपके साथ होगा. मैं आपके साथ दूंगा और नाइट कैफे में रिदम एंड रोमांस 12 बजे तक चलेगा. कुछ और प्यारे गाने मैं आपको सुनाता हूं जो आपको बेहद पसंद आ रहा है. थैंक यू सो मच. अच्छा लगता है जब आपके साथ हमें मिलता है. ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए, बस तेरा साथ हर वक्त चाहिए. जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मुझे सिर्फ आपका हाथ चाहिए. ऐसे ही साथ देते रहिएगा, हाथ देते रहिएगा और ऐसे ही सफ़र में हम सफ़र बनकर चलते रहिएगा ताकि मंजिल तक पहुंचना, ये जो सफ़र है, बहुत ही आसान बन जाए. और भी गाने सुनाते हैं आपको.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम।
1: नाइट कैफे यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर कल, सॉरी फ्राइडे, सैटरडे मॉर्निंग को आएंगे ब्रेकफास्ट शो लेकर। कल फ्राइडे का दिन अच्छी तरह बीते और सैटरडे को मुलाकात होती है। गुड नाइट एवरीवन।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: Flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
3: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz.

0: The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai. Night Fly.

0: Flight on Hum.
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
5: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
6: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
7: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
6: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
7: Mashallah, bahut acha, very nice.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
9: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह,
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
5: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
12: yeah.
1: हम
12: तेरी बेस है फाड़ू, मेरी हाइज के लिए हम।
13: हेलो बोलो। हेलो दादाजी।
14: हेलो।
13: अरे वाह, फोकस कर रहे हैं, वेरी गुड।
15: क्या सीन है भाई, कुड़ी पसंद तो नहीं आ गई?

Playing

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424। Winter आ गया है and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In-store आइए या shop online today.
4: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था।
5: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
6: पर should we call her, sir?
5: इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे।
4: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
7: YRF Spy Universe presents
8: Alpha,
7: now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
4: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: हम भी यहाँ
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Flight on Hum. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation. Night Flight.

0: Sophia.
1: Streaming on Rover.
2: Hi boys, एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
3: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
4: But should we call her sir?
5: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
2: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
1: YRF Spy Universe presents
3: Alpha.
1: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TPC.
2: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
6: Nightfly.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: डिब्बा खुल गया।
2: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
3: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
2: डिब्बा खुल गया।
3: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
0: The beat of Bollywood.
4: World's best, hamari koi branch nahi hai.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और वेटाकरे।
2: अच्छा, Hunua west में।
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: TriVision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
5: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
4: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
5: Mashallah, bahut acha, very nice.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: MediaWorks complaints. How can I help?
8: My kids won't shut up.
7: I'm not sure that's our problem.
8: They keep reciting lines from one of your radio ads.
7: Aw, cute.
8: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
9: What do you want, son?
10: I want me some of that real southern chicken.
8: 28 times.
7: So where are you now?
8: Eating chicken.
11: Advertise with
12: MediaWorks.
11: New Zealand listens to us.
13: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
1: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Support is being thrown behind Axbid to beef up security guard training to help with offenders. Retail NZ says those who take part would be allowed to use reasonable force as a last resort. It also says crime costs the sector about $2.6 billion a year and customer aggression has worsened. The teacher shortage is easing, but a fresh concern is now being raised. A survey of secondary school principals found the number of suitable applicants for vacancies is falling. The government's looking at how businesses can be held accountable for recalled toxic products. An AUT study found asbestos was expelled into the air from recalled magic sand. Minister Cameron Brewer says he's now seeking urgent advice.
15: Let's not forget that businesses, retailers have a responsibility here.
14: An economist is surprised by a small 12% bump in car registrations in the 3 months to June. Brad Olson from Infometrics says he wasn't expecting it.
16: Particularly given the Iran war that occurred and that household confidence wasn't feeling particularly upbeat in that period.
14: EV registrations spiked 165%. Two people will appear in court today over a meth lab bus linked to the Hells Angels in Auckland. Police yesterday raided a property in Riverhead with equipment and chemicals found. Waste from a previous methamphetamine cook was also located. In sport, rugby with shift 4, Luke Jacobson at 7 is the biggest talking point from the All Blacks team to take on France in Christchurch tomorrow. Coach Dave Rennie says Jacobson is tough.
17: He'll have a real physical presence against the French, and we think that's really important.
14: And the Baby Blacks are 2 from 2 at the Under 20 World Championship in Georgia, beating Scotland 36-26.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
13: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
18: Suchit kiya jata hai ki Auckland ki Shamini Raman ke pita, yani Cemental Crescent Somerville ki श्रीमती सुशील रमन के पति रमाश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार को 1 बजे मेनुकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा. श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-717-504 पर संपर्क कर सकते हैं. ऑकलैंड की शामिनी रमन के पिता यानी सिमेंटल क्रेसेंट समरविल की श्रीमती सुशील रमन के पति रमेश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार सोमवार को 1 बजे मेनुकाउ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 021-717-504 पर संपर्क कर सकते हैं।
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: जबरदस्त हिट्स
3: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
3: हम
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
18: 4 डिग्रीज टेम्परेचर सेंट्रल ऑकलैंड में फिलहाल आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 15, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज रहेगा। आज मौसम साफ और सुहाना रहेगा। सनराइज 7:34 AM पर और आज का सनसेट शाम 5:17 पर होने को है।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast Catch-Up.
18: 4 मिनट हो रहे हैं 6:00। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। आज फ्राइडे है 3rd of July। आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। कल के वादे के अनुसार आज एक बार फिर आ गए हैं आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा। उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा, खुशियों भरा रहा होगा और एक नए दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए आप तैयार होंगे। और आज के दिन क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या होने को है, खबरों में क्या कुछ है, इन सभी चीज़ों पर जानकारियां जो है ये हम आपको देंगे। इनाम जीतने के कई मौके भी आज एक बार फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और साथ में आपके मनचाहे गानों का ये लाजवाब सफ़र और कारवा 4 घंटों तक चलता रहेगा। Only on हम playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM और रोवा पर आपका हम स्वागत कर रहे हैं। और आज सबसे पहले थोड़ी ही देर में हमारी जो सनी साइड अप स्टोरी है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में।

0: Sunnyside Up.
1: 13 मिनट हुए हैं 6:00 और आज की सनीसाइड अप स्टोरी का वक्त अब हो चुका है। आज अमेज़न बेसिन, इसके बारे में शायद आपने पढ़ा हो, सुना हो या फिर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा हो। कोलंबिया में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ बहुत रूरल और भीतरी इलाकों में रहते हैं, उन्होंने समय के साथ देखा है कि किस तरह से जो नए ज़माने के फार्मिंग टेक्निक्स हैं ये ज़मीन को बर्बाद करते हैं, बायोडाइवर्सिटी जो है इसे तबाह कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो वहाँ के लोकल फैमिलीज़ जो हैं ये काफ़ी स्ट्रेस से गुज़रते हैं। स्पेशली जिस तरह से केमिकल्स पर लोग निर्भर हो रहे हैं जस्ट टू ग्रो बेसिक फूड क्रॉप्स, और ये जो प्रेशर होता है टू मॉडर्नाइज जो है इसकी वजह से एक तो रेन फॉरेस्ट और साथ में बर्बाद हो ही रहा है जंगल जो है, इसे बर्बाद किया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है। वहीं पर जो वहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें इस बात की चिंता थी कि जिस तरीके से जेन्युइन फार्मिंग वो पहले करते थे वो भी समय के साथ ख़त्म होता जा रहा है। तो एक इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी डिस्पैच जो है ये एक हफ्ते पहले जो है ये रिलीज़ हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इंडिजिनस फार्मर्स हैं उनके जो उस कम्युनिटी के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने 4,500 साल पुराना एक प्रैक्टिस जो है इसे वापस से शुरू किया है, और इसे कहते हैं चक्र। चक्र कहते हैं इसको क्योंकि ये वो चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज जो है इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल से बाहर निकले। एल्डर्स जो है, बुज़ुर्ग जो हैं यंगर जनरेशन को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे वो स्मॉल प्लॉट्स में जो फार्मिंग है ये कर सकते हैं बगैर जंगल को काटे या फिर किसी तरह का केमिकल पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र जो है उसका इस्तेमाल किए हुए हैं, अच्छी तरह से जो फसल है वो कैसे उगा सकते हैं जिससे ज़मीन जो है ये बर्बाद ना हो, जंगल बहुत ज़्यादा नहीं काटना पड़े, उनके पास खाने पीने का सामान हो और साथ में जो एनवायरनमेंट है वो भी बर्बाद ना हो।
2: इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम नेचर के साथ चलें और नॉट जस्ट दैट बट उसका लुक आफ्टर भी करें। अगर हम नेचर का लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं ना तो उसके साथ चल रहे हैं, उसको इनफेक्ट जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इट इज़ समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज नहीं तो कल इसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा और बहुत गंदा वाला असर पड़ेगा जिससे शायद रिकवर होने में यू नो वी वोंट बी एबल टू इनफेक्ट डू दैट एज वेल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी ये पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है और जो भी सीख दे रही है आने वाली जनरेशन को, अच्छा है, ज़रूरी है। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक पूरी दुनिया में ये सीख जो है ये देनी चाहिए।
1: आपने भी खुद देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, ग्लोबल वार्मिंग को अगर ध्यान में रखें, कई प्रॉब्लम्स का सामना जो है ये दुनिया भर में कई देश कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को रीलोकेट करना पड़ रहा है। एंड इसकी वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, ओजोन लेयर को क्षति पहुँचना एंड ऑल दोज थिंग्स। सो कहीं ना कहीं अब लोग जो है अपने आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि एकदम ग्राउंड लेवल पर किस तरह से वो अपनी ओर से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू कीप थिंग्स नेचुरल। ये आज की हमारी सनीसाइड अप स्टोरी है आपके लिए, जिसके साथ 17 मिनट हुए हैं 6:00।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।

हमके ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021 769 755.

0: Media that works.
1: वो indelible homes वाली कहानी सुनाओ ना.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
6: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzoras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Global Headlines.
9: आज सुबह के मुख्य समाचारों में वेनेजुएला में आए भयानक एयरक्वेक के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम्स ने एक नाइन स्टोरी बिल्डिंग के मलबे से एक सिक्योरिटी गार्ड को जिंदा बचा लिया है। लगुआरा के एक कॉलेप्स्ड मॉल के पार्किंग लॉट में ये व्यक्ति लगभग 29 फीट गहरे मलबे के नीचे दबा हुआ था, जहां लोकल और इंटरनेशनल टीम्स को उन्हें निकालने में 70 घंटे का वक्त लगा। इंडिया में व्हाट्सएप के बाद अब सरकार ने टेलीग्राम और सिग्नल को भी नोटिस भेजकर यूजर नेम फीचर और यूजर सेफ्टी पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि सरकार को डर है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर ये फीचर पहले से एक्टिव है और सिग्नल पर ऑप्शनल है, पर गवर्नमेंट का मानना है कि इस एनोनिमिटी का गलत फायदा उठाकर चोर आराम से फ्रॉड कर सकते हैं। फिजी में इलेक्ट्रल कमीशन के चेयर जस्टिस उसैया रतवुली ने साफ किया है कि फॉर्मर सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम की मांग पर आना मतई दीवा और बाकी स्टाफ के खिलाफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस कमेटी बनाना उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बाहर है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस रतवुली सुपरवाइजर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का हक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स कमीशन के पास है, जहां सनीम ने पहले ही अपनी फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज और फिजी की जनता को भरोसा दिया है कि वो चुनाव की तैयारियों पर पूरी नजर रखे हुए हैं और अपकमिंग जनरल इलेक्शन से पहले हर चीज कंट्रोल में है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज राउंड ऑफ 32 के कुछ बहुत ही जबरदस्त मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 7 बजे स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, 11 बजे पोर्चुगल क्रोएशिया से खेलेगा और 3 बजे स्विट्जरलैंड की भिड़ंत अल्जीरिया से होगी। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। उधर आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत जो दूसरा सेमीफाइनल है, फिलहाल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बॉल करने का फैसला किया और अभी इंग्लैंड वुमेन्स टीम बैटिंग कर रही है। 9.2 ओवर्स में 3 खिलाड़ी खोकर टीम 63 रन्स बनाने में कामयाब हुई है। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
8: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
7: Bollywood's most wanted.
10: Gundi ghar dao ya seedha andar aao.
11: Now, up na A game.
7: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: को आप सुन रहे थे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसके साथ अब 6:30 बज रहे हैं। बॉलीवुड में भी तमाम चीजें हो रही हैं जिनकी जानकारियां आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था एंड इट्स अबाउट द वेटरन फिल्म मेकर महेश भट्ट, और समय समय पर वो अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक जो है ये कई चीज़ों को लेकर देते रहते हैं। और इस बार महेश भट्ट जो हैं उन्होंने कहा है कि वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में अब फिल्में डायरेक्ट नहीं करेंगे।
1: क्यों?
0: क्योंकि उनका कहना है कि जो फिल्म कंटेंट है ये प्री डिसाइडेड होता है, तो जो आर्टिस्ट है उसका क्या काम। उन्होंने उनकी बहुत सारी फिल्में जो हैं ये थी 30 फिल्में जो है 10 सालों में इन्होंने डायरेक्ट की। जख्म, हम हैं राही प्यार के, सड़क, 1999 में वो रिटायर हुए थे टेकिंग अ बैक सीट टू फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स। जब वो 2020 में वापस आए सड़क 2 के साथ, कई लोगों ने उम्मीद की थी कि ये उनका अच्छा कम बैक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद चलकर उन्होंने कहा कि नहीं, थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्ट एनी मोर।
1: ओके, सो आई मीन इट्स हिज चॉइस एज वेल, बट रीजंस जो भी ये दे रहे हैं कि खुद यू नो इन्होंने इवैल्यूएट किया हुआ है, जिसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग से ही इज मेड द डिसीजन। On the other hand, there is a lot of more things जो हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर और साथ में बॉलीवुड में एज फार एज बॉक्स ऑफिस आल्सो कंसर्न्ड। पर फिलहाल आपको बता दें अल्फा के बारे में कहा गया है कि अल्फा जो है ये फिल्म तैयारी कर रही है अपनी रिलीज के लिए, और काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ इस फिल्म की रिलीज जो है इस पर काम किया जा रहा है। YRF ने सिक्योर किया है वाइड रिलीज फॉर आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाघ की आने वाली फिल्म अल्फा। 9,000 शोज अक्रॉस 2,750 स्क्रीन्स इन इंडिया ओनली, ये इस पर काम किया गया है। वाइल ऑन द अदर हैंड ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट 35,000 टिकट्स नेशनल चेन्स में बिक चुके हैं एंड इट इज ऑल सेट फॉर 7 करोड़ स्टार्ट। मतलब फिल्म के रिलीज से पहले 35,000 टिकट्स जो है ये ऑलरेडी बिक चुके हैं।
0: ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। वहीं पर और भी कई फिल्में जो हैं ये आ रही हैं, अभी ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं बेबी डू डाई डू के बारे में, और ये फिल्म जो है ये भी आज रिलीज होने को है। और जैसे कि हमने पहले बताया कि इसमें हुमा कुरैशी जो है एक प्रोफेशनल असेसिन का काम कर रही हैं, और ये फिल्म जो है हुमा कुरैशी और साकिब सलीम इन दोनों ने मिलकर खुद ही प्रोड्यूस किया है।
1: ओह इंटरेस्टिंग, तो खुद प्रोड्यूस करने के बाद आई थिंक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ी जाती है। बट आई वुड डेफिनेटली से कि इस फिल्म का अगर आपने ट्रेलर या टीजर कुछ भी देखा हो, इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप जाकर चेकआउट कीजिए एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑन द अदर हैंड इक्का ये जो फिल्म है इसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है, नेटफ्लिक्स पर इनफेक्ट आने वाली है, जिसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोत्तमा शो में और साथ में दिया मिर्जा जो ये दिखने वाली है। सो इवन दैट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। देयर इज अ लॉट दैट्स हैपनिंग एज फार एज एंटरटेनमेंट इज कंसर्न्ड, आई वुड से।
0: और इनकी जानकारियां जो है हम पर आपके लिए हम जरूर लेकर आते रहेंगे।
2: Book your Ski G trip today.
3: Had a crash southbound around Dominion Road. It got heavy for a little while, but it's been sorted and it's cleared up fairly nicely, just a bit sluggish through that area. Southern Motorway, 22 minutes in from Manukau. Building south of there, slow at Manurewa. Northwestern, 20 minutes in from Massey, just lying close to the city. Northern looks okay.
2: To book your next Ski G trip to Vancouver or Japan, go to fijiairways.com.
4: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
5: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. and every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
6: Hi boys. एक कहानी सुनाती हूँ। एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। वो धोखे से राज करता था।
7: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है।
8: But should we call her, sir?
9: इसकी माँ का नाम जानकी था। हम इसे सीता बुलाएंगे।
6: इतिहास जानता है ये कहानी कैसे खत्म हुई।
10: YRF Spy Universe presents
11: Alpha.
10: Now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
6: शुरू करो अग्नि परीक्षा।
12: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटन मेगा बॉटनी में फ्री किड्स एक्टिविटीज क्लासिक सॉसेज सिजल लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिव अवेज प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट स्टोर वाइड टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटन मेगा बॉटनी.
13: It's bonus time at No Leeming. Get a bonus $50 gift card for every $500 you spend on selected products. Don't miss out. Offer valid until Sunday, 5th July. Conditions and exclusions apply. Only at No Leeming.
14: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
14: Breakfast Catch-Up.
0: अभी 23 मिनट रह गए हैं 7 बजे में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज सबसे पहले गुड मॉर्निंग के आपके जो मैसेजेस आए हैं, जय सियाराम विजय और पूजा जी. माता लक्ष्मी ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीकेंड. अच्छा, परमा महाराज जी का ये मैसेज जो है ये आया था, आपको भी ये सुबह मुबारक हो.
1: इनके अलावा अगर देखा जाए तो और भी गुड मॉर्निंग मैसेजेस आए हैं. हाय पूजा एंड विजय, गुड मॉर्निंग, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे एंड वीकेंड. जय माता दी, माँ ब्लेस ऑल, ये इन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए. हैव अ वंडरफुल फ्राइडे और आपको आज हमारी ओर से ऑल द बेस्ट फॉर द वीकेंड टू.
0: राम राम, जय माता दी, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे. मिस्टर मटा मटा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. आपको भी इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं.
1: और इसके साथ साथ हमारे पास और भी गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है ये आए हैं. थैंक यू सो मच आपके भी गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको हम विश कर रहे हैं. और आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी द मैसेज क्योंकि सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है.
0: ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे. मैंडी, आपका मैसेज है, आपको भी हैप्पी फ्राइडे. गुड मॉर्निंग टू ऑल, जय माता दी, हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड वीकेंड अहेड. विमलेश और प्रिया, इनका जो मैसेज है ये भी आया है.
1: जय श्री कृष्णा, इट्स डेनियल, इन्होंने लिखा है. थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा टू यू एज वेल. राम राम, सीता राम, विजय जी, पूजा जी, हैप्पी फ्राइडे. शुभ प्रभात आपके सभी लिसनर्स को. आज का दिन सबको मंगलमय और शुभ हो. जय माता दी. जया जी की ओर से ये मैसेज सुबह सुबह आया है. और फाइनली गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, विनीता ने अपना मैसेज जो है ये भेजा है.
0: ओके, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए जो आपने हमारे पास भेजे हैं. और आज की ये सुबह आप सभी को आरी को बार शुभ और मुबारक हो.
1: फिलहाल बिफोर वी मूव ऑन, आपको पता है कि अभी कुछ दिनों से आपके लिए हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस वगैरह जो है ये लेकर आते हैं एज फार एज डिफरेंट मूवीज आर कंसर्न्ड या फिर फॉर यू टू गेस द नेम ऑफ डिफरेंट मूवीज आर कंसर्न्ड. तो आज भी ऐसी एक फिल्म आपके लिए हम लेकर आए हैं एंड आपको अनुमान लगाना होगा. सेम वे यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन. एक्टर बताएंगे और एक्टर ने किस प्रोफेशन में वो कैरेक्टर प्ले किया था वो बताएंगे और आपको सही जवाब गेस करते हुए फिल्म का नाम बताना होगा. तो कल हमने किया था ना, शाहरुख खान इज टू अ गाइड एंड द करेक्ट आंसर वाज जब हैरी मेट सेजल. आज है ऋतिक रोशन एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर.
0: ओके,
1: ये फिल्म बहुत पॉपुलर है पर क्या किसी को याद है कि वो है कौन सी फिल्म जिसमें ऋतिक रोशन ने एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर जो किरदार है ये प्ले किया था. लेट्स सी इफ यू नो द आंसर. All you need to do is, हमारे पास आपको अपना आंसर जो है ये टेक्स्ट करना होगा. BF लिखे सबसे पहले, फिर उसके बाद में अपना जवाब, अपना नाम और 5599 पर हमारे पास आप इसे सेंड कर दीजिए।
0: तो ऋतिक रोशन एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर किस फिल्म के बारे में हम बातें कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कारम विजय पूजा एंड ऑल स्टाफ एंड लिसनर्स ऑफ हम, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन। रवनेश मुदलियार की ओर से मैसेज आया है। रवनेश, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए। आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। तो अब अपने जो जवाब हैं ये भेजे सुबह सुबह, इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग, थोड़ा चिल, कि किस फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का किरदार जो है ये निभाया था। बी एफ आंसर और नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।

0: with Wijay and Pooja.
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
5: Love that chicken from Popeyes.
6: A bit of cloud, but still a mainly fine day, a high of 15 degrees. Coming into the city, we're looking mostly fine everywhere. Southwestern motorway, we had a crash southbound around Dominion Road. It has been cleared, but it is a slow and heavy through that area. Southern motorway, 22 minutes Manukau to town, just a bit slow at Manurewa, otherwise fine. Northwestern, slow from St. Luke's, heavy at Grey Lynn, 22 minutes in from Massey is quick. And the Northern, fast the whole way in.
5: Three crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeye's Chicken this week.
7: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM Havel. Havel का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
0: Global phenomenon returns.
8: You are the queen of dragons. You have absolute power within your grasp.
9: I'm going to kill my brother or die in the attempt.
0: Watch the series the world will be talking about.
10: There will be no doubt who the gods have chosen to rule.
8: This is the moment you become queen.
0: HBO original House of the Dragons. Stream now only on HBO Max.
11: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
12: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
0: The Breakfast Show with Wijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Throwback.
14: 13 minute reh gaye hain abhi 7 bajne mein on The Breakfast Show with Wijay and Pooja. And... सबसे पहले सवाल जो आपने पूछा है उसकी ओर अगर नज़र करें तो गिने चिने लोगों को ही शायद याद है कि किस फिल्म में ऋतिक रोशन ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल प्ले किया था।
15: आई थॉट इट वॉज सो ईजी कि बहुत से लोग अपने आंसर्स जो है कि हमारे पास भेजेंगे क्योंकि फिल्म बहुत पॉपुलर है और आई जस्ट डोंट रिमेम्बर किस साल में रिलीज हुई थी बट समवट अराउंड 17 से पहले या उसके अराउंड ही रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से, पर आज भी इस फिल्म के बारे में बहुत से लोग जो है ये बातें करते हैं, इसे पसंद करते हैं। 2011 में आई थी, तो 2011 में रिलीज हुई फिल्म आज भी अगर लोग याद रख रहे हैं कुछ तो खास बात होगी। बट द मूवी इटसेल्फ, इसमें जो कैरेक्टर्स थे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे और आपको हमने बस दो ही चीज़ें बताई, ऋतिक रोशन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकर का किरदार प्ले किया था। तो इसके बेसिस पर आपको अनुमान लगाना है कि आज हम किस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। शेल्विन, सबसे पहले आज आपने अपना जवाब दिया, इसके अलावा शिवानी है, रोनल्ड है और साथ में डेनियल। थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए। बट इतना इजी, इतना आसान सा क्वेश्चन और अभी तक कोई और नहीं है जिसने सही जवाब दिया, इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू मी। आई डोंट नो बट लेट्स सी, थोड़ा सा टाइम और है, देखेंगे कि अगर कोई और फिगर आउट कर पाता है कि ये कौन सी फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल जो है ये निभाया था।
14: तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेज सकते हैं। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, स्टडी का जो रिजल्ट है ये साइकोलॉजिकल साइंस के एक जर्नल में पब्लिश की गई थी, जहां पर ट्रैक किया गया था कि हाउ ऑफन मैन और वुमेन जो है ये अपोलोजाइज करते हैं। 12 दिनों के एक एक एक टाइम जो है ये सेट किया गया था, और इन 12 डेज में कितने बार मैन एंड वुमेन डू अपोलोजाइज, और उसमें ये बात सामने आई कि वुमेन डिड अपोलोजाइज मोर, लेकिन एक ट्विस्ट भी इसमें सामने आया है, दे ऑल्सो रिपोर्टेड कमिटिंग मोर ऑफेंसेस।
15: Oh, okay.
14: It was not about guilt at all. It was about the bar. Women counted a lot more everyday moments. You know, 5 minutes agar deri ho jaye, kisi se madad mangni ho, taking up space. In sabhi cheezon ko they saw as apology worthy. Lekin men jo hain, unka jo threshold hai for what counted, even counted as an offense was much higher. और उसके बाद चलकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत स्पेशल रिपोर्ट जो है ये पब्लिश की, और उसमें ये कहा गया है कि देर इज़ अ वेरी क्वाइट अनस्पोकन प्रेशर ऑन गर्ल्स टू बी केयरिंग, कॉम्पेटिटिव एंड एफर्टलेसली लाइकेबल, यानी कि आप केयरिंग हो, आप कॉम्पेटिटिव हो और लोग आपको पसंद करें, ऑल एट द सेम टाइम, ऑल विदाउट ट्राइंग टू हार्ड। रिसर्च में पाया गया कि व्हेन इट्स इम्पॉसिबल टू बी ऑल थ्री एट वंस, ज्यादातर महिलाएं जो हैं एक्सपेक्टेशंस को ब्लेम नहीं करती, वो खुद को ब्लेम कर लेती हैं।
15: ओके,
14: द सेल्फ ब्लेम डजंट डिसअपीयर विद एज, इट जस्ट शोज अप लेटर, और हाउ डज इट शो अप, इट शोज अप एज अ सॉरी, वो
15: दैट्स हाउ इसके साथ डील किया जाता है।
14: हाँ, और आप बहुत हाईली अग्रीबल होते हैं, अग्रेबल होते हैं, और ऑनेस्टली ये कहा जाता है कि ये आपका एक स्ट्रेंथ है, पर्टिकुलरली अबाउट वीमन। अ लॉट ऑफ वीमन जो कॉन्सिस्टेंटली या कॉन्स्टेंटली सॉरी कहते रहते हैं, ये इनके बारे में कहा जाता है कि हालांकि किसी को दिखता नहीं, बट दे आर परफेक्शनिस्ट हाइडिंग इन प्लेन साइट। वो सॉरी जो है ये कहती हैं फॉर द मिस्टेक, सॉरी फॉर आस्किंग, सॉरी फॉर सिंपली टेकिंग अप अ बिट ऑफ स्पेस, बिट ऑफ स्पेस इन द कन्वर्सेशन। रिसर्च जो है इसे जोड़ता है टू अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड एज डिफिकल्ट, कि हाँ डिफिकल्ट। उसके अलावा और भी कई चीज़ें जो हैं इस रिजल्ट में सामने आई हैं, जैसे कि बार बार अपोलोजाइज करना इज ऑफन लिंक टू द नीड फॉर आउटसाइड वैलिडेशन, और ये क्वाइट फीलिंग होती है कि लोग आपको पसंद करें, हर कोई कमरे में आपको लाइक करे, और जो मेंटल हेल्थ रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पैटर्न को पॉइंट आउट किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो शायद रिसर्चर्स ने इसमें पाई है, दैट वीमन ड्रॉप द सॉफ्ट ओवर द टॉप अपोलॉजी। और ये स्टडी जो है उसमें ये बात सामने आई है कि जो महिलाएं अपोलोजाइज करती हैं यूजिंग कॉन्फिडेंट असर्टिव लैंग्वेज, वे रेटेड एज मोर कॉम्पिटेंट। और साथ ही में ये महिलाएं शायद रियलाइज नहीं करती हैं कि जितना उनको एहसास है उससे ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है।
15: वेरी इंटरेस्टिंग। तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में शायद आपको ऐसे यू नो पता ना हो, लेकिन इफ़ यू ट्राई एंड एनालाइज इट देन यू गेट मोर डिटेल्स अबाउट इट। और कुछ चीज़ें जो आपके हित में होती है, कुछ चीज़ें जिस पर आप काम करो तो वो आपको और भी अच्छा बना देती है, पर ज़रूरी ये है कि उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनके बारे में समझा जाए। इधर चलिए और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए ज़रूर हम लेकर आएंगे। फिलहाल आप से हमने जो सवाल पूछा, ऋतिक रोशन एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, कौन सी फिल्म ये हो सकती है, तो आई जस्ट सीन कि बहुत से लोग हमारे पास मुझसे दोस्ती करोगे ये लिखकर भेज रहे हैं। मनीषा आपका ये जवाब आया है, सत्यमेश्वेता है, राहुल आपने भी मुझसे दोस्ती करोगे लिखा है, विजय है, और इसके अलावा अजेशनी आपने भी यही मैसेज भेजा है, प्लस राज मुझसे दोस्ती करोगे आपने भी लिखा है। अनफॉर्चुनेटली ये गलत है। ऋतिक रोशन इज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, क्लू के तौर पर हमने आपको बताया 2011 में ये फिल्म आई। एक और एक क्लू दें, दोस्ती पर इस फिल्म के बारे में काफी बातें होती है।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, lekin aap dono ki jodi badi cute hai.
2: Accurate traffic.
3: Switch to AMI car insurance.
4: A fine day, but plenty of cloud today as well, a high of 15 degrees. No major issues going on at the moment. We had a crash southbound on the southwestern at Dominion earlier. It's been clear, just a bit slow there, and a little slow northbound through Whitty as well. Southern 24 minutes in from Mataco, slow at Manurewa and Papatoetoe. Northwestern 24 minutes, Massey to town, slow from Point Chef, heavy at St. Luke's. Northern 19 from Constellation, pretty quick.
3: AMI roadside rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
5: Professional by Ninjas hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
5: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
6: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
7: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, jahan aapke bacche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hai.
8: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: To jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To deer mat kijiye. Call 0800-46-26-26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
10: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce. Like our New Zealand grown The Odd Bunch apples, 2kg, a fresh deal at just $4 a pack. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
11: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
12: Freedom's Absolutely Everything on sale has been extended. Last chance to save up to 60% off absolutely everything. Plus, enjoy free delivery. Hurry. Sale ends Sunday only at Freedom.
0: Time check.
13: Good morning, is it 7 baj rahe hain.
0: By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 7. ACT is promising specially trained security professionals to keep businesses and shared spaces safe. The licence holders would be able to issue exclusion notices and remove people who threaten safety, cause damage or breach a venue's conditions of entry. And they could use reasonable and proportionate force as a last resort until the person complies or police arrive. The government's looking to toughen up rules around children's play sand. An AUT study found asbestos fibres can be expelled into the air from recalled samples. Minister Cameron Brewer says it's unacceptable and something is being done.
15: And so we are doing everything we can. We've pulled out all the stops. We're seeking urgent advice.
14: The PPTA is concerned at the results of a secondary school's staffing survey. It found there are no suitable applicants, or only one, for 60% of classroom teaching and leadership roles. Ukraine's president claims Moscow was losing the war amid rubble from a huge Russian strike. At least 20 people are dead and 90 are injured. Volodymyr Zelensky told CBS News it needs to stop.
16: That's why we're asking our partners more pressure on Putin. Stop this war, because he is not winning, because he is losing. At the end of the days, he will lose everything.
14: In sport, to rugby with Shift 4, All Blacks coach Dave Rennie's explained why Damien McKenzie and Will Jordan will both start against France in Christchurch tomorrow.
17: Two of the best fullbacks in the world, both on the field at the same time.
14: Jordan's on the wing and D-Max at fullback. And FIFA World Cup round of 32 action continues. Spain are just kicking off against Austria in Los Angeles.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: 4 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं आज का हाई 15 ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज आप फील करेंगे सुबह के वक्त कुछ फॉग या फ्रॉस्टी कंडीशंस अदरवाइज आज मौसम साफ रहेगा सनराइज 7:34 एएम पर और सनसेट शाम 5:17 पर आज होगा
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Mungo. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Morning Madness आपके लिए हम द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम शुरू करने जा रहे हैं और अभी फिलहाल अगर समय की ओर देखें तो 3 मिनट हो रहे हैं 7:07. गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम थैंक बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. सुबह सुबह हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आज तो दोनों की तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए वी अपोलोजाइज जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बिकॉज गले में भी थोड़ी खराश है, पेन हो रहा है. बट आई मीन इट्स नॉट दैट बैड कि हम नहीं कर पा रहे, बट हमें पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे अंदाज़ा लग रहा होगा ना कि आज इन दोनों को क्या हो गया. बट नेवरदलेस वी आर हियर आपके साथ अभी से लेकर ठीक दिन में 10 बजे तक हम बने रहेंगे. और ये प्रोग्राम आपके लिए हम जबकि लेकर आ रही हैं आज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा का, तो इस घंटे सबसे पहले आपको हम ये याद दिला दें कि आपके लिए जबकि हम राशि वाइब्स ये लेकर आएंगे, आज का आपका दिन कैसा बीतेगा आपके हॉरोस्कोप्स के अनुसार ये आपको बताएंगे बस थोड़ी देर में.
13: और आगे बढ़ने से पहले हरदीप, आपका जो गुड मॉर्निंग मैसेज आया था पिछले घंटे, थैंक यू. और सवाल का जवाब भी आपने दिया था, तो सवाल और जवाब वो देख लेते हैं.
2: बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि ऋतिक रोशन एज इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये कौन सी फिल्म हो सकती है, अनुमान आपको लगाना है. बस गिने चुने लोगों का सही जवाब आया है, कोशिश तो की गई है लेकिन उतने सारे करेक्ट आंसर्स नहीं आए हैं जितने कि इनकरेक्ट आंसर्स आए हैं. विधि ने अपना आंसर भेजा है, साथ में नितिका है और इसके अलावा नीलेशनी, थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए.
13: अच्छा नीलेशनी, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ नीलेशनी का आंसर कहाँ है.
2: नीलेशनी के बाद हरदीप का मैसेज आया था, उसके साथ अब नील, थैंक यू आपके मैसेज के लिए. शालिनी है और सोम ने भी अपना जो जवाब है ये भेजा है, थैंक यू सो मच आपके भी आंसर के लिए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी ऋतिक रोशन एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर, द आंसर इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. 2011 में ये फिल्म आई थी जैसे कि मैंने कहा था, और साथ में दोस्ती के मामले में ये फिल्म के बारे में काफ़ी मेंशन किया जाता है. सो अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी है, यू नो इफ नहीं देखी है तो कभी मौका लगे देखिएगा ज़रूर, अच्छी फिल्म है, आप जरूर पसंद करेंगे.
13: तो अगर चाहे तो आप इस वीकेंड पर ही देख सकते हैं. वैसे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत सेकंड सेमीफाइनल जो है ये खेला जा रहा है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी थ्रू टू द फाइनल्स, जो मंडे की सुबह खेला जाना है. और दूसरा सेमीफाइनल, इंग्लैंड हैज जस्ट कंप्लीटेड बैटिंग, अपने इनिंग्स में 5 खिलाड़ी खोकर 169 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने. अब थोड़ी देर बाद साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग करेगी एंड वी विल सी कि क्या 170 का टारगेट जो है ये साउथ अफ्रीकन टीम अचीव करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल्स में अपनी जगह बना पाती है या नहीं. साथ ही में फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस भी शुरू हो रहे हैं इसी घंटे से, अपडेट्स और भी आपके लिए हम लेकर आएंगे इसी घंटे. अ वेरी हैप्पी बर्थडे आपको विश करेंगे, मैसेजेस नहीं भेजे हैं, यू स्टिल गॉट सम टाइम, 5599 पर अपने मैसेजेस जो है आप चाहें तो हमें भेज सकते हैं.

0: सकता है, किसी बड़ी प्रॉब्लम का इजीली सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। समय अच्छा है लेकिन हेल्थ आज थोड़ा कमजोर रहेगा, अपनी वैल्यूबल चीजें भी आज आपको संभाल कर रखनी पड़ेंगी। उसके बाद वृष यानी टॉरस,
1: आज आपके लिए वैसे बताया जा रहा है कि परिवार में किसी व्यक्ति के हेल्थ पर आपको थोड़े पैसे वगैरह खर्च करने पड़ सकते हैं। बिजनेस है अगर आपका तो अच्छा चलेगा, और आज चिंता और तनाव जो है ये आपको थोड़ा परेशान करेंगी। जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें, अदरवाइज नुकसान होगा, और विवाद यानी आर्ग्यूमेंट्स जो है ये भी आज इस वजह से हो सकते हैं।
0: मिथुन यानी जेमिनी, इनकम बढ़ेगा, फायदा बढ़ेगा, आज बिजनेस बढ़िया चलेगा, ऑफिस में इन्फ्लुएंस आपका अच्छा रहेगा, रुका हुआ पैसा आपको आज मिल सकता है। तो देखिए, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग सेड अबाउट फाइनेंसेस, कि फाइनेंशियली आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा।
1: कर्क ने कैंसर आपके लिए कहा गया है, फाइनेंशियली आप प्रोग्रेस करने के लिए लाइफ में थोड़े काम कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो अच्छा है और ये आपके हित में भी काम करेगा। बिजनेस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, काम करते हैं जिस तरह से उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव जो है ये जरूर आप नोटिस करेंगे और ये आपके फायदे में होंगे। नए एक्सपीरियंसेस आपको कुछ नई सीख भी देंगे, भविष्य में चलकर काफी काम आएगा आपके।
0: सिंह यानी लियो, ऑफिस में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, पार्टनर्स का काफी सपोर्ट रहेगा, कुछ चीजों को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना चाहिए, और आज किसी रिलीजियस इवेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो अच्छी तरह से जो प्रोज एंड कॉन्स है उसको आप इवेलुएट करके ही अपना फैसला लें।
1: और इसके बाद आज देखा जाए तो बताया जा रहा है कन्या यानी कि वर्गो के लिए, आज बनते कामों में एक विघ्न यानी कि रुकावट आ सकती है, पर इसकी वजह से जो चिंता होगी, जो परेशानी होगी आपको, ये समय के साथ कम हो जाएगी। आपको बस अपना काम करते रहना है, विश्वास बनाए रखना है, बेकार की बातों में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ऐसा आज आपके लिए बताया गया है। फालतू खर्च होने के काफी चांसेस हैं और इसकी वजह से फाइनेंशियली आप का जो भी सिचुएशन है थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए बी पेशेंट और समय के साथ साथ ये भी सही हो जाएगा।
0: तुला यानी लिब्रा, प्यार मोहब्बत के मामले में जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी, आज दिन बढ़िया रहेगा, और आज दूसरी तरफ मेंटली थोड़ा आप अनसेटल्ड फील करेंगे, कुछ रेस्टलेस फील करेंगे, लेकिन सक्सेस आज आपको सभी तरफ से मिलेगा। ऐशो आराम की चीजों पर कुछ ज्यादा ही पैसे आज आप अनजाने में स्पेंड कर सकते हैं।
1: ऋषिक ने कि स्कॉर्पियो आपके लिए कहा गया है कि बहुत बड़ा फायदा आपके हाथ लग सकता है, स्पेशली प्रॉपर्टी के मामले में, अगर जो भी प्लान जिस पर आप काम कर रहे हैं जिस तरह से, इस पर उसी तरह से मेहनत आप करते रहेंगे तो प्रोग्रेस आप जीवन में जरूर देखेंगे। दूर से काम मतलब दूर से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको साथ दे रहे हैं, बेसिकली चाहे वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहा है, तो इन लोगों को आप अपने करीब रखिए और इनसे सलाह मशवरा करते हुए ही अपने कामों को अंजाम दीजिए।
0: धनु यानी सेजिटेरियस, आज क्रिएटिव कामों में सक्सेस हासिल करेंगे, दोस्तों के साथ एंटरटेनिंग टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिलेगा, ऑफिस में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, और ख्याल रखें कि कोई रिस्क आज आप ना ही ले तो अच्छा रहेगा, दौड़ धूप आज आपको कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी।
1: और उसके बाद मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आज मेहनत अधिक होगी जिसका फायदा शायद उसके मिलान में कम हो, मानसिक बेचैनी थोड़ी रहेगी यानी मेंटली आप थोड़ा अनसेटल फील करेंगे, ऐसा थोड़ा बेचैन फील करेंगे। बिजनेस अगर आपका तो अच्छा चलेगा, फायदा आपके हाथ लगेगा इस मामले में।
0: और कुंभ यानी एक्वेरियस, आज इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है, किस्मत का पूरा साथ रहेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हाथ लगेंगी, मेहनत का पूरा फल मिलेगा, काम जो आप करेंगे उसकी वजह से आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, और साथ ही में दोस्तों को हेल्प आउट करने का टाइम जो है ये भी आपको मिलेगा।
1: और आखिर में मीन यानी पाइसेस, आज आपके लिए बताया गया है कि एक्साइटमेंट बहुत है आज आपकी लाइफ में, इनफैक्ट कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी जो आपको बहुत ज्यादा खुश करेंगी, आत्मसम्मान बना रहेगा, और साथ में आप जो भी काम कर रहे हैं आप बड़ा सोच समझ कर रहे हैं, समय के साथ कर रहे हैं, इट्स अ गुड वे ऑफ गेटिंग इट डन, इसी तरह से मेहनत करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। सो ये थे आज के आपकी राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा, बढ़िया और कमाल का गुजरे, और इसी उम्मीद के साथ साथ थोड़ी देर बाद ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा, जबकि आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस हम लेकर आ रहे हैं, लेकर आएंगे आपके लिए आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papio. Chubo jao.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना।
2: और गानों में

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Irvine, sirf Rova par.
1: Are you ready for some extra money? If you've got a power account and live in Central, East or South Auckland, the Entrust dividend may be coming your way. Look out for information from Entrust in your letterbox or email inbox. Check your payment details are correct and let us know of any changes as soon as possible. If we don't have the right info, it might take longer to get your dividend in late September. Everything you need to know is at entrustnz.co.nz.
2: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटन मेगा बॉटनी में फ्री किड्स एक्टिविटीज क्लासिक सॉसेज सिजल लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज प्लस फोर टाइम्स एयर पॉइंट्स टू वाई टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटन मेगा बॉटनी.
3: Get the kids creating these school holidays with awesome arts and crafts deals at Warehouse Stationery. Like 25% off Crayola, 20% off Elmer's slime kits and glue, plus loads more deals at Warehouse Stationery. Conditions apply.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं.
6: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
7: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
8: TradeDepot.co.nz. The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: Celebrity Alarm. Hit it.
10: बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हमारा सेलिब्रिटी अलार्म. कम से कम आई डेफिनेटली एंजॉय दिस सेगमेंट.
11: आई एब्सोल्युटली एंजॉय दिस सेगमेंट, और स्पेशली जब यू नो कुछ डिफिकल्टी हो तो ज्यादा मजा आता है. बट अभी कल मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था. द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि अ लॉट ऑफ द लिसनर्स कुड गेट इट राइट कि अच्छा ये किसकी आवाज है. सो द फैक्ट कि इवन अब सभी के सभी इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं और अलर्ट होकर यू नो सेलिब्रिटी अलार्म में वॉइसेस जो है ये सुनते हैं, उसे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा लगता है ना कंपटीशन करते हुए भी.
10: तो आज मेरे ख्याल से बहुत ही इजी होगा. टुडे इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. फ्राइडे है ना, तो सुन ले पहले आवाज आप.
12: Till I am X silence, HIV, ha! MRF, ma! YES, no! DOGGY, daga! H2O, ha! POC, please!
13: SKTD, yes, sketch!
12: DDLJ, Diwali! VSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
11: थिंक अगर आज इसके बारे में कुछ ना ही बोले तो अच्छा है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि ये किसकी आवाज़ है, लेकिन ये जो डायलॉग्स आपने सुना, ये इटसेल्फ इज सो पॉपुलर दैट इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर पीपल टू रियलाइज ओ टू आंसर कि ये किसकी आवाज़ हो सकती है. आई थिंक
10: तो सुन ले एक बार फिर अच्छी तरह से.
12: MRF ma YES no DOGGY daga H2O ha POC please
13: SKTD yes sketch
12: DDLJ Diwali.
10: तो अब 5599 पर हमें टेक्स्ट करके बताएं कि आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन हैं.
11: आप अपना अपना जवाब जो है अपने नाम के साथ जरूर लिखिएगा प्लीज, इट विल हेल्प अस आइडेंटिफाई यू. और इतना इजी है ये, इतना आसान है ये, तो आज ज्यादा इसके बारे में बातें नहीं करते, बस आपको समय देते हैं. तो फटाफट आप हमारे पास अपने आंसर्स भेजिए 5599 पर, और आपके पास टू आंसर 5 मिनट्स का टाइम है.
8: Hollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
15: मैं लाऊं अपना ए गेम.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑकलैंड के नॉर्थ वेस्ट में स्थित रिवरहेड के रिज रोड पर पुलिस ने कल सुबह एक रेड मारकर एक सस्पेक्टेड मेथ लैब को का भंडाफोड़ किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मौके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लास्क और कंडेंसर जैसे मेथ बनाने के भारी इक्विपमेंट मिले हैं और इस ऑपरेशन में हेल्स एंजल मोटरसाइकिल क्लब से जुड़े लोगों को टारगेट किया गया था। घर से 55 वर्षीय एक आदमी और 30 साल की एक महिला को बिना किसी रुकावट के कस्टडी में लिया गया है, जिन्हें आज वैताकरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा। नए डाटा के मुताबिक लोग फ्लड रिस्क वाले घरों से बचने के बजाय सस्ते यानी डिस्काउंटेड दाम पर उन्हें तेजी से खरीद रहे हैं, जिससे फ्लड जोन्स के प्रॉपर्टीज की वैल्यू अनएफेक्टेड एरियाज के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। कोटलिटी के डाटा हेड क्रेग डाकश ने इस पर चिंता जताई है कि कम बजट वाले लोग अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में बड़े रिस्क से समझौता कर रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत फिलहाल राउंड ऑफ 32 का मैच स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और दोनों टीमें अभी निल ओल से बराबर है। आज दिन में 11 बजे पोर्चुगल क्रोएशिया से खेलेगा और आज का आखिरी मैच स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया के बीच खेला जाएगा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा सेमीफाइनल फिलहाल खेला जा रहा है। अपने इनिंग्स में इंग्लैंड ने 5 खिलाड़ी खोकर 169 रन्स बनाए और अभी 3.1 ओवर्स के बाद साउथ अफ्रीका 21 रन पर है। यह मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को 149 रन की अभी भी जरूरत है। नेशंस चैंपियनशिप रग्बी जो है ये कल से शुरू होने जा रही है। कल रात 7 बजे ऑल ब्लैक्स फ्रांस का क्राइस्टचर्च में मुकाबला करेगा। 8:40 PM पर जापान और इटली का मैच खेला जाएगा, जबकि कल रात 10 बजे आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। रविवार के सुबह 1 बजे फिजी और वेल्स का मैच खेला जाएगा। 3:40 AM पर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड और रविवार की सुबह 7 बजे अर्जेंटीना और स्कॉटलैंड का मैच खेला जाएगा। इन सभी मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleHomes.co.nz. Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, dekho maa gaye.
0: Accurate traffic.
3: Go dry this July.
4: A cool start, mainly fine today. A bit of cloud, a high of 15 degrees. Southwestern motorway, we had a crash earlier at Dominion Road, which has been sorted, but a new one southbound after Hillsborough. It is blocking the right lane, a bit slow through that area. Southern motorway, pretty good coming in, 24 minutes from Manukau, just slow Manurewa to Papatoetoe. Northwestern, slow from Point Chef, heavy at St. Luke's, but still pretty quick in Northern flying in.
3: It's not too late to go dry for cancer support. Search Dry July to register.
5: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमचे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, राइड्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
6: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
7: And who Tejal Vyas?
6: Ame avi rahya chhe amaru navu nakkor super hit comedy natak Gujubai ni
7: exchange offer.
0: Friday 3rd July Victory Convention Center par Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu navu natak Gujubai ni exchange offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa taiyar thai jao. Tickets jaldi book kari lejo. Phone karo 021-244-6278 par.
8: Don't miss the final week of Shop and Scan to Win at Woolworths. Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
9: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
10: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
11: Playing Bollywood's biggest hits.
12: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
12: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
1: आज 3rd of July है, आपका बर्थडे है, दिन मुबारक हो आपको अनेकों बार. दिनेश शाह पाकुरंग में आज आप अपना जन्मदिन मना रहे हैं. खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये खास दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
16: Wanna wish my mom Anuradha happy birthday. May God bless you. Lots of love and hugs from son Vivan. Beti hai Myra aur aapke husband hai Lalin. You're the best mom. Aisa aapke liye bahut hi pyara sa message hai Anuradha. Hamari aur se bhi aapko janmdin bahut bahut baar mubarak ho. Happy birthday. Many many happy returns of the day to you.
1: और इनके साथ आज अविनेश कुमार आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. पत्नी हैं आपकी और जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम कहना चाहेंगे. इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं हम आपको दे रहे हैं. और साथ ही में आज आराधे राधे बॉयज न्यूजीलैंड के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलीग्स हैं, सभी की ओर से ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
12: मॉर्निंग मैडनेस.
1: मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए जारी है. अभी 23 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. और अभी देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेलिब्रिटी अलार्म है उसका क्या हुआ.
16: वैसे लविका चौहान माउंट हिडन से ये सबसे पहली थी आज जवाब देने में और आवाज़ जो है ये पहचानने में. इसके अलावा मोविन का आंसर आया है. बिकाश ने अपना आंसर भेजा है. साथ में बॉबी ने जवाब भेजा है. सोम का मैसेज आया है. किसी ने मैसेज किया है, नाम नहीं लिखा है. शबनम थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. कविता है, प्रियम है, शैलेंद्र आपका भी मैसेज में मिल चुका है. एश वेलिंगटन से गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एज वेल. कस्तूरी जी है, इनका जवाब भी आया. और साथ ही हेमंत रविंद्रा, इन्होंने भी अपने आंसर्स हमें भेजे हैं. तो आज कमाल यही हुआ जो हमें एक्सपेक्टेड था इनफैक्ट कि आज सभी सही सही ही गेस करेंगे. बिकॉज बहुत पॉपुलर डायलॉग्स थे जो आपने सुनाए और साथ ही साथ बहुत ही जाने माने शख्स भी है ना ये.
1: एग्जैक्टली इन्होंने अपना एक बहुत ही नीश, अपनी एक अलग जगह जो है ये इंडस्ट्री में बनाई है, एंटरटेनमेंट की दुनिया में. और उतना शायद उतना बड़ा रोल भी इनको नहीं मिला, बट डिस्पाइट दैट जो कुछ भी इन्होंने किया है इट हैज़ रियली स्टूड आउट.
16: यस एब्सोल्युटली. रोल्स चाहे बड़े ना किए हों लेकिन कैरेक्टर के साथ साथ नाम ये बॉलीवुड में काफ़ी बड़े जो ये बन चुके हैं. तो आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में हमारे सेलिब्रिटी थे आज के संजय मिश्रा. और जितने लोगों ने अपने आंसर्स भेजे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल चलिए स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इस गाने का मजा लेते हैं और इसके बाद अराउंड थ्रोबैक आज आपके साथ हम शेयर करेंगे उबा का बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉस्ट एंड फाउंड लिस्ट. अपना एनुअल लिस्ट इन्होंने जो है ये रिलीज किया है एंड इसके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वियर्ड है, बिजार है, लेकिन फिर भी ये आइटम्स जो है लोगों ने उबर राइड्स के दौरान छोड़े हुए हैं जिसके बाद चलकर इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ दिस लिस्ट. तो ये बस थोड़ी देर बाद आपके लिए रहेगा.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum, accurate traffic.
2: Spend the holidays at Mission Bay, the promenade.
3: A chilly start, high of 15, mainly fine today. Southwestern motorway southbound, a crash was blocking the right lane after Hillsborough. It's been cleared, but a bit of congestion there. Southern, 26 minutes, Manukau to town, slow at Manurewa and Otahuhu to Mount Wellington. Northwestern, 28 in from Massey, Finder Point, Chev, heavy there to Grey Lynn and slow to the city. Northern, 21 from Constellation, slow patches, but pretty fast.
2: New arrivals, familiar favourites and iconic waterfront location, Mission Bay, the promenade.
4: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
5: क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टप से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
7: Throwback.
9: फिलहाल अब 12 मिनट रह गए हैं 8 बजे में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आपने कहा था कौन कौन सी चीजें लोग उबर में भूले हैं.
10: बिल्कुल, तो इस साल उबर ने अपना जो लॉस्ट एंड फाउंड लिस्ट ये रिलीज किया है, रिवीलिंग द क्लासिक वियर्ड एंड स्ट्रेट अप कंफ्यूजिंग थिंग्स जो केवीज अपनी उबर राइड्स के दौरान जो ये भूल चुके हैं. एंड ऐसी कुछ चीज़ें जिसे देखकर मैं भी थोड़ा हैरान हो गई. मतलब आई थॉट दैट यू नो वॉलेट्स एंड फोन्स या फिर कैप वगैरह जो है, कुछ शॉपिंग का आइटम जो है, ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें थी दैट पीपल वुड फॉरगेट. बट देर आर सम रियल इंटरेस्टिंग थिंग्स जो सामने आए हैं. कहा गया है कि आप अगर इस लिस्ट पर थोड़ा ध्यान फरमाएंगे तो ऑल ब्लैक्स की जर्सी ये किसी ने छोड़ दी, गेमिंग कंसोल, गोल्फ क्लब्स, टेंट, एप्रन, रग, ड्रोन, स्कूटर, बाइक, गोप्रो, नंबर प्लेट, वैक्यूम क्लीनर, चिली बीन्स, अनफिनिश्ड बर्गर्स और साथ में प्लांट, पूल क्यूज, फॉल्स टीथ, ये सारी चीज़ें जो है इस लिस्ट का हिस्सा है. और दिस इज समथिंग लाइक जो अगर आप यू नो पढ़ो तो ऐसा लगता है कि इज इट लाइक लोग, चलो मैं मान सकती हूँ कि कोई शायद यू नो बर्गर खा रहा था, जानबूझकर शायद रख के गया हो या भूल गया हो, छोटा सा आइटम है और उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना, उतने पैसे भी नहीं लगते हैं इसमें, कि वो भूल गए. कोई अपना ऑल ब्लैक्स की जर्सी कैसे भूल सकता है इफ इट्स अ जेन्युइन वन. गोल्फ क्लब कितना एक्सपेंसिव होता है, गेमिंग कंसोल कैसे कोई भूल सकता है, ड्रोन, स्कूटर, बाइक, गोप्रो, ये सारी चीजें कैसे कोई भूल सकता है.
9: पता नहीं कैसे भूल सकता है, लेकिन भूल जाते हैं. भूलने को तो लोग कुछ भी भूल जाते हैं.
10: आई मीन वो तो है कि भूलने को तो लोग भूल ही जाएंगे कुछ भी हो, बट आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर कोई इतना ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहा हो किसी चीज पर तो वो ऐसे ही तो इसे भूल नहीं सकता, उनके जहन में रहेगा ना कि अरे कहाँ है, लाइक सही है नहीं, अरे अभी गाड़ी से उतरना है, ये उठाना है, ये लेना है, वो चीज़ होती है माइंड में होता है, जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हों तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो लोग ऐसे आसानी से भूल नहीं पाते. बट नेवरदलेस दिस इज़ व्हाट हैज़ कम थ्रू दैट दीज आर सम ऑफ द थिंग्स द कीवीज़ हैव फॉरगॉटन इन उबर राइड्स दिस ईयर, जिसका लिस्ट जो है ये रिलीज किया गया था.
9: तो ना क्या आप कभी कुछ भूली हैं ऐसे?
10: आई डोंट नो, आई मीन आई डोंट, मैं यही भूल गई कि मैं क्या भूली हूँ. मुझे वही नहीं याद है, तो आई डोंट नो, अगर कुछ भूली भी हूँ आई हैव नो आइडिया, बट आई डोंट थिंक सो इतना कुछ एक्सपेंसिव कभी भूली हूँ जो रहता, अदरवाइज मेरे जहन में वो बात रहती है कि मैं ये भूल गई थी.
9: बाय द वे हाफ टाइम हो चुका है बिटवीन द मैच जो खेला जा रहा है स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच. अब हाफ टाइम पर स्पेन की जीत ऑस्ट्रिया के खिलाफ 1-0 से हो रही है. थोड़ी देर बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे और अगले घंटे आज इस वीक का हमारा फाइनल व्हाट्स योर टेक में भी आपको हिस्सा लेने का मौका जो है ये हम देंगे. आज इनाम जीतने के कुछ लाजवाब मौके हैं, ये भी होंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो, तो इनके लिए भी आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में रहना है. फिलहाल आई थिंक रानी मुखर्जी थी इस फिल्म में ना जिसका गाना जो है ये हम सुनाने जा रहे हैं आपको.
10: रानी मुखर्जी थी, साथ में बॉबी डियोल थे और उसके साथ साथ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन देयर वाज आशीष विद्यार्थी, इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट किरदार जो है ये प्ले किया था. एंड फॉर अ फ्यू लाइक फ्यू मिनट्स और यू वुड से कि ब्रीफ टाइम के लिए मलाइका अरोरा भी थी इसमें.
9: अच्छा.
10: आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेम्बर कि मलाइका अरोरा ने क्या किरदार प्ले किया था, बट द लीड्स वर बीइंग प्लेड बाय बॉबी डियोल एंड रानी मुखर्जी.
9: तो एंजॉय करें उनका ये गाना आज हमारे अगले थ्रोबैक में. इसके बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे.

0: accurate traffic.
1: Love that chicken from Popeyes.
2: 15 hour high, a cool morning, but should be mainly fine today. Southwestern, a crash southbound after Hillsborough has been cleared, but we're a little slow in that area. Southern Motorway, 26 minutes Manukau to town, slow at Manurewa and Otahuhu to Mount Wellington. Northwestern, 28 in from Massey, heavy from Point Chef to Grey Lynn, then slow to the city. Northern, 21 from Constellation, just patchy there to the city.
1: Three crispy drumsticks and regular fries for just $9.90 at Popeyes Chicken this week.
3: Get in the loop with ANZ to earn cash back. So when holiday mode strikes,
4: room service,
3: money loops back,
4: room service.
3: Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
5: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday, 4th of July. T's and C's apply.
6: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, noodles with friends on Karanga Hape Road in just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
7: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है वे सिटी GWM हैवल हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले लिमिटेड टाइम ऑफर टीज एंड सीज अप्लाई फॉर मोर इन्फो विजिट westcityautogroup.nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स
9: Good morning, इस समय ठीक 8 बज रहे हैं
10: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक
11: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 8. ACT is proposing a new tier of security professionals with powers to protect the public until police arrive. Leader David Seymour says it would involve a new licence with advanced training.
12: They can take the person out of the premises, they can search them and they can trespass them. They can also use reasonable force to restrain them for up to 30 minutes until the police arrive.
11: The government is seeking urgent advice after researchers found airborne asbestos fibres from Record Magic Sand products. Minister Cameron Brewer says the health risks are low, but it's being taken seriously.
13: I'm a parent of primary school age children, and so I know the seriousness of this issue.
11: There's been a surge in the number of EV vehicles being registered. Infometrics shows a 165% lift in the 3 months to June. Economist Brad Olson points to the Iran war.
14: Had a huge pitch up in the month of March, and again, that sort of continued through parts of April, May, and then another big jump coming through in June.
11: Nine Buddhist monks have been killed in Thailand after an 11-year-old driver crashed into them. They were walking along a road when the young boy lost control and crashed. He reportedly took his parents' pickup truck without permission. In sport, to rugby with shift four, All Blacks coach Dave Rennie's handed Ruben Love the coveted 10 jersey for the first test of the year against France in Christchurch tomorrow.
15: He's really confident, really clear. So he's a believer in the meetings, running things, has been impressive.
11: The 25-year-old got the nod ahead of Damien McKenzie, who's at fullback, and Bowden Barrett, who's not in the 23. And at the FIFA World Cup, Spain lead Austria 1-0 at halftime of their round of 32 match in Los Angeles.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari good brands nahi hai.
10: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: 3 degrees at temperature. Auckland may be a feel kar rahe hain, but it feels like 2. Aaj ka high 15, overnight kam se kam 8 degrees. Generally a fine day. Sunset sham 5:17 par aaj hoga.
10: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
0: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
9: ट्रेन पेट्रोल का वक्त अब हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जबकि 3 मिनट हो रहे हैं 8:00 और आज ट्रेन पेट्रोल में कुछ बातें जो है ये कर लेते हैं। अभी जो ट्रेंड कर रहा है वो है ऑकलैंड या फिर न्यूजीलैंड की ठंड। सभी और लोग बातें कर रहे हैं कि भाई कितनी ठंड पड़ रही है, कितनी ठंड पड़ रही है। तो अभी मैं हम आपको बताएं कि अलग अलग जगह पर टेम्परेचर्स जो है आप कैसा फील कर रहे हैं। ऑकलैंड में जैसे हमने आपको बताया, वी स्टार्टेड इट अराउंड 4.5 क्लोज टू 5 डिग्रीज, अभी 3 डिग्रीज टेम्परेचर है। इफ़ यू लिविंग इन हैमिल्टन माइनस टू पॉइंट वन डिग्रीज टेम्परेचर वहाँ आप फील कर रहे हैं। उसके अलावा इफ़ यू आर लिविंग इन कैम्ब्रिज, वहाँ भी -2 degrees टेम्परेचर जो है ये आप फील कर रहे हैं। एंड ऑकलैंड में अगर आप हैं राइट नाउ इन हुनवा 2 degrees टेम्परेचर हैं। अगर वाइताकरे एरिया में आप हैं 1.5 degrees टेम्परेचर वहाँ पर आप फील कर रहे हैं। अगर वेलिंगटन में हैं, लवाहट इज़ 11 डिग्री सरप्राइजिंगली अभी तक सबसे वार्म लवाहट जो है ये हमें मिला है। अपाहट में अगर आप हैं 10.7 डिग्रीज टेम्परेचर आप फील कर रहे हैं। माउंट कुक वहाँ पर भी वार्म, तो साउथ आइलैंड सीम्स टू बी अ लिटिल बिट वार्मर। आज माउंट कुक इज़ अराउंड 8 डिग्रीज राइट नाउ। और उसके अलावा अगर क्राइस्टचर्च सेंट्रल एरिया में आप हैं -1.3 डिग्रीज वहाँ पर आप फील कर रहे हैं। अलेक्जेंड्रा अराउंड 2 degrees टेम्परेचर आप फील कर रहे हैं। और डनीडन इज 6 डिग्रीज एट द मोमेंट, जहाँ पर आप काफ़ी ठंड फील कर रहे हैं। हवेरा तरनाकी में इट्स अराउंड 3 डिग्रीज एट द मोमेंट।
4: वेल द टेम्परेचर्स आर सेइंग इट एंड वी डेफिनेटली आर फीलिंग इट, इसीलिए ऐसे मौसम में ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इतनी ज़्यादा ठंडी है यार, उंगलियां दर्द करती है, पैरों में आप भले मोजे पहन के घूम रहे हो बट यू कैन स्टिल फील दैट अपने पैरों में, आई मीन मुझे ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आई थिंक मैंने इतने सारे विंटर्स यहाँ पे स्पेंड किए हैं बट इनिशियली जब व्हेन आई केम तो व्हेन आई माइग्रेटेड टू दिस कंट्री, तो जब मेरा पहला विंटर था जो मैं उस टाइम पे एक्सपीरियंस करी थी, बिकॉज मेरे लिए ये सर्दी का मौसम ही थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था। तो यू नो बीनी जैकेट्स एंड मोजे ये सारी चीज़ें ग्लव्स तक पहनती थी जस्ट टू कीप माई सेल्फ वॉर्म बिकॉज आई कुडंट बेयर द कोल्ड वेदर। इस साल मेरे को ना वही वाली फीलिंग आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जितना भी कोशिश कर रही हूँ देयर सम हाउ आई एम फीलिंग दैट कोल्ड वेदर एवरी सिंगल मॉर्निंग। ये बेसिकली एक चीज़ भी है ना कि कहते हैं कि जब सुबह इतनी सर्दी हो ठंडी हो तो बिस्तर से बाहर अपने कम्फर्ट से बाहर निकलने का मन नहीं करता। I am just thinking about the people who start early in the morning, like 2 a.m., 3 a.m. उनका क्या हाल होता होगा यार इस सर्दी में, like उनके बारे में सोच के तो सच में बहुत बुरा लगता है, because रात को इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, early morning it's quite bad, ना?
9: Yeah, Taupo area is also -2 degrees at the moment, और अगर आप अलग अलग इलाकों में हैं जो भी हैं यू नो अपना ख्याल रखें। सो क्वींसटाउन, अच्छा क्वींसटाउन के बारे में तो हमने बताया ही नहीं। क्वींसटाउन इज़ अराउंड 3.7 डिग्रीज राइट नाउ। अभी ऑकलैंड से अ लिटिल बिट वार्मर इज़ क्वींसटाउन दिस मॉर्निंग। ब्लेनहम में अगर आप हैं 1 degree वहाँ पर भी टेम्परेचर आप फील कर रहे हैं। फांगरे इज़ अराउंड 6.5 डिग्रीज एट द मोमेंट। सो अपाहट आई वुड से अभी या लवाहट सॉरी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पर अराउंड 11 डिग्रीज टेम्परेचर जो है ये रिकॉर्ड किया गया है।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: सन टूर्स के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
2: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
3: MediaWorks complaints. How can I help?
4: I've got this ad going around and around and around in my brain. And it's all because of you guys.
3: Thank you.
4: It's all I can think about.
3: What does it sound like?
4: Yeah, I'd rather not.
3: Go on, why don't you have a crack?
4: Okay, got a plumbing problem.
3: Oh, I need a bit more than that.
4: They've got your back.
3: That's starting to ring a bell. Why don't you sing it to me?
4: Oh, okay.
5: There's no better plumber to give it a crack.
3: Oh, wow. You're actually good. Do you want a job?
4: No. I want a plumber.
6: Advertise with MediaWorks. New Zealand listens to us.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take? 17 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक। कल हमारी बातें जो है लॉजिक फाइनेंस के गुरु कंडोला से नहीं हो पाई थी, तो आज उनसे हम बातें करेंगे और टाइम हमारे पास व्हाट्स योर टेक में थोड़ा कम होगा, इसीलिए जल्दी से आपको कॉल करना होगा व्हेन यू लिसन टू द टॉपिक। 2022 में एक स्टडी के रिजल्ट्स पब्लिश किए गए थे इन द जर्नल मेंटल हेल्थ एंड सोशल इंक्लूजन, और उसका जो बेसिक जो निष्कर्ष निकला था या आउटकम निकला था, जो भी आप कहना चाहें, कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ बट व्हाट यू बिलीव।
11: ओह, बट व्हाट यू बिलीव,
10: यस, दैट वाज द आउटकम ऑफ दैट स्टडी, कि जिंदगी में आप वो, आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, लेकिन वो मिलता है जो जिस पर आप विश्वास करते हैं,
11: विश्वास रखते हैं।
10: तो मैंने सोचा कि आपसे पूछते हैं कि डू यू अग्री और डिसएग्री, कि जो आपको चाहिए वो नहीं मिलता है बट व्हाट यू बिलीव इन
11: वो मिलता है।
10: हाँ, 3000 से ज्यादा लोगों पर ये सर्वे किया गया था और उनसे कहा गया था कि वो आंसर करें क्वेश्चंस, whether they believe they could do something to keep mentally healthy, whether they had done something in the past 2 weeks to support their mental health, ऐसे बहुत सारे सवाल जो है ये उनसे पूछे गए थे।
11: Right.
10: Good morning, Parvinder.
12: Good morning, hello.
11: Hello, Parvinder, कैसी हो आप?
12: बहुत अच्छी, अरे बाबा
11: फाइनली

0: ऐसे हार्ट जोर जोर से पंप कर रहा है बिना रेडबुल के.
1: बिना रेडबुल के. ओह माय गॉड. सो परविंदर, आज के टॉपिक के बारे में व्हाट्स योर टेक?
0: मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अच्छा? मैं इतना बिलीव करती हूँ, इतना बिलीव करती हूँ कि मेरी आज लॉटरी लग जाएगी.
2: हाँ.
0: लगता
2: है आपकी कोई लॉटरी लगी है.
1: सुनाई दे रही है हमको.
2: आपको देने आ रहे हैं पैसे?
0: नहीं, लॉटरी नहीं है, वो है फायर ब्रिगेड.
2: अच्छा.
1: हाँ, क्या बिलीव करी? पांच सालों में कभी भी नहीं जीती आप?
0: कभी भी नहीं जीती. जीती भी हूँ तो जैसे $20 जीती हूँ और उससे मैंने दोबारा टिकट ले लिया.
1: Okay, that's interesting.
0: नहीं, मैं बहुत सारी चीजें बिलीव करती हूँ जो ना मेरे साथ हुई है ना मुझे मिली है.
1: See, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, when you believe in something, that feeling is so strong. कि आप ऐसे थोड़े इवन फॉर अ सेकंड वो आपके माइंड से उसका ऑपोजिट आप नहीं सोच पाओगे. यू ओनली बिलीव इन द फैक्ट कि यही होगा.
0: बट इवन इफ सोचती हूँ कि मेरी आज लॉटरी लग जाएगी और उसके बाद मैंने सारा कुछ प्लान कर रखा है, व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट डे.
1: वो बिलीव नहीं होता, वो इमेजिनेशन होता है परविंदर.
0: इमेजिनेशन नहीं, मैंने उसके अलावा सोचा ही नहीं है. मैं ना सोचती नहीं हूँ कि मेरी नहीं लगेगी. मैं यही सोचती हूँ, यही बिलीव करती हूँ कि आज मेरी लगती ही लगेगी.
1: तो हो सकता है कि अभी ना सही, लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद लग जाए. ऐसे जरूरी थोड़े ना कि जिस साल सोच रहे उसी साल पूरा होगा.
0: यही सोचती हूँ आज नहीं तो कभी तो लगेगी.
1: कभी तो लगेगी. ट्रू. कीप बिलीविंग इन इट, यू नेवर नो, इट माइट हैपन.
0: और जैसे जैसे मैं हूँ ना, पर्सनली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचूं. क्योंकि ऐसा मुझे लगता है नेगेटिव सोचते हैं ना तो सोच सोच के वो शाहरुख खान का डायलॉग नहीं है, पूरी कायनात
1: हो जाता है,
0: जुड़ जाती है. तो मैं नहीं जाती पूरी कायनात नेगेटिव लगाने में शुरू हो जाए मेरे को. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छा ही सोचूं, पॉजिटिव ही सोचूं, ताकि पॉजिटिव एनर्जी ही मैं भेजूं और वापस पॉजिटिव ही आए.
1: That's good. Thank you so much, Parvinder, आपके कॉल के लिए. We wish you all the very best.
0: Have a good day.
1: Thank you. Enjoy your school holidays.
0: थैंक यू.
2: ऐसा लग रहा है परविंदर टीचर नहीं, स्टूडेंट है.
1: वो ऐसी टीचर है जो स्टूडेंट जैसा ही बर्ताव करती है कभी कभी.
2: तो आप भी हमें बता सकते हैं, व्हाट्स योर टेक, डू यू अग्री विद द स्टडी? अब परविंदर का कहना है कि वो तो नहीं मानती, वो इतना विश्वास करती हैं कि वो लॉटरी जीतेंगी लेकिन जीती नहीं अभी तक.
1: हाँ, तो आपका क्या कहना है आप भी हमें जरूर बता सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल 0800 हम 0800-004-866 पर एंड लेट अस नो ऑफ योर थॉट्स.
2: चाहे तो आप 5599 पर हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं. 22 मिनट हो रहे हैं फिलहाल, अब 8:00.
3: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
5: Brought
3: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
4: Another cool but fine day, got a high of 15 degrees. Upper Harbour Motorway, probably the slowest of the bunch at the moment. It's quite slow northbound Hobsonville to Rosedale, even a bit heavy for a period. Coming in on the northwestern, not too bad, 29 minutes from Massey. Heavy patches from Point Chief to Grey Lynn, then slow to the city. Southern 25 in from Manukau, slow Ellerslie to Remuera. Northern is quick.
3: As the cold mornings roll in, be ready with New Zealand's trusted battery, Century Batteries.
5: Winter aa gaya hai and Mighty 10 Mega Westgate and Henderson has you covered. Your one-stop shop for everything inside and out, plus a friendly team of experts to help you get it done. In-store aaiye ya shop online today.
6: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Twistech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Twistech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
7: We pulled it off, Johnny. We're rich!
8: Oh, no. I've left my glasses in the vault.
7: What? You're kidding me? Oh, they'll be covered in your fingerprints.
8: Oh, Pete! I went to Specsavers and got a smudge-resistant coating. They're not going to find a single print.
9: Someone's been to the Specsavers winter sale. There's 50% off lens options, including light reactive, drivewear, and smudge-resistant. With two pairs from $169 or above. Limited time, condition supply.
8: I think I dropped my wallet, too.
10: It's bonus time at No Leeming. Get a bonus $50 gift card for every $500 you spend on selected products. Don't miss out. Offer valid until Sunday, 5th July. Conditions and exclusions apply. Only at No Leeming.
11: Craving ho rahi hai. Us thick aur creamy dahi ki jaise ghar pe milti thi. To milwate hain aapko Kashish Natural Yogurt se. Jiska har spoon hai ekdam delightful. 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye. Ya bas seedha tab se khane ke liye. Kyunki ye hai naturally delicious. Always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
0: Non-stop Bollywood.
12: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
13: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
14: तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं मैच को पूरा होने में जो स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच खेला जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में और अब स्पेन की जीत ऑस्ट्रिया के खिलाफ 2-0 से होने लगी है स्पेन 2 ऑस्ट्रिया 0 और भी अपडेट्स जैसे जैसे रहेंगे मैच में ये हम आपको इस प्रोग्राम में देते रहेंगे आज 10 ऑफ जुलाई है बस अब दो ही हफ्ते बाकी रह गए हैं जिसके बाद द ग्रेट कॉमेडी नाइट का मजा आप ले सकेंगे राइट हियर इन ऑकलैंड
15: अपॉर्चुनिटी आपके पास है क्योंकि 18th ऑफ जुलाई को ये बहुत ही कमाल का हिलेरियस कॉमेडी नाइट जो है ये होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर टिकट्स आप bookmyevent.co.nz विजिट करते हुए जरूर ले लीजिएगा अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है टिकट्स बुक करने में 0210432720 पर आप कॉल कर सकते हैं और द बेस्ट पार्ट जैसे कि हमने कहा कि इफ यू वांट टू हैव फन इफ यू वांट टू लाफ आउट लाउड इफ यू वांट टू एंजॉय दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ अपने लव्ड वंस के साथ तो इसका असर आपके पॉकेट पर नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि पॉकेट पर असर पड़ेगा तो आपको जरूर आपको यू नो कहीं ना कहीं परेशानी होगी इसका असर आपके दिमाग पर पड़ेगा एंड वी डोंट रियली वांट दैट वी वांट यू टू हैव फन एंजॉय द डे एंजॉय द नाइट खूब मजे इसीलिए आफ्टर पे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है आफ्टर पे ऑप्शन अगर आपने नहीं यूज किया है कभी सो इट्स बेसिकली यू गेटिंग समथिंग जिस पर आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा एंड ईच फोर्टनाइट आप क्वार्टरली पेमेंट्स जो ये करते हुए अपना फुल पेमेंट कर सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फोर पेमेंट्स जो है फोर्टनाइट जब होता है तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है सो इफ यू गेटिंग लाइक यू नो ग्रुप में टिकट्स आप ले रहे हैं एंड यू फील लाइक कि चलो टिकट्स लेते हैं बट थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसी वजह से ये आफ्टर पे ऑप्शन आपके लिए बहुत बहुत बहुत काम आएगा. सो मोर देन 50% टिकट्स आर सोल्ड. अभी कुछ गिने चुने ही टिकट्स जो है ये बाकी हैं. VIP वाले सीट्स ऑल सोल्ड. तो अगर आप चाहते हैं राजीव ठाकुर और कृष्णा अभिषेक को देखना एंड एक हिलेरियस फन नाइट का मजा उठाना, तो आप जरूर टिकट्स ग्रैब कर लीजिए कर लीजिएगा द ग्रेट कॉमेडी नाइट के लिए ASAP. बट फिलहाल के लिए हम आपको अपॉर्चुनिटी भी देना चाहते हैं ना जीतने के लिए.
14: एक डबल पास जो है आज भी जीतने का मौका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, बशर्ते आप हमारे सवाल का सही जवाब दे. आपको पता है कि हमने बताया था कि कृष्णा अभिषेक का असली नाम अभिषेक शर्मा है. उनकी माँ जो है अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने इसी पर अभिषेक के नाम पर अपने बेटे का नाम अभिषेक शर्मा जो है ये रखा था. तो दैट्स द कनेक्शन. लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कृष्णा अभिषेक ने अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म में काम किया है. हमें उस फिल्म का नाम चाहिए.
15: इट वाज अ वेरी हिलेरियस मूवी एज वेल यार. बहुत कमाल की पिक्चर थी वो और बहुत से लोगों ने इसे एंजॉय भी किया था. आई वाज वन ऑफ देम हु सिंपली एंजॉयड दैट मूवी. तो आपको बस बताना है कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें कृष्णा अभिषेक और अभिषेक बच्चन ने एक साथ काम किया. और जवाब देने के लिए कॉमेडी लिखना है सबसे पहले COMEDY, कॉमेडी लिखे फिर अपना आंसर लिखे और 5599 पर हमारे पास सेंड कर दे. सही जवाब देने वालों का नाम ड्रो में तो शामिल करेंगे ही और किसी को एक डबल पास आज हमारे जाने से पहले जीतने का मौका मिलेगा. वहीं दूसरी ओर आपके पास ऑटो रिप्लाई में लिंक भी आ जाएगा टू ग्रैब टिकट्स.
14: सो गेट गोइंग कॉमेडी और उसके बाद वो कौन सी फिल्म थी जिसमें कृष्णा अभिषेक और अभिषेक बच्चन ने एक साथ काम किया था, उस फिल्म का नाम और अपना नाम. ये तीनों चीजें कंपलसरी हैं और तीनों चीजें लिखकर 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट करें और थोड़ी देर बाद देखेंगे आप या जाने से पहले देखेंगे आप इसे कितने लोगों ने सही सही जवाब दिया है. सभी के नाम जो है ड्रो में चले जाएंगे और उनमें से आप में से किसी एक का नाम हम निकालेंगे जिनको एक डबल पास मिलेगा टू गो एंड वॉच द ग्रेट कॉमेडी नाइट. 18th of July को ये होने जा रहा है विक्ट्री कॉन्वेंशन सेंटर में ट्राइविजन इवेंट्स की ये पेशकश.

0: calm because Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: Unit traffic.
1: Try something new this weekend.
2: A cool morning, especially out west. Fine today with a high of 15. Upper Harbour Motorway has been quite slow northbound and still is Greenhithe to Rosedale, even a bit heavy, but it's starting to ease. Northwestern easing up nicely. 23 minutes Massey to town, just slow from the causeway. Northern 21 in from Constellation, barely any slow patches. And Southern just a bit slow from Ellerslie. 25 minutes Manukau to town.
1: High speed action, big hits, thrilling moments, fun for all ages. Search Ice Hockey Tickets.
3: Danny didn't think he needed a DVS system.
4: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
3: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
4: Nah, only one room. It was just too noisy.
3: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। ईट बेटर, लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: Get your winter favourites with New World North Island's 3-day sale. Get fresh pork leg roast bone-in $8.99 per kilo. Or Vivaldi gold-washed potatoes 2 kilos $3.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
8: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
9: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
9: Throwback.
11: अभी 16 मिनट रह गए हैं 8 या 9 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और हमने हमारे फेसबुक पेज पर भी कुछ डाला है दैट यू कैन गो एंड चेक आउट, एंड अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं या अपना जो शेयर करना है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. बाय द वे, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो है ये डिसाइड हो चुका है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल है ये नेक्स्ट वीक मंडे को खेला जाएगा, और ये मैच मंडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM स्टार्ट होगा. आज सुबह जो दूसरा सेमीफाइनल हो रहा था, इट हैज़ बीन कम्प्लीटेड, और इसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी, 5 खिलाड़ी खोकर 169 रन बनाए. जवाब में साउथ अफ्रीका ने अपने इनिंग्स में 8 खिलाड़ी खोकर 129 रन बनाए, यानी 40 रन से उनकी जीत जो है इंग्लैंड की इस मैच में हुई है. तो जो भी अपडेट्स होंगे ये आपके लिए हम ज़रूर लेकर आएंगे. साथ ही में हमने सवाल भी आपसे पूछा जो द ग्रेट कॉमेडी नाइट है उसके लिए.
12: जी, आपको बस इतना बताना है कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अभिषेक बच्चन और कृष्णा अभिषेक इन दोनों ने एक साथ काम किया था. और जवाब देने के लिए आपको लिखना होगा कॉमेडी सबसे पहले, फिर फिल्म का नाम, और अपना नाम लिखकर 5599 पर आप सेंड कर दें. याद रखें कि ये सही जवाब आपका नाम ड्रो में शामिल करा सकता है, जिसके बदले आप जीत सकते हैं एक डबल पास टू गो एंड वॉच नन अदर देन कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर, जबकि ये द ग्रेट कॉमेडी नाइट लेकर आ रहे हैं 18 जुलाई को एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर.
11: और ड्रो आज जाने से पहले ही होगा, यानी आप में से कोई एक होगा जो ये पास जीत जाएगा. तो कॉमेडी अपना आंसर और नाम ये 5599 पर हमारे पास भेजें. फिलहाल व्हाट्सएप पर एक मैनेजर और एक एम्प्लॉई के बीच जो कॉन्वर्सेशन है ये अभी काफ़ी वायरल हो रहा है. तो ये जो एम्प्लॉई हैं इन्होंने अपने जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है जो कोई भी है उनको
12: अपने मामा की शादी के लिए तो नहीं इन्होंने जो लीव डाली है.
11: नहीं, मामा की शादी के लिए नहीं डाली थी.
12: अच्छा, ओके. तो ये किस चीज़ के लिए
11: इन्होंने लीव जो है कि अप्लाई किया या अपने सुपीरियर सुपरवाइजर को बताया कि उनकी तबीयत जो है ये ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि सर नहीं आ पाऊँगा, फीवर बढ़ गया है. तो उनके जो सुपरवाइजर हैं इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि ठीक है टेक रेस्ट या जो कुछ भी है कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया. उन्होंने मैसेज का रिप्लाई जो है ये किया, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं.
12: अरे वाह.
11: तो जो एम्प्लॉई था उन्होंने कहा कि नीड लगेगा तो बताऊंगा. अच्छा. अभी के लिए पैरासिटामोल.
12: ओके.
11: ये लिखकर एम्प्लॉई ने भेज दिया. फिर उसके बाद सुपरवाइजर जो है वो रुका नहीं, उसने उनको वापस मैसेज किया, सर डायरेक्टर सर ने कहा है जो बीमार हो उससे डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लो, यानी कि जो कोई भी सिक लीव कॉल कर रहा है. और ये माइंड यू ये सिर्फ एक दिन के लिए था.
12: अच्छा.
11: तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लो. एम्प्लॉई ने उसके बाद जाकर अपने सुपरवाइजर को जो रिप्लाई दिया दैट हैज गॉन वायरल.
12: क्या बोला उन्होंने?
11: उन्होंने कहा मैं स्कूल स्टूडेंट नहीं हूँ सर, लीव रहती है, लीव ले ली मैंने. खुद डॉक्टर हैं वो, यानी कि जो डायरेक्टर हैं कंपनी के
12: वो खुद डायरेक्टर,
11: खुद डॉक्टर हैं. बोलो मेरे नाम की प्रेस्क्रिप्शन बना ले नहीं तो प्रेस्क्रिप्शन और लीव एप्लीकेशन विद पेरेंट सिग्नेचर नहीं है मेरे पास. और मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, मैसेज कॉल का रिप्लाई नहीं करूंगा.
12: वेरी इंटरेस्टिंग. But he was right on his end. The employee was right on his end. एक दिन की छुट्टी थी, बीमार थे. अभी कभी कभी क्या होता है, सिर दर्द होता है या फिर आपको थकावट होती है, बॉडी एक होता है, लाइक बेसिक चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जिससे सच में शरीर में एनर्जी नहीं होती है. दैट्स वाई यू नीड टू रिकवर फ्रॉम इट, यू नीड रेस्ट. एक दिन की छुट्टी आपने ले ली, isn't it?
11: जी.
12: अब उसके लिए भी इतना प्रेशर, बंदा छुट्टी ले रहा है जो उसका हक है, जो उसके पास अवेलेबल है, सही तरीके से लिया उसने. अब फिर उस पे आप उसको परेशान कर रहे हो, डॉक्टर के पास चलो प्रूफ चाहिए ये वो, थोड़ा ऐसे हो जाता है ना, गुस्सा तो आ ही जाता है. एंड इन सम केसेस वी माइट हैव एक्सपीरियंस इट सम टाइम इन आवर लाइफ प्रोबेबली, दैट्स हाउ यू कैन रिलेट टू इट कि ये थोड़ा है एक ऐसी चीज ना.
11: हाँ, तो उस जो जो सबसे क्लासिक पार्ट है इसका रिप्लाई हो रहा है या ट्रेंड हो रहा है वो दो पार्ट्स है. एक तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टर खुद ही डॉक्टर है, वो प्रेस्क्रिप्शन लिख लो. और दूसरी बात जो उन्होंने कहा अगर नहीं तो प्रेस्क्रिप्शन और लीव एप्लीकेशन विद पेरेंट सिग्नेचर नहीं है मेरे पास. तो इनडायरेक्टली वो अपने सुपरवाइजर को बता रहे थे कि यू आर ट्रीटिंग मी लाइक अ स्कूल किड.
12: एग्जैक्टली. या
11: डोंट डू दैट, आई एम अ प्रोफेशनल. तबीयत नहीं ठीक है इसीलिए आराम कर रहा हूँ. और डायरेक्टली उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, मैसेज कॉल्स का रिप्लाई नहीं करूंगा.
12: दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन आजकल के जमाने में. आई मीन दिस इज समथिंग दैट द जेंजीज आर डूइंग इट एंड मिलेनियल्स पे काफी सवाल उठ रहे इस मामले में. Because we have been taught things differently, we have been brought up differently, हमारी ideologies जो है कि अलग है, इसीलिए शायद थोड़ी दिक्कत होती है. But boundaries set करना बहुत ज़रूरी है. If you are not well, you are on leave, you shouldn't be doing your work. आपको emails reply करने की ज़रूरत नहीं है, आपको official messages reply करने की ज़रूरत नहीं है. Because you are not well, you have taken a leave for a reason. You know, create that boundary. If you are on छुट्टी, अगर आपका day off है, उस दिन भी जरूरी नहीं है कि आप रिप्लाई करें. हाँ, इन सम केसेस रिलेशनशिप थोड़ा डिफरेंट होता है विद द मैनेजमेंट, यू शेयर वेरी गुड बॉन्ड. और कुछ ऐसा हो जो एकदम इमरजेंसी हो जिसमें सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हैं या आपका रिस्पॉन्स कैन होल्ड अप अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स, तो शायद वो बात अलग होती है ना. बट इन सर्टेन केसेस यू शुड क्रिएट दैट बाउंड्री.
11: बस 10 मिनटों के बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट और अगले घंटे क्या बकते हुए भी हम आपके लिए लेकर आएंगे. लेकिन अभी इन 10 मिनटों में वी आर ट्राइंग टू फाइंड 15 पीपल जिन्होंने अभी तक अपना आंसर नहीं भेजा है द ग्रेट कॉमेडी नाइट का डबल पास जीतने के लिए. अगर आपने नहीं भेजा है, यू सेंड दैट राइट अक्रॉस टू अस अभी भी विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. कॉमेडी, उसके बाद वो कौन सी फिल्म थी जिसमें कृष्णा अभिषेक और अभिषेक बच्चन ने एक साथ काम किया है, उस फिल्म का नाम और अपना नाम. सो दीज आर द 3 थिंग्स, कॉमेडी, मूवी का नाम, अपना नाम. ये 3 चीजें लिखकर 5599 पर आपको हमारे पास भेजनी है. और न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद हम देखेंगे कि क्या जो 15 पीपल हैं जिन्होंने आंसर नहीं भेजा है, क्या उन्होंने अपने आंसर्स भेज दिए हैं या नहीं.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 5.5 degrees temperature ho chuka hai aaj ka high 15, overnight kam se kam 8 degrees rahega. A fine day aur aaj ka sunset sham 5:17 par hoga.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
3: What's going on? Kya bakte ho?
4: Are kehna kya chahte ho?
5: आज का क्या बकते हो आपके लिए जो हम लिख रहा है. अभी आप भी बात कर रहे थे लीव एप्लीकेशन के बारे में. पिछले घंटे हमने बातें की थी एक एम्प्लॉय की लीव एप्लीकेशन के बारे में जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को लिखी थी, राइट. इस बार आपके लिए एक लीव एप्लीकेशन हम लेकर आए हैं. दिस इज अबाउट स्टूडेंट जिन्होंने लीव अप्लाई किया है अपने टीचर को एक चिट्ठी जो है ये लिखते हुए. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चिट्ठी जो है लीव एप्लीकेशन की ये वायरल हो रही है. टीचर ने तो बड़ा ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिया इसका पूरा वीडियो बनाकर. और दैट्स हाउ द वीडियो केम इनटू माय नोटिस. एंड मैंने सोचा कि आज चलिए इसके बारे में बातें जो है ये कर लेते हैं. सो अपेरेंटली टीचर जो है ये एक वीडियो बनाते हैं कि इनके हाथ में एक चिट्ठी है और ये जो चिट्ठी इन्हें मिली है उनके एक स्टूडेंट बादल की ओर से. इन्होंने लिखा है फ्रॉम बादल. तो टीचर जो है ये जब चिट्ठी पढ़ते हैं उसका वीडियो बना रहे हैं और अपना हिलेरियस रिएक्शन बीच बीच में तो वो दे ही रहे हैं. लेकिन उन्होंने पढ़ा From Badal to Principal, Subject Leave for 5 days.
1: Okay.
5: Respected Sir, फिर उन्होंने कारण दिया है कि उनको लीव क्यों चाहिए. Because मामा की शादी. इन्होंने कहा I want to say that I have only one मामा जी. Means माता जी's only brother, not अड़ोसी पड़ोसी अंकल. उनकी शादी है और घर के सब लोग बहुत बिजी हैं. इसीलिए मुझे जाना मेरा जाना जरूरी है. अंत में मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करे. योर स्टूडेंट बादल थैंक्स. ये इन्होंने चिट्ठी में लिखा और द टीचर एक्चुअली मेड अ वीडियो व्हाइल रीडिंग दिस. और उन्होंने कहा कि तुमको छुट्टी दे दूं कि तुमको परमानेंट छुट्टी दे दूं मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ. बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरीके से जो चिट्ठी जो स्टूडेंट ने लिखी थी द टीचर फाउंड इट रियली वेरी हिलेरियस.
1: तो परमानेंट छुट्टी क्यों देनी है.
5: अरे वो जा रहे हैं शादी में ना 5 दिनों की छुट्टी चाहिए. उस हिसाब से कि पढ़ाई पे शायद ध्यान नहीं उनका वो बिकॉज द लेटर कुड डिपिक्टेड कि उनका उनका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान ज्यादा इंटरेस्ट.
1: अरे परिवार में शादी होगी किसका मन होगा पढ़ाई का उस टाइम पे.
5: वो बात भी है.
1: वो तो बच्चा है ना.
5: नहीं वो हंसी मजाक में उन्होंने वैसा बोला. ऐसा नहीं कि लाइक सच में वैसा ही कर देंगे वो.
1: ऑब्वियसली
5: But anyways, this is something that has happened and इस letter के बारे में काफी बातें हो रही है मामा जी की शादी के लिए छुट्टी जो उन्होंने छुट्टी की अर्जी जो उन्होंने डाली है उसके लिए. तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है दुनिया भर में और इससे जुड़ी बातें आपके साथ हम जरूर करते हैं. इससे जुड़ी डिटेल्स हम आपके लिए जरूर लिख आते हैं. क्या बकते हो आपके लिए आज का रहा. What's going on? जबकि शुरू कर रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. आगे बढ़ने से पहले पिछले घंटे हमने सवाल भी किया था ना.
1: हाँ हाँ हाँ.
5: तो बताइए क्या हाल है उस सवाल का.
1: बहुत अच्छा हाल है. बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजे. Why I was saying कि 15 more people क्योंकि इस हफ्ते किसी एक कंपटीशन में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया उस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए हमें 15 लोग चाहिए थे.
5: अच्छा.
1: सो दिस वीक इन एनी कंपटीशन आज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैव पार्टिसिपेटेड द ग्रेट कॉमेडी नाइट के कंपटीशन में.
5: Very interesting, very nice.
1: कभी-कभी अपने entertainment के लिए अपने उसके लिए भी
5: करते हैं.
1: हाँ, कुछ कर लेते हैं ना हम भी खुश हो जाएं थोड़ा सा.
5: But on the other hand, it actually shows that there's so much interest out there. People are actually interested in watching it and going for the show, ना? तो अभी हमारे पास जो passes हैं वो तो हम दे ही रहे हैं पर आपको भी अपने passes जो ये लेने हैं bookmyevent.co.nz विजिट कीजिएगा अपने passes grab करने के लिए. तो सवाल था वो कौन सी फिल्म है जिसमें अभिषेक बच्चन और कृष्णा अभिषेक इन दोनों ने एक साथ काम किया. द करेक्ट आंसर
1: बोल बच्चन.
5: थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर्स भेजे और कुछ लोगों ने अपने मैसेजेस भी भेजे हैं. जुरीन ने कहा है हाय जुरीन हियर एंजॉयिंग योर प्रोग्राम और जवाब जो है ये उन्होंने भेजा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज आया. इन्होंने लिखा है सृष्टि लाल ने पोकेनो से मैसेज करती है. इन्होंने कहा ब्यूटीफुल प्रोग्राम मिस्टर एंड मिसेस वर्मा. क्या बात है सृष्टि, इतना इतना शॉर्टकट. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए भी.
1: और अभी थोड़ी देर बाद ना हम आपको एक और अपॉर्चुनिटी देंगे. करण औजला ये आ रहे हैं अपना जो पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर है ये लेकर ऑकलैंड. लेट्स सी क्या वो कंपटीशन जो है इस कंपटीशन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है.
5: वी विल सी
1: थोड़ी देर बाद.

0: going on.
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: सबसे पहले न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा श्री राम लीला होगी वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोई टोई में और ये 8 ऑफ अगस्त को रहेगा और इसके लिए टिकट्स जेस फ्रेश मार्ट से अवेलेबल हैं और साथ ही में अगर आप स्टॉल्स वगैरह चाहते हैं या फिर एज अ क्रिएटिव विजुअल डायरेक्टर टीम में शामिल होना चाहते हैं मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं 0211795459 पर
4: और इसके अलावा आपको ये भी हम याद दिला दें आज फ्राइडे है और आज फाइनली होने जा रहा है जो गुज्जू भाई प्रोडक्शंस का सिद्धार्थ रंडेरिया लेकर आ रहे हैं गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर बहुत ही कमाल का ये हिलेरियस गुजराती ह्यूमर से भरा बहुत सारे रिलेटेबल फैमिली मोमेंट से भरा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड लाफ आउट लाउड मोमेंट्स से भरा ये गुजराती प्ले जिसका मजा आप उठा सकते हैं और इट्स हैपनिंग 7:30 PM एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर आई एम नॉट रियली श्योर टिकट्स अवेलेबल है या नहीं अगर आपने मिस आउट किया था एंड यू स्टिल थिंकिंग कि यू कैन मेक इट तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं premiertickets.co.nz पर
3: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में अखंड रामायण पाठ शनिवार फेस्ट से लेकर रविवार 2 अगस्त तक होगा शनिवार की सुबह 7 बजे रोठ पूजा होगी 8:15 बजे आरती और 9:15 बजे से रामायण पाठ जो है ये शुरू होगा रविवार की सुबह 10 बजे तक रामायण का पाठ चलता रहेगा और 10:30 बजे आरती और हवन जो है ये होगा प्रोग्राम के दौरान यहाँ पर आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा अगर आप इस अखंड रामायण पाठ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं 09836-4647 इस नंबर पर कॉल करते हुए उनसे आप जरूर बातें कर सकते हैं
4: आपके आसपास आपके कम्युनिटी में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं जिनकी जानकारी आप चाहते हैं कि अन्य लोगों तक पहुंचाई जाए तो आप जरूर हमारे पास ईमेल कर दीजिएगा डिटेल्स जो भी आपके इवेंट के विद द कॉन्टेक्ट नंबर एज वेल buzz@hamfm.com पर रिमेम्बर buzz@hamfm.com पर ईमेल आप अपने सेंड कर सकते हैं और जब भी हमारा व्हाट्सएप ऑकलैंड का सेगमेंट रहेगा ये इवेंट से रिलेटेड डिटेल्स हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए
2: Mornings made better.
5: Two frienda, char toast, butter, jam, or a special chai.
2: The breakfast show with Vijay and Pooja.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट

0: $500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 478686. Limited spaces.
1: आप सभी को इनवाइट किया जाता है नए लुक वाले माइटिटन मेगा बॉटनी में फ्री किड्स एक्टिविटीज क्लासिक सॉसेज सिजल लाइव एंटरटेनमेंट और पूरे दिन एक्साइटिंग गिवअवेज प्लस 4 टाइम्स एयर पॉइंट्स टो वाइड टीज एंड सीज एंड एक्सक्लूशंस अप्लाई दिस सैटरडे एट माइटिटन मेगा बॉटनी.
2: Hey, the boss shouted us coffees this morning from BP.
3: No way.
4: We in trouble?
2: Nah, it's BP Plus.
4: What is that?
2: A fuel card that saves a business on BP fuel. Plus, we get free coffees.
5: Sweet! Fuel you and your crew with 14 cents off every litre of eligible fuel for 6 months, plus 25 free Wild Bean Cafe coffees through BP Me. Apply for a BP Plus fuel card today at bp.co.nz. T's and C's apply, new customers only for a limited time.
6: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: If your bank makes gajillions in profit, how come you never get a slice of it? At the Cooperative Bank, we share our profits directly with our customers. Over $25 million and counting, in fact.
8: Better.
7: To prove we put our money where our mouth is, if you switch your banking to us, you'll get a share of $25,000. Not bad, eh?
8: Better.
7: Bank Better New Zealand. Switch to the Cooperative Bank today. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
9: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला.
10: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
9: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है.
10: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं. इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड. ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर. अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव. नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
13: What's going on?
14: 22 मिनट हो रहे हैं अभी 9 बजकर और व्हाट्स गोइंग ऑन आपको हम बता रहे हैं. हमारे आसपास क्या कुछ, हमने ये भी कहा था कि करण औजला और इनका जो पीपॉप कल्चर वर्ल्ड टूर है ये आ रहा है ऑकलैंड और 25th ऑफ अगस्त को स्पार्क अरीना में ये रहेगा.
15: तो आपके पास भी मौका है कि आप करण औजला को लाइव परफॉर्म करता हुआ देख सके. एंड इट्स ऑल हैपनिंग ऑन द 25th ऑफ अगस्त. और टिकट्स जो है ये आप ग्रैब कर लीजिए. टिकट्स पर जानकारियों के लिए, शो पर जानकारियों के लिए आप विजिट कर सकते हैं hum.rover.nz या livenation.co.nz भी आप विजिट कीजिए. livenation.co.nz पर आप टिकट्स जो है ये जाकर जरूर ग्रैब कर सकते हैं अपने लिए. पर ये याद रखें कि दिस इज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज जो आपको लाइफ में एक बार ही मिल सकता है, इसीलिए समय पर इसका फायदा जरूर उठाइए.
14: और आप टिकट्स लेते रहें, साथ ही में आपको एक डबल पास जीतने का मौका जो है ये भी हम दे रहे हैं, जिसका ड्रॉ बस मंडे को किया जाएगा. और आपको करना क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि करण औजला का ये कौन सा गाना है. हम आपको थोड़ा सा गाना सुनाएंगे और जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको अपना आंसर जो है ये हमें भेजना होगा.
15: तो 5599 पर आपको आंसर भेजना है, लेकिन ये याद रखें कि आपको सबसे पहले KA लिखना होगा. KA इस पूरे कंपटीशन का कीबोर्ड है, करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म, जहां पर KA आप पहले लिखें, फिर आप लिखें कि गाने का टाइटल क्या लग रहा है आपको, क्या है, फिर उसके बाद में अपना नाम लिखें और हमारे पास 5599 पर सेंड कर दीजिए इसे.
14: तो गाना सुन लें और ये भी याद रखें, हम ये भी देखेंगे कि क्या ये कंपटीशन जो है वो पिछले कंपटीशन का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है या नहीं. बट फर्स्ट हैव अ लिसन टू द सॉन्ग.
16: Karan, where are you at?
17: Uttar Pradesh.

0: तो ये है आज का गाना।
1: इसका नाम क्या है, गाने का टाइटल क्या है, ये आप हमें बताइए। कै आई लिखिए सबसे पहले और फिर गाने का टाइटल और अपना नाम लिखकर 5599 पर भेजिए। द ट्रू करण औजला फैंस विल डेफिनेटली नो एंड दैट्स हाउ दे डिजर्व द टिकट्स द पासेस टू गो एंड वॉच हिम लाइव, विच इज वाई ये अपॉर्चुनिटी आपको हम जरूर दे रहे हैं। आइडेंटिफाई कर लिया है तो कै आई लिखकर गाने का टाइटल लिखकर अपने नाम के साथ जवाब हमारे पास आप भेज दीजिए।
0: दो गाने अभी आपको हम सुनाएंगे और इन दो गानों तक का वक्त होगा आपके पास KA followed by your answer और your name, ये 5599 पर आपको अब भेजना है हमारे पास। अगर नहीं सुना है तो गाना फिर से हम आपको सुना रहे हैं।
2: Karan, where are you at?
3: तू देख।

0: तो अब जवाब आप हमें भेज सकते हैं। 25 मिनट हो रहे हैं 9:00।
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: कुड़ी नशे से चढ़ गई।
1: आपके लिए ये बहुत ही लाजवाब गाना रहा ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जवाबों के लिए।
2: थैंक यू सो मच फॉर योर एंट्रीज। और हमने कहा था वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप अपनी एंट्री सेंड कर रहे हैं करेक्ट कीवर्ड जरूर लिखें। और जब हम आपको कीवर्ड बताते हैं हम आपको ये भी कहते हैं कि आपको उससे पहले उसके बाद में ज्यादा लिखने की कुछ जरूरत है नहीं, अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू राइट एन आंसर, जस्ट गिव अ स्पेस एंड देन राइट इट। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा लिखेंगे लाइक अ डॉट और अ कॉमा इवन अ डैश, तो आपकी एंट्री जो है ये सही कीवर्ड तक नहीं पहुंचती है एंड आपकी एंट्री इनवैलिड हो जाती है। सो ओके ए स्पेस अपना जवाब और अपना नाम आपको सेंड करना था हमारे पास 5599। करण औजला का पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर जबकि ये सुपर सिटी ऑकलैंड आ रहे हैं 25th of August को। livenation.co.nz से टिकट्स ग्रैब कर लीजिएगा, डिटेल्स के लिए आप hum.rover.nz भी विजिट कर सकते हैं।
1: और इन द मीन टाइम आपने अब होगा हिसाब इस ये सीरीज जो है ये देखा है?
2: मैंने थोड़े बहुत स्निपेट्स देखे होंगे बट आई हैव नॉट इन्वेस्टेड टाइम इन वाचिंग द एपिसोड्स and neither have I followed the show, so don't have a lot of knowledge about it.
1: It was very intriguing, बहुत interesting था। और अब जो लोग इंतजार कर रहे थे आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब होगा हिसाब का सीजन 2 जो है ये आज रिलीज हो रहा है।
2: Oh wow, yes. Season 1 कब आया था?
1: I'm not really sure first season कब आया था but बहुत fast turnaround, बहुत time नहीं हुआ अभी first season को आए हुए क्योंकि ये इतना ज्यादा पसंद किया गया और तो मेकर्स आर कैपिटलाइजिंग ऑन दैट मैसिव बज़ ऑफ द फर्स्ट सीजन। और ये जो बहुत ही ग्रिटी रिवेंज थ्रिलर है ये इसका सीजन 2 आज से रिलीज होगा और अमेजोन एमएक्स प्लेयर पर। ये जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। शहीर शेख ये कमाल के एक्टर है, मैंने इनके बारे में पहले बहुत सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था।
2: है?
1: क्या है
2: ये? बहुत पॉपुलर है। जो महाभारत आई थी स्टार प्लस पर जब ये रिलीज हुई थी उसमें इन्होंने अर्जुन का किरदार प्ले किया था। दैट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर पीपल हैड सीन हिम, आई हैड सीन हिम। फिर उसके बाद इनके बहुत सारे शोज आए ऑन सोनी लिव एंड सोनी एंटरटेनमेंट जो काफी काफी पॉपुलर हुए।
1: हाँ मैंने नहीं देखे ना।
2: आपने महाभारत भी नहीं देखी?
1: नहीं देखी।
2: ओके
1: तो मुझे इनके बारे में कुछ खास पता नहीं था। ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ डिपोर्टेड NRI। उनकी जिंदगी पूरे उथल पुथल हो जाती है जब उनका भाई जो है ये मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। इनके भाई का किरदार जो है अविनाश मिश्रा ने प्ले किया है। और फिर क्या होता है कि शहीर शेख जो है ये अपने भाई की तलाश में निकलते हैं एंड दैट लीड्स हिम फेस टू फेस एक बहुत बहुत गंभीर बहुत ही सिनिस्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का जो एक लेजिटिमेट कनाडा इमिग्रेशन नेटवर्क के पीछे से काम कर रहा था। तो सीजन 2 जो है इट डाइव्स डीपर इनटू दिस डेंजरस अंडरवर्ल्ड और किस तरह से शहीर शेख डील करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग। तो शहीर शेख, संजय कपूर, मौनी रॉय भी हैं इसमें, निमृत कौर भी हैं, इन सभी को आप देख सकेंगे।
2: ओके सो अब होगा हिसाब ये आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन TVF का प्रोडक्शन है ना ये।
1: आई एम नॉट रियली श्योर TVF का है या नहीं बट
2: आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई थिंक सो। बट हाँ ये काफ़ी बेहतरीन शोज जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्शन बहुत से ऐसे शोज इनके रहे हैं विच हैव बीन वेरी वेरी पॉपुलर एज फार एज OTT वेब सीरीज वगैरह जो है ये कंसर्न हो। बट फॉर नाउ जितने भी लोगों ने हमारे पास अपनी एंट्री सेंड की है थैंक यू सो मच वंस अगेन। और अब होगा हिसाब ये भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा Amazon प्राइम वीडियोज पर।
3: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: डोंट माइंड लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
6: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
7: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about, or just out in the backyard, Have a hmm and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
8: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
9: Hi New Zealand, this is Siddharth Randeria Gujubai.
10: And I'm Tejal Vyas.
9: We are here with our new Nakkur super hit comedy natak Gujubai ni
10: Exchange Offer.
11: Friday, 3rd July, Victory Convention Center par. Lending HQ, Sona Sansar and Tulip Financial Services presents Siddharth Randeria nu new natak Gujubai ni Exchange Offer. Hasi hasi ne lotpot thaywa tayyar thai jao. Tickets, jaldi book kari le jo. Phone karo 021-244-6278 par.
12: Please use your imagination for the following ad.
13: If I won Powerball, I'd do some spending. Yep, I'd spend some time with... And we'd enjoy a whole lot of...
12: Imagine winning $20 million this Saturday. Play in store or online.
3: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
15: What's going on?
14: Football updates brought to you by PFSL. Providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL.

0: radio.nz.
1: आज का पहला मैच जो है ये कंप्लीट हो चुका है राउंड ऑफ 32 का और स्पेन की शानदार जीत हुई है ऑस्ट्रिया के खिलाफ बाय 3-0. नेक्स्ट मैच 11 बजे पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया और उसके बाद स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया का मैच जो है ये खेला जाएगा. राउंड ऑफ 16 के जितने मैचेस अभी तक कंफर्म हो चुके हैं, मंडे 5 AM कनाडा वर्सेस मोरक्को, सॉरी संडे 5 AM कनाडा वर्सेस मोरक्को और 9 AM पेरेगुए वर्सेस फ्रांस. मंडे 8 AM ब्राजील वर्सेस नॉर्वे, दिन में 12 बजे मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड और उसके बाद ट्यूसडे को दिन में 12 बजे USA और बेल्जियम का मैच खेला जाएगा. उससे पहले सुबह 7 बजे एक और मैच होगा और कौन सी दो टीमें इसमें फीचर करेंगी इस पर भी डिटेल्स हम आपको बाद में चलकर जरूर देंगे.
2: फिलहाल चलिए आपको याद दिला दें कि और क्या कुछ कहां कहां पर हो रहा है हमारे आज के डेली राउंडअप में. सम अपडेट्स दैट वी हैव गॉट सो फार जिस पर आपसे बातें करना चाहेंगे. इफ यू रिमेंबर अर्लियर दिस वीक हमने बातें की थी अबाउट सम ऑफ द चेंजेस बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन न्यूजीलैंड फ्रॉम 1st of July और हमने ये भी मेंशन किया था कि जो डिलीवरी कॉस्ट्स है एनजेड पोस्ट का ये अब बढ़ रहा है और नॉट जस्ट द डिलीवरी कॉस्ट, बेसिकली द सर्विसेज ऑफ न्यूजीलैंड पोस्ट जो है ये अब बढ़ रहा है. सो ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी कॉस्ट जो है ये बढ़ चुके हैं एंड दे आर राइजिंग. डिलीवरी फीस जो है ये न्यूजीलैंड में बढ़ चुका है. स्टैंडर्ड डिलीवरी अब $10 हो चुका है और एक्सप्रेस डिलीवरी $17.42 हो चुका है फ्रॉम $14.10. मैनी रिटेलर्स स्टिल ऑफर फ्री शिपिंग लेकिन कस्टमर्स नाउ हैव टू स्पेंड मोर टू क्वालिफाई और रिटेलर्स अक्सर फ्री शिपिंग प्रमोशंस जो है ये इस्तेमाल करते हैं टू बूस्ट सेल्स एंड अपने कुछ स्टॉक्स वगैरह जो ये क्लियर करने के लिए. रिटर्न्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव. बहुत से ऐसे रिटेलर्स हैं जो चार्ज कर रही रीस्टॉकिंग फीस फॉर चेंज ऑफ माइंड रिटर्न्स. एग्जांपल्स में हैं PBTech जो 20% रीस्टॉकिंग फी चार्ज कर रहे हैं, टारगेट फर्नीचर 15% एंड फिश पॉन्ड 17% चार्ज कर रहे हैं. सम रिटेलर्स ऑल्सो रिक्वायर कस्टमर्स टू पे रिटर्न शिपिंग एज वेल. और what shoppers want basically about 50% of shoppers say कि उन्हें they are less likely to buy from retailers that don't offer free returns और easy handle या easy hassle free returns जो है ये customer का confidence तो बढ़ाता ही है, especially for clothing and other items जो people try नहीं कर पाते हैं easily before buying them. वाइट मैटर्स क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्री शिपिंग और फ्री रिटर्न्स एनकरेज करते हैं ऑनलाइन परचेसेस को बाय रिड्यूसिंग द परसीव्ड रिस्क और अराउंड 2/3 ऑफ शॉपर्स से दे वोंट बाय अगेन फ्रॉम अ रिटेलर आफ्टर पुअर डिलीवरी एक्सपीरियंस. कंज्यूमर्स का कहना है कि दे आर स्टिल शॉपिंग ऑनलाइन बट आर बिकमिंग मोर सेलेक्टिव अबाउट वेयर दे स्पेंड देयर मनी.
1: ओके, कंज्यूमर न्यूजीलैंड ने एक फ्लाइट कंप्लेंट्स पोर्टल जो है ये लॉन्च किया है पैसेंजर्स के लिए जहां वो कंप्लेंट्स जो है ये शेयर कर सकते हैं, साथ में अपने राइट्स के बारे में भी जान सकते हैं, वेदर दे हैव हैड अ कैंसल्ड या डिलेड फ्लाइट, मिसिंग बैग या एयरलाइन को लेकर कोई और प्रॉब्लम हो. और उसका कहना है कि वो कंसोलिडेट करेंगे कंप्लेंट्स को जो उनके पास आते हैं एंड पुट देम टू द एयरलाइंस एंड गवर्नमेंट फॉर एक्शन. जो लोग पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू कंज्यूमर्स टॉप टिप्स जब वो ट्रैवल करने वाले होते हैं उसको लेकर. जो कंज्यूमर द्वारा रिसर्च किया गया है उसमें ये पाया गया है कि 10 में से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी तरह से पता नहीं होता है उनके फ्लाइट राइट्स के बारे में एंड मोर देन 3/4 ऑफ ट्रेवलर्स रिलाई ऑन द एयरलाइन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ देयर राइट्स. अन्य कंट्रीज की तरह न्यूजीलैंड में ऐसा कोई रूल नहीं है जहां पर एयरलाइंस को पैसेंजर्स को उनके अधिकारों के बारे में बताना पड़ता है इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग. और जो कंज्यूमर कैंपेन्स मैनेजर हैं कंज्यूमर एनजिट की जेसिका वोका, उन्होंने कहा कि इफ़ पीपल टेक द टाइम टू शेयर द एक्सपीरियंस विद अस दे विल बी हेल्पिंग अस टू बिल्ड द केस फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑफ पैसेंजर फ्लाइट राइट्स. इस साल एलिया कंज्यूमर ने एक फ्लाइट राइट्स पिटीशन जो है ये पार्लियामेंट में दिया था जिस पर 10,500 से ज़्यादा लोगों ने साइन किया था और इसमें मांग की गई थी कि गवर्नमेंट टू रिक्वायर एयरलाइंस टू टेल पैसेंजर्स देयर राइट्स व्हेन फ्लाइट्स आर डिलेड और कैंसल्ड. पिछले हफ्ते कंज्यूमर न्यूजीलैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको इनवाइट किया गया था टू द पार्लियामेंट्री पटिशंस कमेटी जहां पर उन्होंने अपने फ्लाइट राइट्स पटिशन के बारे में जाकर बातें जो है ये की है. इन द मीन टाइम फ्लाइट राइट जो है उसने या कंज्यूमर ने एक फ्लाइट राइट्स इंफॉर्मेशन हब भी लॉन्च किया है, जहां पर आपके राइट्स के बारे में डिटेल्स होती हैं डिफरेंट सिनेरियोस में। उन्होंने कहा है कि मेनी पैसेंजर्स डोंट नो कि उनके पास लीगल प्रोटेक्शन होता है अंडर सिविल एविएशन एक्ट और कंज्यूमर गारंटीज एक्ट। जब उनके फ्लाइट्स कैंसिल किए जाते हैं एयरलाइन के कंट्रोल में अगर कुछ होता है वो सारी चीज़ों को लेकर, तो आप कंज्यूमर न्यूजीलैंड का जो फ्लाइट कंप्लेन पोर्टल है या फिर जो फ्लाइट राइट्स इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं।
2: फाइनल अपडेट मेरी ओर से आज आपके लिए ये है दैट जो वेदर है, मौसम जो है स्कूल छुट्टियों में अगर देखा जाए, इट्स स्टार्टिंग ऑफ वेट एंड विंडी इज एक्सपेक्टेड अक्रॉस न्यूजीलैंड। ऐसा मौसम जो है स्टार्ट ऑफ द स्कूल हॉलीडेज लोग फेस करेंगे। वेदर फ्रंट विल रीच फ्यर्डलैंड ऑन फ्राइडे और उसके बाद इट विल मूव अक्रॉस द नॉर्थ आइलैंड ऑन सैटरडे। रेन इज इन फोरकास्ट फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम संडे इनटू मंडे और कोल्ड एयर बिहाइंड द फ्रंट विल बी ब्रिंगिंग सम स्नो टू लोअर लेवल्स स्पेशली साउथ आइलैंड में। स्नो की वजह से ऑफकोर्स जो एल्पाइन एरियाज हैं, माउंटेन पासेस हैं, ये सारे इफेक्ट होंगे। सो मोटरिस्ट्स आर रिक्वेस्टेड टू वॉच फॉर रोड स्नोफॉल वार्निंग्स और स्लो मूविंग लो प्रेशर सिस्टम जो है अर्ली नेक्स्ट वीक भी हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग सदरली विंड्स और प्रोलॉन्ग्ड वेट वेदर स्पेशली इन सेंट्रल न्यूजीलैंड ये लेकर आ सकता है। मेट सर्विस लोगों को एडवाइस कर रहे हैं ऑफ ट्रेवलिंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज टू चेक द लेटेस्ट फॉरकास्ट और रोड कंडीशंस बिफोर आप अपनी मंजिल के लिए निकले।

0: आज की दो बातों से पहले चलिए हमने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करते हैं। और सबसे पहले तो बता देते हैं कि आज हमारे साथ विजेता कौन हुए हैं, जिनके हाथ लगेगा दी डबल पास टू गो एंड विटनेस नन अदर देन कृष्णा अभिषेक और साथ में राजीव ठाकुर, जो कि ये अपना द ग्रेट कॉमेडी नाइट शो लेकर 18th of July को आ रहे हैं एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज हम कहना चाहते हैं मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू संजेशनी, और आपके मोबाइल नंबर के लास्ट फोर डिजिट्स आर 2921, संजेशनी प्रसाद 2921 लास्ट फोर डिजिट्स ऑफ योर मोबाइल नंबर, आज की हमारी विनर आप हुई हैं।
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो बातें कहते हैं, जहां कपटी सलाहकार बैठ जाए वहां समझदार लोग भी विनाश की ओर चले जाते हैं।
0: ओके।
1: और दूसरी बात, दौलत तो लोग लोन पर भी ले लेते हैं लेकिन इज्जत के लिए कोई बैंक नहीं होता।
0: Absolutely true.
1: उसे पाने के लिए एक ही रास्ता है, अच्छा कर्म करो।
0: वेरी वेरी ट्रू। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का आपका फ्राइडे बढ़िया गुजरे, कमाल का गुजरे, और एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड एज वेल। हम आपसे अब मिलते हैं मंडे को एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर आपके साथ हम जुड़ जाएंगे।

0: बैठे क्योंकि आ रही है
1: माई टाइम विद काशिका।
2: Kia ora, namaskar and a very very good morning to you people. How are you? Studio ke ghadi mein वक्त हो रहा है, 3 जुलाई का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो आप वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। और इसके साथ साथ ये वक्त आ जाता है जहाँ पर मुझे आपको याद दिलाना है आपके मी टाइम के बारे में। आपका मी टाइम वीकेंड आ गया है और ऐसे में आप अपने वीकेंड को किस तरह से अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के निचोड़ कर अपने लिए निकालेंगे, चलो ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन मैंने तो प्लान कर ही लिया है क्योंकि मुझे आपके साथ ये थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेने का मौका मिल रहा है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट गिव इट अ शॉट। और ऐसे में मैं एक ब्रेक लेने वाली हूँ, मंडे से मैं आपका साथ तो नहीं निभाने वाली हूँ, बट मैं आ जाऊँगी 15 जुलाई ऑनवर्ड्स आपसे बातचीत करने, आपके साथ मस्ती मजाक करने के लिए। लेकिन अभी के लिए यही याद दिलाना चाहती हूँ कि जो बहुत कुछ आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ना, उसमें एक अलग से मूड जो होता है हमारा बन जाता है, और वो मूड आपके साथ ही बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। आई विल मिस यू गाइज, लेकिन हाँ थोड़ी कोशिश यही है कि मैं भी इस ठंड के मौसम में थोड़ा सा अपने लिए सोच लूँ और अपने लिए बात कर लूँ। चलो इसी नोट पर कशिश फूड्स को थैंक यू कह देते हैं, एंड कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए ये मुमकिन हो जाता है 10 से 12 बजे मेरा और आपका ये खूबसूरत सा सफ़र जहाँ मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक बन के आ जाती हूँ। थैंक यू कशिश फूड्स। और चलिए गाना बजाती हूँ, उसके बाद ढेर सारी और भी बातें करती हूँ। याद रहे 6 वर्ड स्टोरी ऑफिस शाउट आउट, अगर आप देना चाहते हैं कोई ड्रीम आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो भी मुझे आप बता दो तो चलेगा।
1: बचाओ क्या?

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: जब मैं बात करती हूँ एक्सपर्ट अड्डा की, तो एक बात तो है कि हमें एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर चाहिए होता है जब हम बीमार होने लग जाते हैं। और ऐसे में कभी मिडनाइट में बच्चे को फीवर हो गया, कोई आपके घर में एल्डरली पेरेंट है या कुछ है, उनको लगता है कि कुछ वो थोड़ा चेस्ट पेन हो रहा है कि कुछ हो रहा है, तो अब पहले तो लोग बुक्स वगैरह ढूंढा करते थे या दे यूज टू वेट के सुबह सपोर्ट के हम जीपी से बात ज़रूर करें। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज चैट बोट है या एक फ़ोटो आप अपलोड कर देते हैं और एक आंसर का वेट करते हैं। कई घरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है फर्स्ट डॉक्टर बन चुकी है। ये शिफ्ट अंडरस्टैंडेबल है, हेल्थ केयर जो है इक्वली सबको एकदम से मिलती नहीं है, खासतौर पर रूरल एरियाज़ में जहाँ पे हेल्थ केयर बहुत घंटे दूर होती है। इनफैक्ट इवन सिटीज़ में जहाँ अपॉइंटमेंट्स विद जीपी इज बिकम अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, लॉन्ग वेटिंग आवर्स और शॉर्ट नोटिस पे वो मिलते ही नहीं। एआई समटाइम्स जो है ये आपको हेल्थ केयर के स्ट्रगल्स में हेल्प कर देती है विद इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। लेकिन एक बात तो है कि ये इमीडिएट नहीं, आप इमीडिएट आंसर तो मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। एक कॉमन कोल्ड की बात करें, एलर्जी, एस्थमा, एसिड रिफ्लक्स, निमोनिया, कुछ

कहना है कि 24 आवर्स अ डे डॉक्टर्स का एक्सेस करने को मिलना चाहिए। एआई से लोग काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन वो सीरियस इलनेस को इंडिकेट नहीं कर पाते हैं एंड यू हैव टू गो द ट्रेडिशनल वे। लेकिन ये एक जो डिजिटल टूल है ये इनफैक्ट हम सब पर हावी हो चुका है। ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर्स जो कितने साल लगाते हैं पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद उसका मीनिंग निकाल के निष्कर्ष निकालते हैं, एज, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन, आपका स्ट्रेस, आपकी पुरानी बीमारी, यह सब कुछ चीज़ों को रिलेट करने के बाद वो चीज़ आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन एआई ये चीज़ें नहीं कर पाता है तो एक रिस्क बढ़ जाता है और फॉल्स रीअश्योरेंस, अननेसेसरी पैनिक और ये बिगेस्ट कंसर्न बन जाता है फॉर द अनसुपरवाइज्ड एआई कंसल्टेशंस। चैट बॉक्स कभी आपको बता देता है कि ये सिम्टम्स ये हैं, ये हैं, ये हैं, लेकिन इशू तब आता है जब आप उसको डायग्नोस करने लगते हैं लेकिन एक प्रोफेशनल एडवाइस आपके लिए कम पड़ जाता है। इनकरेक्टली लोग या जो पेशेंट्स होते हैं या जो लोग उसको सीख कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं चीज़ों को, वो भटक भी जाते हैं। ऐसे में एक छोटा सा एरर बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकता है। क्या कह सकते हैं कि आई इज डेफिनेटली परफेक्ट इन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स बट वो पूरी सिचुएशन आपकी असेस नहीं कर पाता है। ये डिबेट है अपने आप में, एक खुद में डिबेट है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसके लिए यू नो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए AI कैन नॉट बी अ डॉक्टर, बट ये कह सकती हूँ कि डॉक्टर्स कैन बिकम AI। एज इन लाइक उनको पूरी हिस्ट्री पता होती है आपकी, उनको कहाँ से एक मिनट में आपका अपने GP के पास जाएंगे, पूरी हिस्ट्री आपको फटाफट बता देंगे, लेकिन AI नहीं कर सकता। ये कुछ चीज़ें जो थी मेरे माइंड में घूम रही थी और मैंने सोचा आज आपको डेफिनेटली इस बात से आगाह कर दूँ। ऑल राइट, हियर वी गो, और फिर शाउट आउट का वक्त आ रहा है। जल्दी जल्दी बताइए आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, रोवा ऐप के जरिए या फिर आप अपने घर से, ऑफिस से ड्राइव करते हुए, बता डालिए।

0: हम के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
5: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
6: Indelible Homes, your building expert.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
8: Reliance Ventilation System.
9: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
8: Moisture और ventilation का problem लगता है।
9: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
8: Oh, that's not good. हम

0: आपकी सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
1: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
2: हियर फॉर ऑल थिंग्स ब्रिंटर, स्निफल्स ऑन द सोफा, फ्रॉस्टी फुटी गेम्स, रिफ, कोजी इवनिंग्स विद हॉट सूप एंड रोस्ट्स विद क्रिस्पी टू अ टी वेजीज। व्हाटएवर योर प्लान्स दिस विंटर, सी यू at Foursquare. What'll it be today?

0: after. Office shout out. ऑफिस शाउट आउट में सोनाली आप रोवा ऐप के जरिए मुझे सुन रही हैं एंड विनय आप भी मुझे रोवा ऐप के जरिए सुन रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और साथ साथ आ गया है मेरे दोस्त एश फ्रॉम वेलिंगटन. आपका वेरी हैप्पी एंड चिल्ड मी टाइम अपने को निचोड़ते हुए मिस यू वाली. गुड मॉर्निंग काशिका जी. थैंक यू सो मच. थोड़ा सा मुझे समझने में टाइम लगा. वेरी हैप्पी एंड चिल्ड मी टाइम अपनों को निचोड़ते हुए मिस यू वाली काशिका जी. ओके ठीक है मान लिया. थैंक यू सो मच एंड इट विल मीन अ लॉट. जब मैं लौट के आऊँगी 15 तारीख को तो मुझे आपके मैसेजेस फिर से चाहिए होंगे. अभी मैं टॉपिक की तरफ जाती हूँ लेकिन टॉपिक में जाने से पहले ओहो आज है ये शो. अब ये गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर जो है आज सिद्धार्थ रंदेरिया वैसे कल तो पहुंच चुके कल परसों पहुंच चुके हैं एंड इन्होंने तो ऑलरेडी हल्ला मचा दिया है. बस आई थिंक इट्स मोर ऑर लेस सोल्ड आउट. तो आपने अगर टिकट अभी तक नहीं ली तो premierticket.co.nz के ज़रिए जाके टिकट खरीदे. आज विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में ये आपके लिए बिल्कुल पहुँचने वाले हैं अपना नया अमेजिंग गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर लेकर. क्या है ये हिलेरियस मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होंगे और ये सिचुएशंस क्या हो सकती हैं. आपकी फैमिली के साथ बैठ के इस गुजराती ह्यूमर को आप ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा. सो आओ जो एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर आज शाम को 7:30 बजे. कम एंड एन्जॉय सिद्धार्थ रंदेरिया जो गुजरात के मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर हैं.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

birthday है of a very special person, हमारी अपनी जो टेलर्स रोड से हमारी बॉस थी रशीला प्रसाद सिंह. आपका आज बर्थडे है. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आई एम प्लेइंग वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स हियर टुडे एंड एंजॉय योर ब्यूटीफुल बर्थडे. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स.

वैसे आपको बताऊं कि गूगल जो है ये रोल आउट कर रहा है एक नई आवाज फॉर द न्यूजीलैंड वर्जन ऑफ मैप्स. वो इंग्लिश बोलेंगे विद द कीवी एक्सेंट ऑफ कोर्स, एंड दे विल अनाउंस द माओरी नेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द राइट एंड द प्रॉपर वे. इट विल बी इंटरेस्टिंग, इजंट दैट?

0: ओके, नाउ इज द टाइम जहाँ पर मुझे आपको हंसने का मौका देना है. अच्छा, कैसे भाई? पास जीता के और क्या, और ये पास जो जीत सकते हैं आप, आपको क्या करना है 18 जुलाई के दिन? ऑफ कोर्स पहुंचना है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. टिकट नहीं खरीदी तो जाइए, टिकट खरीद लीजिए bookmyevent.co.nz के ज़रिए. लेकिन आज मेरे साथ माई टाइम में अगर आपने डबल पास जीतना है तो एक सवाल है, उसका जवाब आपको देना है. आपको सिर्फ कॉमेडी लिखना है. आपको लिख के मुझे बताना है कि वी नो कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने आने वाले, पहली बार न्यूजीलैंड में, और उनके काफ़ी VIP टिकट्स वगैरह सोल्ड आउट भी हो चुके हैं. bookmyevent.co.nz के ज़रिए आप टिकट भी खरीद सकते हैं. लेकिन अभी आपको मेरे साथ ये पास, डबल पास जीतना है. जाने से पहले मैं विनर का नाम अनाउंस करूँगी. तो मेरा सवाल है, पहले तो लिखना है कॉमेडी 5599 में आपका कीवर्ड होगा, और उसके बाद आपको लिखना है कृष्णा अभिषेक की वाइफ का नाम. आपको लिखना है कृष्णा अभिषेक की वाइफ का नाम. इतना सिंपल कर दिया, आई थिंक ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कृष्णा अभिषेक की वाइफ का नाम क्या है. सो 5599 पे कॉमेडी लिखिए, स्पेस दीजिए, कृष्णा अभिषेक की वाइफ का नाम लिखिए, अपना नाम लिखना मत भूलिएगा. वाह, पहला आंसर भी आ गया. कितने प्रॉम्प्ट हैं आप लोग ना, सच्ची. प्रशांत, वेल डन. देखते हैं और कौन कौन आता है, एंड फिर मैं एक छोटा सा जगल करूंगी, ड्रॉ करूंगी, एंड देन आपका नाम ड्रॉ में ऐड भी करूंगी.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप. वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और वेटाकरे.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: ड्रीम डायरी
1: ड्रीम डायरी में दिस इज़ फनी। वैसे ये ड्रीम मुझे भी आ चुका है। मैंने आपको पहले भी बोला था ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, बैक ऑफ योर माइंड आप वो चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद सडनली कोई कुछ जब बोलता है तो आप उस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ मेरे साथ हुई। जैसे आपका टेक्स्ट आया, आई ड्रीम्ड ऑफ अ क्लास रूम। सो इफ़ यू आर ड्रीमिंग ऑफ अ क्लास रूम, ये इंडिकेट करता है दैट यू आर लर्निंग कोई एक बहुत लाइफ का इंपॉर्टेंट लेसन। ऑल्टरनेटिवली ये हो सकता है दिस इज सिंबलाइजिंग आपकी पर्सनल ग्रोथ, और आप कुछ अपने बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और आपको ये ड्रीम आता है दैट यू आर लुकिंग यू नो इनटू अ क्लासरूम और यू लुकिंग फॉर अ क्लासरूम। इसका मतलब है दैट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर एक्सपेंडिंग योर नॉलेज एंड लर्निंग, ये भी होता है। और क्लासरूम के बाहर अगर आप देख रहे हैं कि आप क्लासरूम के बाहर हैं, इससे इंडिकेट किया जाता है कि यू आर फ्री एंड ओपन माइंडेड टू लर्न न्यू थिंग्स, अडैप्ट न्यू एंड वेरियस सिचुएशंस। आई होप अब आपको उस क्लासरूम का एक सेंस पता चल गया होगा कि भाई अगर ये सपना आता है तो क्या होता है। लेकिन अभी सपना पूरा नहीं हुआ मेरे दोस्तों, क्योंकि मुझे विनर का नाम अनाउंस करना है। अब जब विनर का नाम अनाउंस करना है, जो जाने वाले हैं कॉमेडी नाइट्स के लिए 18 जुलाई के दिन विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, वो कौन होने वाला है। अच्छा, मेरे पास एंट्रीज आए हैं, पायल आपकी, सोनाली, ऐश्वर्या महातकर, वंदना, और आया है भव्या, शिल्पी, सोनाली, राज, सतिंदर, गौरव, पूजा, नीलेश, आपने नाम नहीं लिखा, अजय, प्रशांत, आप सबके। अब मुझे करना पड़ेगा जगल, इतने सारे नाम और मैं एक अकेली जान। ओके, लेट मी जस्ट स्क्रोल इट, जहाँ पे भी जाके वो रुकेगा मेरा हाथ जाएगा एंड आई विल गिव दैट। ओके, 1 2 3 गो। ओके, कोई म्यूजिक इफेक्ट नहीं है। ओके, ये नाम है 9487, शिल्पी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीत लिया है ये डबल पास। एंड बाकी लोग जितने लोग हैं, निराश मत होइए, क्योंकि अभी केतन भी आएंगे, सैंडी भी आएंगे, रुस्बे भी आएंगे, और उसके बाद अगले हफ्ते से नई कॉन्टेस्ट आएगी। ओके, सो कीप हमिंग।

मूवी के लिए मैं बताती हूँ, ऋषि कपूर ने सजेस्ट किया था कि श्रीदेवी को इस रोल के लिए टाइटल रोल के लिए ले लो, और उसके बाद सनी देओल ने सजेस्ट किया नहीं नहीं नहीं शी इज़ अ मिसफिट, बेटर है आप डिम्पल कपाड़िया को इस रोल के लिए ले लो। उसके बाद ये भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर जो राजकुमार संतोषी थे उन्होंने कहा इस रोल के लिए माधुरी दीक्षित को ले लेना चाहिए, लेकिन माधुरी दीक्षित की डेट क्लैश हो गई। फाइनली इस रोल को अदा करने के लिए मीनाक्षी शेषाद्री को लिया गया एंड शी डिड अ फैबुलस जॉब फॉर दिस मूवी, क्योंकि इस फिल्म ने लिटरली में देखा जाए तो बहुत बहुत सारे चीज़ों को नॉमिनेशन भी मीनाक्षी शेषाद्री को मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट द 40th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, और ऐसे में सनी देओल को, राजकुमार संतोषी को और बेस्ट स्टोरी के लिए भी अवार्ड्स जो थे, बेस्ट डायरेक्टर के, सपोर्टिंग एक्टर के रोल के लिए भी मिले। फिल्म थी दामिनी।

0: आजकल चलना है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं
1: ड्राइविंग यू होम Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
6: Kyun? Kya hua?
5: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi, to itne documents maange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No rest. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
8: Sorry about that.
7: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
9: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together. There's even a name for it. Do-getherness. Aw, cute. So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
10: Reliance Ventilation System.
11: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
10: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
11: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
10: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
12: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800 787 111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
13: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
14: Contact support if promo not applied. T's and C's and fees apply.
15: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
16: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
17: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Retailers are giving a thumbs up to ACT's policy of specially trained security officers. They'd be able to issue exclusion notices and remove people or detain them for 30 minutes until police arrive. Carolyn Young from Retail NZ saying it would help.
18: For those high-risk situations, we would expect we would get an immediate response from police.
17: Travellers are being urged to report flight issues like missing bags and cancelled services to a new hub. Consumer NZ has launched an online portal. Spokesperson Jessica Walker says airlines don't have to tell passengers their rights.
19: Due to an amendment to the Civil Aviation Act that was passed last year, the Associate Minister for Transport could compel airlines to have to tell people.
17: Grit is getting spread on roads around the North Island to help with icy driving conditions. State highways 1, 4 and 5 have been highlighted as high-risk areas. And pop superstar Taylor Swift has reportedly already married NFL player Travis Kelce. The pair is said to be holding a huge celebration at Madison Square Garden in New York this weekend, but multiple US media outlets claim the pair have already exchanged vows in an intimate ceremony before the star-studded event. In sport, two veteran superstars are about to collide at the FIFA Football World Cup. Cristiano Ronaldo and Portugal taking on Luka Modric and Croatia in the round of 32 in Toronto. The match just kicking off now. The winner to face Spain, they cruised past Austria earlier 3-0. And a rugby with shift four, Tamati Allison is joining the Blues coaching staff as an assistant. He'll link up with incoming head coach Jason Holland. Both were part of the All Blacks coaching staff under Scott Robertson.
16: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
6: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
8: Suchit kiya jata hai ki Shamini Raman ke pita, Simental Crescent Somerville ki Shrimati Sushil Raman ke pati, Raman Christopher Raman ki mrityu ho gayi hai. Maaf kijiye, Ramash Christopher Raman ki mrityu ho gayi hai. Antim Sanskar 6 तारीख को 1 बजे मैनकॉ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-717-504 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने, ऑकलैंड की शमिनी रमन के पिता, साइमेंटल क्रिसेंट सोमरविल की श्रीमती सुशील रमन के पति रमाश क्रिस्टोफर रमन की मृत्यु हो गई है. अंतिम संस्कार आने वाले मंडे के दिन 6 तारीख को 1 बजे मैनकॉ मेमोरियल गार्डन में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 021-717-504 पर आप संपर्क कर सकते हैं.
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
16: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर, पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा. प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
8: भाई ये ठंड का मौसम तो अभी जुलाई में नहीं आएगा तो कब आएगा. तो the highs of 15 overnight, temperature of 8 आज का फोकस बताया जा रहा है. It feels like 8 degrees right now. 517 पर सनसेट भी बताया गया है.
16: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
20: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi
16: hai My Time with Kashika.
8: म्यूजिक बहुत अच्छा था तो आई लव टू लिसन टू इट. तो कैसे हैं आप एंड कैसा सब कुछ चल रहा है? भाई मैं तो ठीक हूँ, मेरा भी मूड भी ठीक है क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि काउंट डाउन शुरू हो चुका है मेरे लिए. बस एक घंटा और, उसके बाद ऑफिस का काम झाम करके शाम तक घर वापस और फिर छुट्टी. भाई ये छुट्टी जब होती है ना, जब इसका मूड आने लगता है ना, तो समझ लीजिए 4 चांद लग जाते हैं मतलब मूड को. आप ये एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि कल क्या करना है, आज क्या करना है, कल यहाँ जाना है, परसों वहाँ जाना है, यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है. आप भी शायद इतने ही एक्साइटेड होते होंगे जितनी मैं हूँ. लेकिन हाँ, ये एक्साइटमेंट लेवल मेरा जो है फिर बढ़ जाएगा जब मैं आपसे 15 तारीख को मुलाकात करूँगी. कशिश फूड्स के सौजन्य से माई टाइम लेकर मैं काशिका 12 बजे तक आपका साथ निभाने वाली हूँ और ढेर सारी बातें भी करने वाली हूँ एंड एक मौका और देने वाली हूँ आपको जीतने के लिए कुछ और जो करण औजला के फैंस हैं उनके लिए. बाय द वे, कहाँ से सुन रहे हैं? बहुत लोगों ने मुझे लिखकर भेजा भी था लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप रोवा ऐप के जरिए सुन रहे हैं तो वहाँ ढेर सारे आपके लिए हमारे म्यूजिक स्टेशंस के ऑप्शंस आते हैं. हम रिवाइंड 60s एंड 70s के ट्रैक्स लेके और साथ साथ जूक बॉक्स जो 80s का है वो भी आप सुन सकते हैं. फीजी कीर्तन और फीजी कीर्तन संग्रह, आप ये दोनों भी हमारे म्यूजिक स्टेशन सुन सकते हैं. पंजाबी गाने सुनने का शौक है तो चढ़दी कला एंड राहत फतेह अली खान के अगर आप फैन हैं तो डेफिनेटली इनका भी एक म्यूजिक स्टेशन हमारे पास यहाँ पर है. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम का करते हैं शुभारंभ. आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी.
16: मिड मॉर्निंग मजा बचाओ क्या

देखो ट्रेन आकर रुक गई ना, मैं कैसे ट्रैवल मोड में हूँ हो जाता है। वैसे कंज्यूमर न्यूजीलैंड ने एक लॉन्च किए हैं ऑनलाइन पोर्टल, जहाँ पे ये एजुकेट करना चाहते हैं ट्रैवलर्स को ऑन द राइट्स, और ये प्लेटफॉर्म जो है आपको बताएगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। ये पोर्टल जो है ये कह रहे हैं कि कई जगह एविएशन सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एंड 90% ऑफ द न्यूजीलैंडर्स जो है उनको पता नहीं कि एयर फ्लाइट के राइट्स क्या होते हैं। 75% जो लोग होते हैं प्योरली एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं अबाउट कैंसिलेशन, डिलेज, मिसिंग लगेज, एयरलाइन प्रॉब्लम। सो कंज्यूमर्स न्यूजीलैंड की जो कैंपेन मैनेजर जेस वॉकर, आज इन्होंने बताया कि दोज यू नो न्यूजीलैंड हु डोंट

0: फ्लाइट है और वो डिले हो गए ड्यू टू ऑपरेशनल इश्यूज, ये पैसेंजर जो है वो एयरलाइन से कह सकता है कि आप रीइंबर्स कर सकते हैं एनी रीजनेबल कॉस्ट दे इनकर बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डिले अप टू 10 times द कॉस्ट ऑफ द टिकट. डू यू गेट इट? अगर इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हो गई या डिले हो गई, द एयरलाइन वॉज एट फॉल्ट. पैसेंजर्स कभी कभी ऑफन दे गेट अ रिफंड और क्लेम बैक कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑल्सो जो आपकी हैं. इंटरनेशनल फ्लाइट्स के राइट्स होते हैं ऑन वेयर यू आर एंड वेयर यू आर हेडिंग टू. कभी कभी जो एयरलाइंस होती हैं जो बेस्ड होती है कहीं पे पर्टिकुलरली, वहाँ पर वन सेट ऑफ रूल्स में अप्लाई टू द सेम जर्नी. अब ये लॉ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अनक्लियर है, पुअर कम्युनिकेशन है इससे रिलेटेड. इससे अब क्या होता है, लोग कन्फ्यूज होने लग जाते हैं. सो वन ऑफ दिस एरियाज डेफिनेटली हैज़ क्रिएटेड एन इम्बैलेंस. कंज्यूमर न्यूजीलैंड ने कहा कि इस साल इन्होंने डिलीवर करने की कोशिश की है द फ्लाइट्स राइट पिटिशन टू पार्लियामेंट और इसे 10,500 लोगों ने साइन अप भी किया था. ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है कि समझ में मैं ट्रैवल जरूर करने वाली हूँ. सो कुछ लोगों ने इसको हाँ बोला, कुछ लोगों ने इसको ना बोला और उन्होंने कहा ये इन्फॉर्मेशन जो है ये गैप क्रिएट कर रही है एंड पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, हाउ थिंग्स विल गो इन फ्यूचर. बट डेफिनेटली ये एक रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो पैसेंजर्स तक पहुँचनी चाहिए वो जानी चाहिए हर हालत में. सो पार्लियामेंट्री पिटिशन के लिए कमिटी ने इनवाइट किया है फॉर पिटिशन फॉर द फ्लाइट राइट्स. आई होप दिस कम्स थ्रू.
1: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
1: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
3: Okay, आज की six word story मेरी ओर से इसे ले क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ too many tabs open in brain. देखो मैं मल्टीटास्किंग कर रही हूँ यहाँ पे. आप लोगों के टेक्स्ट आ रहे हैं, गाना आपका कोई पसंद आता है, मैं वो गाने लगा रही हूँ, अपडेट देख रही हूँ, फीफा देख रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपसे. भाई कितने सारी चीज़ें, कितने टैब्स खुले हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट टुडेज़ सिक्स वर्ड स्टोरी फॉर मी इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट एडवेंचर. Always looking for the next adventure. And this is exactly how I feel right now. तो चलो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको थोड़ी देर बाद एक और मौका देते हैं. अब कुछ जीतने के लिए मैं कुछ बजाऊंगी और करण औजला का गाना, आपको बस उसको गेस करना है कि कौन सा है. ठीक है, वो थोड़ी देर में. बट अगर आपने हमारे कुछ पॉडकास्ट कैचअप नहीं किए तो मैं बता दूं कि दर्शित पांडे, जैसे आज मैंने शुरुआत की AI से रिलेटेड, तो ये एक AI स्पेशलिस्ट हैं जो सैंडी और रुजबे के साथ इन्होंने अनफिल्टर्ड ड्राइव में बातचीत की, कुछ बताया यू नो अबाउट दी डिफरेंट थिंग्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैट GPT से लेके AI तक. सो 5599 पे आप ड्राइव लेके भेजें एंड आपको ये लिंक मिल जाएगा. ब्रेकफास्ट शो का कोई कैचअप करना है, विजय पूजा का, तो आप BF लिख के भेजें.
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

सर रोमिला आपका टेक्स्ट आया है एंड रोमिला आपकी बहन का आज बर्थडे है सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू योर सिस्टर एंड फ्रॉम योर मम एज वेल एज फ्रॉम ऑल योर फैमिली मेम्बर्स बच्चाज एंड अराउंड एवरीवेयर तो यस दिस इज अ स्पेशल सॉन्ग फॉर द बर्थडे गर्ल गोइंग ऑन.

0: Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: भाई अद्भुत बात तो ये है, जब हमारे साथ साथ आपको एक मौका मिल जाता है कुछ जीतने के लिए, तो अब मैं एक बहुत ही आइकॉनिक सा गाना बजाने वाली हूँ। अब ये तो करण औजला का गाना है, आपको गेस करना है इस गाने का टाइटल सॉन्ग। ठीक है, ये किस क्या टाइटल है इस गाने का, बस आपको जैसे तौबा तौबा था तो वी ऑल नो कि वो तौबा तौबा गाना है। ठीक है, करेक्ट एंट्री का नाम डबल पास जीतने के लिए चला जाएगा, एंड ये डबल पास जीतने का आपको सुंदर मौका मिलेगा अगर आपकी एंट्री करेक्ट होगी। सो करण औजला का KA आपने ले लिया, 5599 पे अब आपको टेक्स्ट करना है एग्जैक्टली कि कौन सा गाना है। ओके, अगर ज़्यादा टिकट्स और इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है तो हम .rova.nz के ज़रिए आप क्लिक कर सकते हैं, livenation.co.nz के ज़रिए भी। इस समय मुझे न्यूलैंड से उरी आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई एम लविंग योर कॉम्प्लीमेंट। एंड मेरा गाना अब आपके लिए, आप सबके लिए प्ले कर रही हूँ, फेड आउट करूंगी। ओके, बजने दो, वेट करो।

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, a mass food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया 36 मिनट्स हैव गॉन फॉर द मैच और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अराउंड 32 में. वैसे आपको बता देती हूँ, स्पेन की जीत हुई ऑस्ट्रिया के खिलाफ फुल टाइम में आज के दिन. भाई हमारे साथ साथ जुड़े रहिएगा अगर आप बाकी की जानकारी चाहते हैं.
2: डिस्को हो या रॉक एंड रोल, download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
3: Hum. A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
6: Here for all things Brinter. Sniffles on the sofa, frosty footy games, oh riff, cozy evenings with hot soup, and roasts with crispy to a tea veggies. Whatever your plans this winter, see you at Foursquare. What'll it be today?
7: Trade Depot brings you Midea, the world's number one air conditioning company. Introducing the Midea Inverter Heat Pump. It looks elegant and sophisticated, features innovative smart technology, and superb energy efficiency. Shop now for your Midea Inverter Heat Pump, including installation anywhere in New Zealand, from only $1,299 with Trade Depot. T's and C's apply.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
9: हाँ. अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
9: मिसेस सिंह.
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट फोकस किचन.co.nz. Z.

रेस्क्यू मी रिसाइकल में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे घर में वेस्ट हो रही होती हैं। अच्छा, उनमें से एक चीज़ होती है जब हम हरा धनिया घर में लेकर आते हैं, ठीक है। अब हरा धनिया हमने काट लिया, ऊपर से उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी थी एंड आई थिंक आई शुड शेयर दिस विद यू। तो उसकी अगर आपको रूट्स मिल जाती हैं तो वो जो रूट्स हैं उनको आप पानी में ऐड कर दीजिएगा, पानी में डाल के ग्लास में डाल के रख दीजिएगा। थोड़े टाइम के बाद आप नोट करेंगे, 2-4 दिन के बाद उसमें अलग अलग फिर से पंखुड़ी आनी शुरू हो जाती, पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। इट कैन बी रिसाइकल्ड अगेन, आई मीन उसमें आप फिर से पत्तियाँ जान लेकर आ सकते हैं, रूट्स अभी हैं। और उसके बाद जैसे आपको लगे थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आने लगी, उसके बाद आप उसको आप जाके पॉट में या जहाँ पे भी आप इसको उगाना चाहते हैं वहाँ पे उगा के रख सकते हैं, ठीक है। एज सिंपल एज दैट एंड आई एम वेरी श्योर। ओके, नाउ यहाँ देखूँ एक मिनट, नाम किसके किसके आए हैं। कार्तिक, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर दिया है। वंदना, मनप्रीत कौर, क्या बात है, फैंटास्टिक। एंड आई गॉट देवांग एज वेल, आपने भी एंटर किया है नाम, सो थैंक यू सो मच। एंड आई गॉट नील हेयर एज वेल। तो इतने लोगों ने अपना नाम ड्रॉ में ऐड किया फॉर करण औजला, तो ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी टीम कॉन्टैक्ट करेगी। वैसे ये ड्रॉ मंडे के दिन होगा एंड ब्रेकफास्ट शो, तब तक ध्यान रखते रहिए। कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है ज़रूर हमें बताइए। श्राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ है 1st and 2nd August के दिन और सुबह 7 बजे से होगा और संडे तक भी चलने वाला है। महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाने वाला है, तो याद रहे 1st and 2nd August के दिन। उसके बाद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट आपके लिए रामलीला लेकर आ रहे हैं एंड दिस इज़ अ डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस। 8 August के दिन आप इसे ज़रूर ज़रूर देखने जा सकते हैं, मैं तो जा रही हूँ। आई डोंट मिस आउट सच ब्यूटीफुल ओकेजन्स जहाँ हमें हमारे कल्चर के बहुत नज़दीक जाने को मिलता है, एक और तरीके से इसे आजमाया जाता है। तो चलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की तरफ अब आपको लेके चलती हूँ। बहुत दिनों बाद इस गाने को मैं सुन रही हूँ ऑन द रेडियो, के की आवाज़।

बहुत ही प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है जो हमें इस समय सुन रही है और गाड़ी में बैठी हुई है। अमीरा, अमीरा, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड यू आर सिटिंग इन द कार राइट नाउ और हम कर रहे हैं आप मेरे साथ काशिका के साथ। सो थैंक यू सो मच, आपकी आंटी ने हमें एक अभी मैसेज भेजा था 4107। सो इंजॉय योर ब्यूटिफुल बर्थडे एंड आई थिंक यू आर हियर राइट नाउ। मुझे लगता है आप शायद आई हैं एज अ गेस्ट और समथिंग। सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू अमीरा, गॉड ब्लेस यू। Throwback. टाइम आ चला है यहाँ पर आपसे कहने के लिए कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है शुक्रवार, 3 जुलाई, बर्थडे एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू एनी वन ऑफ यू हु इज सेलिब्रेटिंग टुडे। और मैं अभी के लिए चलती हूँ, 15 जुलाई के दिन आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ। मेरा भी छोटा सा ब्रेक है, धीरे धीरे आई विल कम बैक टू इट एंड एंजॉय करना चाहती हूँ, बट अभी के लिए आपको छोड़े जाती हूँ इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। एंड लुक आफ्टर योरसेल्व्स, एंजॉय योरसेल्व्स, 15 जुलाई के दिन आपसे मेरी मुलाकात होगी। टेक केयर, लव यू ऑल।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.